0: घर ही मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: चिलियावी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अशिता नमस्कार
1: नमस्कार रविवार शनिवार 11 जुलाई 2026 के प्रातःकालीन पहले फ्लैश न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है सभी को नमस्ते और प्रणाम सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के साथ फ्लैश न्यूज़ की शुरुआत करती है मॉरिशस सरकार ने एमवी अपेक्स जहाज पर मौजूद 547 मवेशियों को आज उतारने की अनुमति दी उन्हें पहले क्वारंटीन में रखा जाएगा और शागुस समझौते पर मॉरिशस ने ब्रिटेन से स्पष्ट समय सीमा मांगी है जबकि दोनों देशों के बीच वार्ता जारी है मॉरिशस की राष्ट्रीय सभा ने घरेलू हिंसा विधेयक को भी बिना संशोधन के पारित कर दिया है जिससे पीड़ितों की सुरक्षा और मजबूत होगी सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुबोह ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पेंशन को समाप्त नहीं किया जाएगा और मींस टेस्ट का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है और आज विश्व

0: पर जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष का विषय युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने पर केंद्रित है। सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन यानी कि यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन 60 वर्ष की आयु से जारी रखने की मांग को लेकर आज पोर्ट लुइस में ट्रेड यूनियनों का विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। सोशियोलॉजिस्ट राजेंद्र संतु का कहना है कि मॉरिशस में बुजुर्गों की भूमिका बदल रही है लेकिन पेंशन व्यवस्था का बोझ भविष्य में युवाओं पर भी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप में भीषण गर्मी के कारण सूखे इलाकों में जंगल की आग का खतरा बढ़ गया है। कई देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचा है। दक्षिणी स्पेन में भड़की आग के कारण कई बीघा जंगल नष्ट हो गई हैं और 12 लोग मारे गए जबकि 23 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास अभी जारी है। और बात करें हम स्पोर्ट्स के बारे में तो फीफा विश्व कप 2026 के अंतर्गत खेली गई हाल के मैच में लॉस एंजलिस के सूफी स्टेडियम में स्पेन वर्सेस बेल्जियम का स्कोर रहा स्पेन 2 बेल्जियम 1 और मेरिनो का 88 मिनट पर दूसरा गोल रहा स्पेन के लिए। गौरतलब है कि कल रविवार सुबह 1 बजे नॉर्वे खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ और सुबह 5 बजे अर्जेंटीना खेलेगा स्विट्जरलैंड के खिलाफ। नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला काफ़ी निर्णायक सिद्ध हो सकता है स्पेशली यदि इंग्लैंड के फैंस इस विश्व कप में इंग्लैंड को फाइनल में देखना चाहते हैं। इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
0: मौसम का हाल आम हालत हमारे इलाके पर हल्की सी सामान्य हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी। बाद में दिन के दौरान मौसम में सुधार आएगा। रात के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर रहकर वर्षा होगी। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के पास समुद्र सामान्य रहेगा और 2 मीटर की लहरें उठेंगी। तापमान अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा यानी कि 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच सेंट्रल प्लेटू पर। साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:44 पर।
3: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

लेती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मनोरंजन रेडियो की उर्दू नशरियात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीनाज जान अली। आज के प्रोग्राम में अल्लाह पाक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने जा रहे हैं। आगाज़ महफिल हमदोनात कुरान मजीद की तिलावत से करते हैं। सामईन, तदब्बुर कुरान महज कलमात के समझने या तफसीर जानने से शुरू नहीं होता, बल्कि इसका आगाज़ एक कहीं ज़्यादा गहरे सवाल से होता है। ये आयत मुझसे, हाँ ख़ास मुझसे क्या चाहती है? वो कौन सा पैगाम है जो अल्लाह इस वक्त मुझे दे रहा है जब मैं ये आयत सुन या पढ़ रहा हूँ? तिलावत कुरान मजीद समाअत फरमाएं।

0: मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान मर्दूद से।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
0: अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला।

और जब नबी ने अपनी एक बीबी से एक राज की बात फरमाई, फिर जब वो उसका जिक्र कर बैठी और अल्लाह ने उसे नबी पर जाहिर कर दिया, तो नबी ने उसे कुछ जताया और कुछ से चश्म पोशी फरमाई। फिर जब नबी ने उसे उसकी खबर दी, बोली, हुजूर को किसने बताया? फरमाया, मुझे इल्म वाले खबरदार ने बताया।

उनका रब करीब है, अगर वो तुम्हें तलाक दे दें कि उन्हें तुमसे बेहतर बीबियां बदल दे, इताअत वालियां, ईमान वालियां, अदब वालियां, तौबा वालियां, बंदगी वालियां, रोजादारें, बियाहियां और कवारियां।

ईमान वालों अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं, उस पर सख्त कर्रे फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो अल्लाह का हुक्म नहीं टालते और जो उन्हें हुक्म हो वही करते हैं। ऐ काफिरों, आज बहाने न बनाओ, तुम्हें वही बदला मिलेगा जो करते थे।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबुवत तो ख़त्म हो गई, अलबत्ता खुशखबरी देने वाले ख्वाब बाकी रह गए हैं। बहवाला सनन दारमी। अबू दाऊद की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताज़ा रखे जिसने हमसे कोई बात सुनी और उसे याद रखा यहाँ तक के उसे दूसरों तक पहुँचाया।

मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इंसान इंसानियत नवाज दुनिया कभी पैदा नहीं कर सकेगी। सही मुस्लिम की सही हदीस है, अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैं जन्नत के दरवाज़े पर आकर दरवाज़ा खटखटाऊंगा, पहरेदार कहेगा आप कौन हैं, मैं कहूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहेगा मुझे आपके बारे में कहा गया था कि मैं आपसे पहले किसी के लिए दरवाज़ा न खोलूँ।

की रिवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अस्हाब को बुरा न कहो, इसलिए कि अगर कोई तुम में से उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करे तो भी मेरे अस्हाब के एक मद सैर भर वज़न या आधे के सवाब के बराबर भी सवाब को नहीं पहुँच सकता।

जामे अतिरमिजी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिसालत और नबुवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, लिहाजा मेरे बाद कोई रसूल और कोई नबी न होगा। सईदना जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहर की नमाज पढ़ी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर जाने को निकले और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकला। सामने कुछ बच्चे आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक बच्चे के रुखसार पर हाथ फेरा और मेरे रुखसार पर भी हाथ फेरा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में वो ठंडक और खुशबू देखी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू साज के डब्बे में से हाथ निकाला हो। सुभानअल्लाह। बहवाला सही मुस्लिम। सामईन कराम, सबाल खैर प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। टेक्निकी मदद के लिए अंजू का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

शक्ति। प्रिय श्रोताओं, सादर अभिवादन। श्रोताओं, आज के जन सामान्य व्यक्ति में अधिक क्रोध की भावना बढ़ती जा रही है। इस पीड़ाजनक स्थिति से बचने का सबसे सरल उपाय ईश्वर की साधना है। एक ईश्वर ही है जो हमें अपनी दुर्बलताओं को दूर करने का संबल प्रदान करते हैं। बस हमें उनके सानिध्य को नहीं छोड़ना चाहिए।

श्रोताओं, आज हर कहीं व्यक्तियों के हितों के लिए संघर्ष की आवश्यकता को लेकर लड़ने के लिए प्रयास किया जाता है। जीवन में संघर्ष चलता रहता है, तभी तो हमारे मन में जिजीविषा जीवित हैं कि संघर्ष करते हुए जिएं और सत्य की राह पर चलें। इसके साथ ही अपनी मानसिकता के शुद्धता को हम बनाए रखें, क्योंकि प्रभु भी उसी का साथ देगा जो सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर कर्मरत है।

श्रोताओ, आज के मनुष्य का जीवन टूट रहा है क्योंकि वह अज्ञात आशंकाओं से घिरा हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है कि परंपरागत और सांस्कृतिक सूत्र उसके हाथ से छिन रहे हैं और वह वर्तमान समय में उद्विग्न होकर

भ्रमित हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो मनुष्य ईश्वर का सहारा नहीं लेता, वह अंधकार में भटकता चला जाता है। एक परमात्मा ही तो है जो हमें राह दिखाते हुए हमारा हाथ थाम लेते हैं, फिर भला हम उन्हें क्यों नहीं याद करें।

श्रोताओ, इस संसार में आए हैं तो कर्मों का निर्वाह करना ही पड़ेगा, पर कर्म ऐसे हों जो सत्य से जुड़े हों। कुकर्मों के गर्त में पड़कर हमारे मन में अपराध बोध की वृत्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस आपाधापी में हमारा मन शांति के लिए छटपटा रहा है। यही वह क्षण है जहाँ प्रभु की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। प्रभु की आराधना से ना चुकें, यही श्रेष्ठतम है।

श्रोताओ, मनुष्य ईश्वर की संतान है और ईश्वर तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए मनुष्य मनुष्य के बीच मानवता का चिराग जलाएं और प्रभु की संतान कहलाने के योग्य बनें।

श्रोताओं, हम अपने सामाजिक परिवेश में अधिकार के मद से परे होकर एकता तथा जन सामान्य के कल्याण के लिए चेतना जगाने का कार्य करने में अपना योगदान दें, जिससे ईश्वर प्रसन्न होवें और हमें उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हो।

श्रोताओं, ईश्वर के गुणों का गान करते रहना भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ईश्वर के नाम का जाप करते रहने से तन मन पवित्र हो जाता है। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें।

0: सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से. आशिता आपको नमस्कार.
1: नमस्कार पूनम जी, श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है. सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने कल दोपहर पोर्टलिस में आयोजित एक वार्ता में स्पष्ट किया कि किसी भी पेंशन योजना को समाप्त नहीं किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि राज्य वृद्धावस्था पेंशन प्रत्येक पात्र नागरिक का अधिकार है. उन्होंने ये भी पुष्टि की कि वर्ष 2026-2027 के बजट में प्रस्तावित मींस टेस्ट यानी आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर पेंशन देने की व्यवस्था को सरकार ने वापस दे दिया है. उन्होंने बताया कि अब मॉरिशस के नागरिकों के पास 60 वर्ष की आयु से संशोधित पेंशन प्राप्त करने का विकल्प होगा. वहीं जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करेंगे उन्हें अधिक राशि की पेंशन मिलेगी. मंत्रिपरिषद ने शागुस द्वीप समूह से जुड़े मामले में हुए हाल के नए घटनाक्रम की भी समीक्षा की है. 2 जुलाई 2026 को अटॉर्नी जनरल गेविन ग्रोवर तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय की प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया. ब्रिटिश अधिकारियों ने बताया कि 20 जुलाई 2026 तक नई प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने की उम्मीद है. साथ ही उन्होंने कहा कि शागुस द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन की नीति में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. बैठक के दौरान मॉरिशस ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को शागुस समझौते के अनुमोदन के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिए. मॉरिशस ने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक प्रगति नहीं हुई तो वह सितंबर 2026 तक अपनी स्थिति की समीक्षा कर सकता है. मंत्रिपरिषद की बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इनमें से एक निर्णय एमवी अपेक्स जहाज पर मौजूद 537 मवेशियों से संबंधित है. इन सभी मवेशियों को आज शनिवार 11 जुलाई को जहाज से उतारा जाएगा तथा इसके बाद लाशोमिया स्थित क्वारंटीन केंद्र में रखा जाएगा जहां पर उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए विभिन्न परीक्षण किए जाएंगे तथा जहाज के चालक दल के सदस्यों की स्वास्थ्य निगरानी की भी जाएगी. मंत्री अरविंद बुलेला ने पुष्टि की कि पूरी प्रक्रिया पशु कल्याण और लागू स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए की जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि अनुमति आयात तक कंपनी उबोरा वेंचर्स को विशेष परिस्थिति में एक असाधारण उपाय के रूप में दी गई है. राज्यसभा ने कल देर शाम घरेलू हिंसा विधेयक यानी कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल को बिना किसी संशोधन के पारित किया. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एवं लैंगिक समानता मंत्री अरियाना वोमारी ने कहा कि सरकार घरेलू हिंसा के पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और अपराधियों को जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिणी स्पेन में लगी भीषण जंगल की आग में अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 23 अन्य लापता बताए जा रहे हैं. आपातकालीन सेवाओं की टीमें शुक्रवार को भी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी थी. तथा अन्य खबरों में अमेरिका ने ईरान से मांग की है कि वह सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज व्यापारिक जहाज़ों के लिए खुला और सुरक्षित हैं तथा व्यापार जहाज़ों पर हमले पूरी तरह रोकने का वचन दें. ये मुद्दा आज शनिवार को ओमान में होने वाली वार्ता में प्रमुख रूप से उठाया जाएगा. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार. गनुरोध रिविया जुपस में 84 साल की 84 years old की श्रीमती सुमित्रा गनु पैदाश नाम भुजावन और जिन्हें मामा विनय के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे विनय गनु के घर रिविया जुपस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौ लाबू रिविया जुपस की शमशान भूमि ले जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो 1 PM. रिशमा रोड सेंट्रो दे फ्लैक में 63 साल की 63 years old की श्रीमती तारामती भेंगेरोती पैदाश्रम जाओगी और जिन्हें फनो के नाम से भी ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल 11 बजे उनकी बेटी मनीषा बीजमोहन के घर सेंट्रो दे फ्लैक रिशमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचिया की शमशान भूमि ले जाएगी. कमीशन टुमोरो 11 AM. सेजियामिल फोरेसाइड क्यूपिक में 93 years old के श्री मनीलाल जीवता जिन्हें तोमान के नाम से भी ज़्यादा जानती थी कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके घर फॉरेस्ट क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो 2:30 PM. बुले रोज सेंट्रो दे फ्लैक में 82 years old के श्री मारीमुतु रामसामी श्री

0: मारिमुतु रामसामी, जिन्हें सामोगों के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे। उनकी पत्नी श्रीमती मुदली किसनामा वालायुदा के घर से, उनकी पत्नी श्रीमती मुदले किसनामा वालायुदा के घर सौंपो दे फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौनेमास की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति मारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: शनिवार का दिन 11 जुलाई 2026 और दिन के 12:06 हुए हैं।
5: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
4: अरे ओ यारो, कहाँ हैं आप दिलदारो? यहाँ पर आपकी सखी अनीता हाजिर हो गई है, आप ही लोगों का मनपसंद कार्यक्रम लेकर। अनीता की ओर से ढेर सारा प्यार, नमन, हेलो, आदाब स्वीकार कीजिए। शो है सुहाना सफर, पुराने गीतों की महफिल हम यहाँ पर सजा रहे हैं। दोस्तों, आप भी जुड़ जाए और एम फ्री पर, अर्थात रेडियो मनोरंजन की लहरों पर, साथ आपका और हमारा होगा अभी से लेकर 2 बजे तक। वेल दोस्तों, क्या खूब कहा गया है कि संगीत में बहता हुआ चल रहा हूँ मैं, संगीत में बहता हुआ चल रहा हूँ मैं, अपनी ही कोई धुन गाता चल रहा हूँ मैं, यही एक अकेलेपन का सहारा है मेरा, जिसके चलते हर गम सहता चल रहा हूँ मैं। जी दोस्तों, तो आइए आपको एक ऐसी धुन सुनाते हैं जो आपके दिन को मदमस्त कर दे।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: You're listening to RM3 Radio.

रेडियो मनोरंजन पर और यहाँ पर 12 बजे से पहले ही हमें कई मैसेज मिल गए। यहाँ पर आपकी फरमाइश है, थैंक यू इसके लिए जी। और यहाँ पर फ्लैक्स निर्मला जी साथ दे रही है और आप सुनना चाह रही है फिल्म बेटी बेटी का गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। और सुमन कल्याणपुर जी भी है, अगर तेली जलवा तो चलिए आपके नाम यहाँ प्यारा सा गाना।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, शनिवार का दिन है और रिलैक्स तो करना ही चाहिए क्योंकि पूरे सप्ताह तो हम काम करते ही है और दोपहर का समय है। ऑफ कोर्स खाने के बाद थोड़ा सा हमें आराम करना चाहिए। तो

बूस्टा पावर एनर्जी और यहाँ पर काफी लोग जुड़ चुके हैं। एक प्यारी सी गुड़िया ने हमें यहाँ पर मैसेज भेजा है, शनाया, और आप कहती है नंद नाना के लिए फिल्म असली नकली का गाना गुड़ी जरा। तो चलिए नंद नाना के नाम यहाँ प्यारा सा गाना।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, हंसने का मौका है, शनिवार का दिन है, हम यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर जो है मस्ती कर रहे हैं और काफ़ी लोग फ़ोन करके बात कर रहे हैं, थैंक यू जिसके लिए। और यहाँ पर शीला जी ने भी हमें फ़ोन किया है बनमिया फ्लैग से, और आप कहती है कि आपके भांजे कृष्णव मकुना का जन्मदिन है, ब्रह्मस्थान से वे हमें सुन रहे हैं, और ढेर ब्लेसिंग्स मामा निशा की ओर से, पापा कुनल है, आपका छोटा भाई है क्रियांश, दादा दादी, खासकर फूफू शीला की ओर से और पूरे मकुना परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिल्कुल फूफू कह रही है कि आपको फिल्म सागर का गाना बेहद पसंद है, तो चलिए यह गाना आपके नाम। एंड हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णव।

0: सुहाना सफर, सुहाना
1: सफर। जी दोस्तों, सुहाना सफर कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज आया है विदुला थोकू जी की ओर से, और आप कहती है कि आपके पति देव ऋषि थोकू जी जो हैं वे राजेश खन्ना जी के ज़बरदस्त वाले फैन हैं, और विदुला जी पति को खुश करने के लिए गाना मांग रही हैं प्यार दीवाना होता है फ्रॉम द मूवी कति पतंग। हाउ स्वीट। वेल, शादी के बाद भी एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना, ये भी प्यार इजहार करने का तरीका है। सो गॉड ब्लेस यू बोथ। और ऋषि जी, हम यही कहेंगे कि आप तो राजेश खन्ना जी के दीवाने हैं और आप विदुला जी ऋषि जी के प्यार में दीवानी है। वाह रे वाह, ब्लशिंग। ओके जी, तो यहाँ गाना जो है सुनिए और इसे एंजॉय कीजिए यू बोथ।

वैसे तो दोस्तों कहा गया है कि तेरी धड़कन से जिंदगी का रिश्ता है मेरा, तेरी धड़कन से जिंदगी का रिश्ता है मेरा।

जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा। ये मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्जों की नहीं है, ये मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्जों की नहीं है, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा।

और यहाँ पर गुडलैंड से सरिता जी ने हमें मैसेज किया है और आप कहती हैं आप आई बाहर आई, थैंक यू सरिता जी। और आप की फरमाइश है फिल्म सागर का गाना माय हार्ट इज बीटिंग वेल, वाओ योर हार्ट इज बीटिंग किसके लिए जी। और यह गाना पूरे परिवार के नाम और सभी सुनने वालों के नाम, हैव ए नाइस डे टू यू सरिता जी। तो चलिए हम इस गाने को एंजॉय करते हैं।

जी दोस्तों, ट्रियोले से हमेशा की तरह कल्याणी जी साथ देती रहती है और शनिवार जब आता है तो आप जो है रेडियो ऑन कर लेती है इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। और आपकी फरमाइश है फिल्म प्रेम नगर का गाना, और यही गाना जाएगा विशेषकर आपकी चार बेटियों के नाम, श्वेता, हर्षिना, श्रेष्ठा, नितिशा, पति विघन है, छोटा नातिन जियांश है, पूरे दुआऊ परिवार और सभी सुनने वालों के नाम तथा हमारे टीम के लिए। थैंक यू जी।

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: ऑफ कोर्स दोस्तों, यहाँ पर प्रेम नगर है अपना, रेडियो मनोरंजन है आपका, आपका शो चल रहा है और साथ दे रही है अनीता। कहवा कास्या से दुखित राम, बिंदु जी दुखित राम ने हमें फ़ोन किया और आपने कहा कि आज लाइन तो मिलनी चाहिए, और आपने कहा कि आपका भांजा जो है उनके

शादी है, भांजे का नाम अर्थात दूल्हे का नाम है यशवीर, दुल्हन है खुशबू। तो ढेर सारे शुभकामनाएं पापा शारदा की ओर से, मामा वीना है, बहन यजना है, और यजना का मंगेतर है अभिषेक। पूरे पुलाऊ परिवार की ओर से, दुखित राम परिवार की ओर से आपको ढेर सारे शुभकामनाएं दी जा रही है। एंड यह कामना की जा रही है कि आपकी शादी जो है सफल हो। तो चलिए फिल्म सूरज का गाना आप लोगों के नाम।

जी दोस्तों, यहाँ पर सोना सफ़र कार्यक्रम जारी है और वाकवा से फुलवंती जी ने फ़ोन किया और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों के बाद बात हुई आपसे और आप कहती है कि आपके भाई का जन्मदिन है, धनन जी का जन्मदिन है। ढेर सारे शुभकामनाएं पत्नी गायत्री की ओर से। बेटा अमन है, बेटी दीपा है, माता पिता जी है और भाई बहनों की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियां जीवन में। साथ ही साथ यहाँ पर जीवंत जी ने हमें फ़ोन किया और आप कहती है कि आपकी बहन शर्मिली जी का जन्मदिन था बुधवार को और पति मनोज की ओर से बेटा गुल है, मेविल है, पूरे सुहाती परिवार पुठोडो से बेलवेडिया के लक्ष्मण परिवार और लापुएंट के रामभोजन परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दी जा रही है, विशेषकर बहन जीवंत की ओर से। तो आप दोनों के लिए हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू धनंजय एंड हैप्पी बर्थडे टू यू शर्मिले जी। और पारस मणि का यह प्यारा गाना आप दोनों के नाम।

जी दोस्तों, हमारे साथ माधुरी जी जुड़ गई हैं और आप सुनना चाह रही हैं फिल्म त्रिशूल का गाना। तो चलिए लता जी और यशोदा जी की आवाज़ों में यह प्यारा सा गाना, और इस गाने के साथ ही हम बढ़ेंगे 1 बजे के समाचारों की ओर, और उसके बाद कार्यक्रम जारी रहेगा।

0: सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 1 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मंत्री परिषद ने शागुस मुद्दे से जुड़ा नया घटनाक्रम सामने रखा है। 2 जुलाई 2026 को अटॉर्नी जनरल गेविन ग्लोवर, प्रधानमंत्री दफ्तर और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक लगाई। ब्रिटिश अधिकारियों ने बताया कि 20 जुलाई 2026 तक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शागुस को लेकर ब्रिटेन की नीति में किसी बदलाव की संभावना नहीं। मॉरिशस ने बैठक में कहा कि

0: ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को शागत समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया के लिए एक स्पष्ट रोड मैप पेश करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि यदि प्रगति नहीं होती है तो मॉरिशस सितंबर 2026 तक अपने रुख पर फिर से विचार कर सकता है। ब्रिटेन ने 5 अक्टूबर 2026 वाले सप्ताह में एक प्रतिनिधिमंडल मॉरिशस भेजने का भी प्रस्ताव रखा है। ये दल देश की समुद्री क्षमताओं से जुड़ी जरूरतों का आकलन करेगा। राज्यसभा ने कल देर शाम डोमेस्टिक अब्यूज बिल को बिना सुधार के साथ पारित कर दिया। डीपीएम और लैंगिक समानता मंत्री ओयाना वोमाही ने कहा कि सरकार घरेलू हिंसा के पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा देने और दोषियों को उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नए कानून के तहत अपने काम के दौरान घरेलू हिंसा का मामला सामने आने पर संबंधित पेशेवरों के लिए इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। साथ ही एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की जिम्मेदारियां भी बढ़ाई गई हैं। मंत्रालय की ओर से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें सेव लाइव्स यूके के प्रशिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा। किसी की पेंशन बंद नहीं होगी, ये बात समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुबो ने कल पोटली में आयोजित प्रेस सम्मेलन में कही है। उन्होंने कहा कि स्टेट एज पेंशन हर नागरिक का अधिकार है। मंत्री ने यह भी साफ किया कि बजट 2026-2027 में प्रस्तावित मींस टेस्ट व्यवस्था को पूरी तरह वापस ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब मॉरिशस के नागरिक 60 वर्ष की उम्र से संशोधित पेंशन ले सकेंगे। वहीं जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन 65 साल की उम्र तक लेना टालेंगे उन्हें ज्यादा राशि मिलेगी। समाज सुरक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने नेशनल पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड को फाइनेंस बिल में शामिल नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर राज्यसभा में लोगों से सरा मशवरा किया जाएगा। हालांकि पेंशन की पात्रता आयु को चरणबद्ध तरीके से 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का फैसला पहले की तरह लागू रहेगा। और विदेश की खबरों में न्यूजीलैंड के ओकलैंड में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध दोस्ती साझा मूल्यों और बेहतर भविष्य की सोच पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत न्यूजीलैंड में रहने वाला भारतीय समुदाय है जो दोनों देशों के रिश्तों को लगातार मजबूत बनाता रहता है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। इकबाल रोड घोंबे में 65 साल के 65 years old के बीबी रहीमन हुसैनी इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज शाम के 4 बजे उनके भाई अलीम हुसैनी के मकान घोंबे से निकालकर दफनाने के लिए कपमालुगु का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Suhana Safar.
5: जी दोस्तों, 1:04 हुए हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन। और यहाँ पर हम जो हैं आपका मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। अनीता हैं साथ और यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं जुड़ गए हैं हमारे साथ, कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू इतने सारे प्यार मैसेजेस के लिए। तो कार्यक्रम को जारी रखते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट में। यहाँ पर मनोज सोहन जी रिस्पांस त्रिबुशे से जो हैं जुड़ गए हैं और आप सुनना चाह रहे हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर गाना। और यही गाना जो है जाएगा विशेषकर प्यारी पत्नी नजीमा की ओर से पूरे सोहन परिवार हैं। साथ ही साथ गया सिंह आश्रम के लोग जो हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी बीमार लोग हैं, उनके लिए यहाँ गाना जाएगा। और आपने याद किया विशेषकर उन दोस्तों को जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तो उनके नाम भी यहाँ गाना जाएगा। और साथ ही साथ आपकी प्यारी बहना गीता सोहन और साथ ही साथ वीना नंदू जी के नाम यहाँ गाना जाएगा। और आप कहते हैं कि वीना जी हमें काफ़ी पसंद करते हैं, तो थैंक यू इसके लिए जी। तो

चलिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना आप लोगों के नाम टू बूस्ट अप योर एनर्जी कि जो कुछ है हमें डटकर सामना करना होता है, तो चलिए वो मुकद्दर का सिकंदर।

जी दोस्तों, किशमा फ्लैग से देवयानी जी साथ दे रही है और आप सुनना चाह रहे हैं फिल्म दोस्ती का गाना, खासकर आपकी नातिन लिविया के लिए और पूरे छेड़ी और देवदारी परिवार के नाम यह प्यारा सा गाना।

जी दोस्तों, फिल्म समझौता का गाना विनय जी की के लिए यहाँ पर आप सुन रहे हैं ऑसनाल से, और यह गाना जाएगा पूरे नंदू परिवार के लिए।

जी दोस्तों, कभी कभी गमों से भी समझौता करना पड़ता है ताकि जीवन आसान लगने लगे। और यही तो जीवन का दस्तूर है कि कभी सुख है कभी दुख है। और यहाँ पर फी कॉम्फ्लेक्स से अनीता जी साथ है दे रही हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म रंगीला रतन का गाना। और यही गाना जाएगा विशेषकर पतिराज के नाम। बेटे अंकुश हैं, अंतिश हैं, बहू अशिमा है, मनीषा है, पोती हिमेशा है, आधिया है, पोते लद्दू गोपाल है और सभी परिवार वालों के नाम, साथ ही साथ जो है सभी सुनने वालों के नाम यह गाना जाएगा। तो चलिए यह गाना आप सभी के नाम

जी दोस्तों, वाकवा से नंदलाल जी साथ दे रहे हैं और आप फिल्म अनारी का गाना सुनना चाह रहे हैं, तो यह गाना खासकर आपके नाम और साथ दे रही है ज्योति जी शतुदेबानस बिना खैसे और साथ ही साथ रेखा सुरेखा और पूरे मैडम परिवार के लिए यह गाना और अश्नि भी हैं साथ में।

जी दोस्तों, ग्रांगुप से शमा जी साथ है दे रही हैं। और अगला गाना जो है फिल्म राजहत का गाना, भाई जयप्रकाश के नाम भाभी नम्रता है, नेफ्यूज है युधिष केशव, साथ ही आपकी सहेलियां हैं विश्वानी दुखी, वीना रामफल, नंदिनी ओकलू और सभी परिवार के नाम यह गाना जाता है।

मुताइब लोट से नवीन जी साथ दे रहे हैं और हम जानते हैं कि आप आशा जी के बेहद वाले फैन हैं, तो आपके लिए यह प्यारा सा गाना करता है।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता धुंधला सा लगता है, हर उम्मीद अधूरी सी लगती है। मगर जरूर याद रखिए, अंधेरी रात के बाद ही सवेरा आता है। जो दर्द आज तुम्हारे सीने में भारी लग रहा है, वही तुम्हें कल और मजबूत बनाएगा। ये राहें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारा हौसला इनसे भी बड़ा है। गिरते गिरते भी चलना सीख लो, क्योंकि तुम बने ही उड़ान भरने के लिए। जी दोस्तों, ये बकवास से विश्वानी डुमन जी साथ दे रही है और आप कहती हैं कि फिल्म जाल का गाना आपकी बहन इंदिरा के नाम, शारदा के नाम, सहेली है नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता गजाधर के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर किसी ने मैसेज भेजा है, बॉम्बू से धनेश्वर जी ने हमें मैसेज भेजा है और आप सुनना चाह रहे हैं किशोर दा का एक गाना, लेकिन अभी लिस्ट में नहीं है। लेकिन जो अगला गाना बहुत ही प्यारा गाना है, यह गाना जो है हम आपके नाम कर रहे हैं और यह गाना जाएगा विशेषकर प्यारी पत्नी सुनीता के नाम और पूरे देवडोस परिवार के लिए जो बॉम्बू के रहने वाले हैं।

वैसे तो तुम दो दूर हो मगर दिल में यहाँ एहसास होता है, कोई है जो हर पल दिल के पास होता है। याद तो सब की आती है मगर तुम्हारी याद का एहसास ही कुछ खास होता है। ऑफ कोर्स दिस गाना फ्रॉम हरीश जी वासे टू अनु। मोहब्बत वाला गाना, प्यार वाला गाना।

जी दोस्तों, मदाल बे से अनीता जी ने हमें एक छोटी सी कविता भेजी है। तेरी दोस्ती ने बहुत कुछ सिखाया, उदास चेहरे को हंसना सिखाया। मैं कर्जदार हूँ उस खुदा का जिसने मुझे तेरे जैसा दोस्त मिलाया।

और फिल्म दिल का क्या कसूर का गाना जाएगा विशेषकर करुणा अमृता और सभी दोस्तों के लिए, खासकर प्यार करने वालों के नाम यह गाना जाता है।

जी दोस्तों, एक अंतिम गाना रह गया है और वो जाएगा करुणा जी के नाम, जो सेपास्टोपोल से साथ दे रही है, और उनके पति के नाम, विक्रम के नाम, और उन तमाम लोगों के नाम जो लाइन नहीं मिली उनको, तो उन सब के नाम, और साथ ही साथ यहाँ पर आंटी जी और कॉन्फोको से हैं, और प्रकाशवती जी बेल्जियम से है और कह रही है बहुत गर्मी हो रही है वहाँ पर, तो यहाँ अगला गाना आपके नाम और आपके फ़ोन कॉल्स मैसेजेस के लिए। थैंक यू जी। हमारे बाद आएगा अलका जी और सुमिता जी इतिहास के झड़ों के कार्यक्रम के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर, हम मिलेंगे अगले सप्ताह। अनिता को दीजिए इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था के साथ। आपको नमस्कार आस्था।
1: नमस्कार। मंत्रिपरिषद ने शागुस मुद्दे से जुड़ा ताजा घटनाक्रम उसकी जानकारी दी। कल 2 जुलाई 2026 को अटोर्नी जनरल गेविन ग्लोवर, प्रधानमंत्री दफ्तर और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक लगाई। ब्रिटिश अधिकारियों ने बताया कि 20 जुलाई 2026 तक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शागुस को लेकर ब्रिटेन की नीति में किसी बदलाव की संभावना नहीं। मॉरिशस ने बैठक में कहा कि नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री को शागुस समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया के लिए एक स्पष्ट रोड मैप पेश करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि यदि प्रगति नहीं होती तो मॉरिशस सितंबर 2026 तक अपने रुख पर फिर से विचार कर सकता है।

0: राज्यसभा ने कल देर शाम डोमेस्टिक अब्यूज बिल को बिना किसी संशोधन के साथ पारित कर दिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और लैंगिक समानता मंत्री ओयाना वोमाही ने कहा कि सरकार घरेलू हिंसा के पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा देने और दोषियों को उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नए कानून के तहत अपने काम के दौरान घरेलू हिंसा का मामला सामने आने पर संबंधित पेशेवरों के लिए इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। किसी का भी पेंशन बंद नहीं किया जाएगा। ये बात समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सिब्बो ने कल पोटली में आयोजित प्रेस सम्मेलन के बाद कही। उन्होंने कहा कि स्टेट एड एज पेंशन हर नागरिक का अधिकार है। मंत्री ने साफ किया कि बजट 2026-2027 में प्रस्तावित मींस टेस्ट व्यवस्था को पूरी तरह वापस ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब मॉरिशस के नागरिक 60 वर्ष की उम्र से संशोधित पेंशन ले सकेंगे। वहीं जो लोग अपनी स्टेट एड पेंशन 65 साल की उम्र तक लेना टालेंगे उन्हें ज्यादा राशि मिलेगी। समाज सुरक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने नेशनल पेंशन और प्रोविडेंट फंड को फाइनेंस बिल में शामिल नहीं करने का फैसला किया है। आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। विषय है आज और भविष्य के लिए युवाओं की उम्मीदों और सपनों को साकार करना। इस ये विषय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक नई रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट के लिए 73 देशों में 18 से 39 वर्ष की उम्र के 1,00,000 से अधिक लोगों से ऑनलाइन सर्वे किया गया। रिपोर्ट में युवाओं के संबंधों, परिवार, बच्चों और भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदों के साथ उन चुनौतियों पर भी ध्यान दिया गया है जिन्हें वे अपने सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी रुकावट मानते हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: इतिहास के झरोखों से
1: श्रोताओं नमस्कार। इतिहास के झरोखे से कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप तो रेडियो सेट से जुड़े ही हुए हैं, सुबह से खूब सुंदर गाने, बातचीत और बहुत सारी बातें, अभी आपने समाचार सुने। तो चलिए अब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। पन्नों को पलटते पलटते एक बहुत ही सुंदर चित्र पर दृष्टि पड़ी और सुमिता जी ने कहा कि वाह, व्यक्तित्व हो तो ऐसा। और बस उसी समय निर्णय लिया हमने कि आज हम स्वामी विवेकानंद की पर चर्चा करेंगे। श्रोताओं सचमुच ऐसा भव्य व्यक्तित्व, ऐसा संन्यासपूर्ण जीवन और इतना ज़्यादा अकेडमिक और समझदार व्यक्ति कि जिसने एक गुलाम भारत की छवि पूरे यूरोप में बदल कर रख दी। कहाँ तो यूरोप के लोग सोचते थे कि ये लोग बंदर की पूजा करते हैं, चींटियों को आटा देते हैं, पत्थरों की मूर्तियों की, लेकिन यूरोप में जाके जब उन्होंने वहाँ पर अपना डिस्कोर्स दिया तो दुनिया की आँखें फटी की फटी रह गई। तो श्रोताओं ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने जहाँ पूरी दुनिया या अंग्रेज़ों ने जो छवि हमारी पूरी दुनिया में बना रखी थी कि ये एक बैकवर्ड कंट्री है और ये लोग धर्म के बारे में जानते नहीं हैं, केवल वे ही लोग सब कुछ जानते हैं, पूरी तरह से विवेकानंद ने उसे बदल डाला। कहाँ तो उनको 3 मिनट मिले थे और कहाँ 3 दिन उनको लोगों की मांग पर बोलने का मौका दिया गया। तो श्रोताओं दुनिया में अपने देश को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने वाला व्यक्ति, जिस समय देश की छवि विदेशियों ने धूमिल करनी शुरू कर दी थी, उस समय उन्होंने एक ऐसे झरोखे से प्रकाश डाला कि दुनिया चकाचौंध रह गई। तो श्रोताओं आज हम स्वामी विवेकानंद पर ही चर्चा करेंगे।
2: बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था और वो 4 जुलाई 1902 को चल बसे थे। बहुत ही कम जो है
1: समय
2: में उन्होंने बहुत कुछ किया था।
1: दुनिया में जो दुनिया पलटने आते हैं ना, वो बड़े ही सीमित समय के लिए आते हैं और बस अपना काम करके निकल जाते हैं।
2: और आज भी स्वामी विवेकानंद जी की बात हम करें या उनका ध्यान आता है तो कहीं ना कहीं उनका वो भाषण सबको याद आता है।
1: सच में देखिए, शंकराचार्य जी ले लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ले लीजिए, सब अपना काम जैसे निपटा के
2: चले
1: बस निकल गए। तो स्वामी विवेकानंद
2: उनका जन्म इसी मकसद

0: मकसद के लिए होता है, और इसीलिए रामकृष्ण परमहंस उन्हें अपना मानस पुत्र कहते थे
1: जी।
0: और ऐसा नहीं है कि स्वामी विवेकानंद जन्मजात ही ऐसे पैदा हो गए थे, परिवार, माता का सहयोग, उनके दादा तो बहुत ही योग्य थे, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत के ज्ञाता थे, यहाँ तक कि अपने जीवन काल में गृहस्थ आश्रम पूरा करके वे वानप्रस्थ, उसके बाद उन्होंने संन्यास आश्रम ले लिया था। तो उनके परिवार में वो जो अध्यात्म की एक तड़प, एक ललक थी, वो उनके इतिहास में दिखाई देती है। और फिर उनके पिता भी बहुत योग्य थे, बड़ा ही सम्मान था उनका, और वे बहुत पहुँचे हुए वकील थे, घर में पढ़ाई का वातावरण था। और माता जी, लोग कहते हैं कि उस जमाने में महिलाएं पढ़ती नहीं थी, लेकिन उनकी माता जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि लगता था कि वे किसी भव्य परिवार से हैं, बहुत ही ऊंचे घराने की महिला है और बहुत ही योग्य थी। अपने पुत्र को वे जब भी गोद में बिठाती, प्यार करती, महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाया करती थी। लोग लिखते हैं कि उनको महाभारत और रामायण की कितने ही श्लोक याद थे और वे कंठस्थ करके उसी समय बोल पाती थी। तो बहुत ही योग्य महिला की संतान थे स्वामी विवेकानंद, लेकिन उनके परिवार में वो जो अध्यात्म के बीज थे वो थे, तो वे विवेकानंद में भी वक्त आने पर यही बीज विवेकानंद को तंग कर रहे थे कि भगवान कहाँ है, वह हमें मिलता क्यों नहीं है, यही सारे प्रश्नों को लेके वे थोड़े नास्तिक से भी हो गए थे। और रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें पुनः लाइन पर लगाया था।
1: और कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, वो इतने जैसे के गुणी, ज्ञानी, और उनके गुरु की बात करें,
0: रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल काली माँ के मंदिर में
1: एक भक्त
0: पुजारी और एक भक्त, और इतने बड़े भक्त और इतने सही भक्त कि लोग कहते हैं कि काली माँ जब तक उनका दिया हुआ प्रसाद खा नहीं लेती थी,
1: हाँ।
0: वे भोजन नहीं ग्रहण
1: करते, हाथ से नहीं खाते, हाँ।
0: चाहे 3 दिन तक पड़ा रहे, वे उपवास पर ही रहते थे। और नरेंद्र जब उनके, क्योंकि विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, तो वे यही, उन्होंने पहला प्रश्न यही पूछा, क्योंकि बहुत नास्तिक हो रहे थे और चंचल बहुत थे विवेकानंद, उनके मित्र ही उनको लेकर गए थे कि चलो, एक बहुत पहुंचे हुए पुजारी हैं कलकत्ता के काली माँ मंदिर में, तुम चलो वहाँ पर। जब वहाँ गए तो उन्होंने पहला सवाल यही पूछा कि आपने भगवान को देखा है क्या, माँ को देखा? उन्होंने कहा ठीक वैसे जैसे तुमको देख रहा हूँ। और विवेकानंद ने कितनी बार अपने गुरु की परीक्षा भी लेनी चाहिए। एक दिन उनकी जहाँ वे बैठते थे उसके नीचे एक कॉइन रख दिया, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस पैसे बिल्कुल नहीं किसी से लेते थे, तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस बैठे, एकदम से उछल पड़े, बोले यहाँ कुछ ठीक नहीं है। विवेकानंद को लगा कि सचमुच कैसे उनको पता चल गया, तो उनको सही गुरु मिले। और इसी गुरु ने, जिनकी पत्नी जब रामकृष्ण परमहंस जी विवाह के लिए उस जमाने में छोटी उम्र में ही दिखाने ले जाते थे, पहला सवाल उन्होंने माँ शारदा से पूछा, तुम मेरे जीवन में साधक बनोगी या बाधक? तो उन्होंने कहा कि जिस राह पर आप चल रहे हैं, मैं उस राह पर आपको और आगे ले जाने का प्रयास करूंगी। तो पहले दिन से ही रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी को माँ शारदा कह के पुकारा था। श्रोताओं, ये जो संस्कृति है ये केवल भारत में है।
1: ऐसा लग रहा है कि हमें एक कार्यक्रम
0: रामकृष्ण परमहंस पर, बिल्कुल उनकी विचारधारा पर, उनके जीवन दर्शन पर। आप सोचिए, अपनी पत्नी को माँ कह के बुलाना और जीवन भर उसको माँ का सम्मान दिया, और बाद में विवेकानंद आप दोनों के मानस पुत्र बने, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस की जो वैचारिक धरती थी उससे विचारों को लेकर समाज सेवा का कार्य किया। और आज देखिए, रामकृष्ण मिशन पूरी दुनिया में विवेकानंद के, रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं।
1: चलिए, अभी के लिए एक गाने के साथ कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। जितने श्रोता हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, आपको पता ही है, आप हमें 4028070 पर कॉल कर सकते हैं।
0: तो चलिए सुनते हैं।

0: इतिहास के झरोकों से।
1: और श्रोताओं, सचमुच इतिहास के झरोखों में क्या क्या नहीं छिपा हुआ। हम उस जमाने में तो नहीं थे, 100-150 साल पहले की बातें हैं, लेकिन एक कुलीन परिवार का ये कुलीन बच्चा समाज को इतना कुछ दे गया कि आज समाज उनके जो लेक्चर्स हैं, जो उनके भाषण हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने भाषण दिए। लेकिन उनके भाषणों में जो सबसे मुख्य बात है वो तिष्ठत जागृत है, उठो और जागो। मतलब ये बार बार हम कहते हैं ना कि सोए हुए आदमी को तो आप जगा सकते हैं, जागे हुए को जगाना बड़ा कठिन है। तो यही बात वे बार बार कहते हैं। और उनके अधिकतर भाषणों में भारत माता की चर्चा है। वे व्यक्ति के उत्थान या किसी संस्था के उत्थान की बात नहीं करते, वे एक एक व्यक्ति के चरित्र की बात करते हैं कि आप जब अपने चरित्र को बनाते हैं और आपका उद्देश्य है देश प्रेम, अपनी जन्मभूमि, तब आपका जो सोच है, जो विचार है, वो विस्तार पाते हैं। तो ये विवेकानंद के भाषणों में बहुत बड़ी विशेषता थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शुरू में जिस कॉन्फ्रेंस में वे गए थे, वहाँ पर उनसे उन्होंने पूछा कि किस विषय पर मैं बोलूँ। मजाक करके उन लोगों ने उसे कहा जीरो, शून्य पर। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में जीवन को शून्य बनाना ही तो मोक्ष है। जब उनसे कहा गया कि आप जीरो पर बोलिए, ये मजाक था, उन्होंने कहा ठीक। और उन्होंने अपना जो भाषण शुरू किया उसमें प्रथम पंक्ति थी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज तक यूरोप में किसी ने ऐसा संबोधन दिया ही नहीं था, सभी लोग मिस्टर या मैडम या चिल्ड्रन ऐसे बोलते थे। 3 मिनट तक तो तालियां ही बजती रहीं, आप सोचिए। और जब उन्होंने बोला तो लोगों की प्यास इतनी बढ़ गई भारत के अध्यात्म को जानने के लिए, भारत के ज्ञान को जानने के लिए, कि 3 दिन तक उनको उन्हें बुलाना पड़ा। तो श्रोताओं, शून्य पर जब उन्होंने बोला तो मानो भारतीय संस्कृति का सार तत्व ही उन्होंने बता दिया। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो जब तक मैं नहीं ख़त्म होता तब तक आप प्रभु को ढूंढ ही नहीं सकते हैं। तो शून्य हो जाना ही अध्यात्म की सबसे बड़ी साधना है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ वह ईश्वर है, वही करने वाला है। जब व्यक्ति यहाँ तक पहुँच जाता है तब गीता का संदेश भी सध जाता है।
2: बिल्कुल। और स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, कहते हैं बचपन से ही वो बहुत ही जैसे कि शरारती थे, नटखट थे, और हर एक विषय में, मतलब कि उनकी बड़ी जिज्ञासा थी, उनकी बड़ी जिज्ञासा होती थी हर चीज़ को जानने की। और शायद यही जिज्ञासा उन्हें जीवन के इस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके लिए बहुत ही
1: कारगर था। परिवार भी ऐसा था उनका कि जहाँ पर वो आध्यात्मिक शिक्षा उस तरह की बातें,
2: उनके पिता वकील
1: थे, पिता और दादा उनके संन्यास लेके गए थे। आप सोचिए, सब कुछ पिता के हाथ में देके इनके तो संन्यास उन्होंने ले लिया था। तो श्रोताओं, सचमुच ऐसा व्यक्तित्व जो है वो अपने आप में इतिहास के जिस झरोके से झांकेगा उसे एकदम से प्रकाशित कर देगा।
0: इतिहास के झरोकों से।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: चलिए इतिहास के झरोखे इस कार्यक्रम से हम जुड़े हैं और आज स्वामी विवेकानंद जी पर हम बात कर रहे हैं। इस महीने की 4 तारीख को उनकी जो है बरसी थी, 4 जुलाई 1902।
2: जी बिल्कुल,
1: 1902 को वे चल बसे थे, लेकिन जितना समय उनके जीवन में था उन्होंने बिल्कुल अपने समय को गवाया।

0: नहीं, जीवन के हर एक क्षणों का जो है पूरा जो है उन्होंने लाभ उठाया और कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है न्यौछावर कर दिया।
1: और सबसे बड़ी बात, वे एक शिक्षित व्यक्ति थे और बचपन से ही बहुत अच्छे स्कूल में उनको भेजा गया था और बड़े मेधावी थे, हर सब्जेक्ट में उनके अंक जो थे बहुत अच्छे आते थे,
0: क्योंकि उनकी जिज्ञासा बड़ी थी ना,
1: और विशेष रूप से इतिहास, संस्कृत और दर्शन शास्त्र उनके बहुत प्रिय विषय थे, और बाकी धर्म के प्रति रुचि तो उनको जैसे जीन्स में ही मिली थी
0: जी।
1: लेकिन फिर भी सवाल बहुत थे उनके भीतर, इतने सवाल पूछते थे कि लगता था पता नहीं क्या खोजना चाहता है ये बच्चा, क्या चाहता है, उसका इस प्यास नहीं बुझ रही थी। तो इतने मननशील थे कि अन्य बच्चों से अलग दिखाई देते थे, और उनकी मानसिकता जिसे हम कहते हैं ना मैच्योर बच्चा, परिपक्वता थी उनके अंदर
0: कि कम उम्र में ही वो जैसे कि ज्यादा,
1: और पश्चिमी धर्म को, उनकी विचारधारा को, भारतीय विज्ञान, सब चीज को जैसे समझना चाहते थे। तो ऐसे जिसे कहते हैं ना विचारों की दृष्टि से भटक रहे बच्चे को रामकृष्ण परमहंस का किनारा मिल गया
0: जी।
1: बस उसके बाद तो जो रास्ता उनको मिला वे आगे ही बढ़ते गए, और जीवन के 12 वर्ष उन्होंने तपस्या में बिताए थे अपने आप को साधने के लिए। और उन्होंने एक जगह पर अनुभव में लिखा है कि मैं जब बैठा हुआ था तो एक शेर सामने से आ रहा था, तब मुझे लगा कि नहीं, अगर मुझे पूरा विश्वास है परमात्मा पर तो ये भी चला जाएगा, और वही हुआ। उन्होंने कहा कि अगर आपके मन में अहिंसा का भाव है तो हिंसक पशु भी आप पर आक्रमण नहीं करता
0: जी।
1: तो एक जुनून जो उनके अंदर था उसी के कारण इतनी उन्होंने साधना की, यहाँ तक कि वे वापस आए तो रामकृष्ण जी समाधिस्थ हो चुके थे, वे बहुत दुखी थे, पर माँ शारदा ने उनका पूरा साथ दिया
0: जी।
1: लेकिन अंधविश्वासों, असामाजिक तत्वों, इन सब के खिलाफ उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई। इसीलिए आप देखिए विदेश की कितनी सिस्टर निवेदिता विदेशी महिला थी, लेकिन विवेकानंद के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई कि अपना पूरा जीवन उन्होंने बंगाल के स्लम एरिया में दे दिया। विवेकानंद ने ही उनको नया नाम दिया था सिस्टर निवेदिता। तो उनके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण था, उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि जो व्यक्ति समाज सेवा या अध्यात्म के मार्ग पर जाना चाहते थे उन लोगों ने उनको स्वीकार किया।
2: इतिहास के झरोखों से

सचमुच श्रोताओं, पैसा बोलता है। ठीक है, बोलता है, एक साधन है, लेकिन महान व्यक्ति इस पैसे से ऊपर की दुनिया दिखाते हैं। यदि जीवन में संतोष आ जाए तो वो जो पैसा कितना भी बोले वो ज़्यादा शोर नहीं मचा पाता है। बाकी जीवन का एक साधन है, किसी ज़माने में तो बार्टर सिस्टम था, लेकिन आज साधन पैसा है इसलिए बोलता है। तो चलिए ज़रा बढ़ते हैं फिर से विवेकानंद की ओर। विवेकानंद के विचार जो थे वो युवाओं को बहुत अधिक प्रेरित करते थे और वे चाहते थे कि हमारे युवाओं में आत्मविश्वास जागे और वे निस्वार्थ भाव से कर्म कर सकें। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति या अंग्रेज़ों के जो मन में विचार था वो इस देश के युवाओं के आत्मविश्वास को कम करना था। तो विवेकानंद ने वो जो अंधकार मन में भर गया था उसी को निकालने का प्रयास किया। वे कहते थे, उठो, जागो, और जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक पढ़ते रहो। तो श्रोताओं, सबसे पहले लक्ष्य को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हम में से कितने लोग तो भटकते ही रहते हैं, पता ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। किसी का लक्ष्य है एक कोई नौकरी मिल जाए, किसी का लक्ष्य है एक पत्नी मिल जाए, किसी का लक्ष्य है बस मेरा परिवार हो जाए। बहुत छोटे छोटे से लक्ष्य हैं। वो जो बड़ा लक्ष्य होता है ना, महान लक्ष्य, कि जीवन में तुमने क्या करना है, ये छोटी यात्राएं सबको तय करनी है, क्योंकि हम सबको एक घर भी चाहिए, छत भी चाहिए, परिवार भी चाहिए। लेकिन इसके बाद वह जो जीवन का लक्ष्य है, विवेकानंद उसकी बार बार बात करते हैं और वे कहते हैं कि मनुष्य को, क्योंकि हम उस ईश्वर के अंश हैं, तो हमारे भीतर भी असीम शक्तियाँ हैं, लेकिन हम उन शक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं। यदि हम उन शक्तियों को जगा सकें, पहचान पाएँ, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके साथ साथ वे सभी धर्मों को समान भाव से देखने की बात करते थे। और एक चीज़ उनकी जो उन्होंने बहुत जोर दिया, व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर। वे तो कहते थे शिक्षा भी अधूरी है यदि वह व्यक्ति का चरित्र निर्माण नहीं करती है। क्योंकि श्रोताओं, आप किसी देश की प्रगति के लिए कुछ भी कर लें, कितनी योजनाएं डाल दें, कितने प्रोजेक्ट, कितना पैसा, लेकिन देश में काम करने वाले व्यक्ति यदि बेईमान हैं, चोर हैं, तो सारे प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते हैं। एक व्यक्ति या एक कमेटी द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट यदि जो उसको

0: लागू करने में जो साधन है, जो चेन का काम करते हैं, यदि उनका चरित्र अच्छा नहीं तो सब धरा का धरा रह जाता है। इसीलिए श्रोताओं, वे बार बार कहते थे व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ चरित्र का होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: तो सुनीता जी आप भी उनके कुछ विचारों को जोड़िए।
1: बिल्कुल, वो निडरता पर भी जो है काफ़ी कुछ कहा करते थे। उनके मुताबिक कहते हैं ना कि जो चीज़ें आपके को शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर करती है वो जहर के समान होती है, उसे त्याग देना चाहिए। और एक और चीज़ वो कहते हैं कि हद से ज़्यादा कुछ भी अपने आप में जहर के समान ही होता है।
0: ये यहाँ पर गौतम बुद्ध भी याद आ जाते हैं कि संयमी जीवन होना चाहिए, ना तो अपने आप को इतना ढीला छोड़ दो कि जो मर्जी रौंद जाए, और ना इतना कस के रखो कि सामने वाला आपसे बात करते भी डरे।
1: और आजकल के हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई कि जो मिल रहा है हम समेटते जा रहे हैं, भले हमें उसकी चीज की आवश्यकता है या नहीं, और उसी बोझ के तले हम कहीं ना कहीं दबते भी जा रहे हैं,
0: और उसमें अपना खर्चा बढ़ता है और फिर इच्छाएं भी बढ़ती ही जाती हैं, उससे कहीं रुकती तो है नहीं।
1: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी चीजों पर एक संयम हो, एक संतुलन हो, तो जीवन भी आसान हो जाता है।
2: इतिहास के झरोखों से

0: इतिहास के झरोकों से।
1: श्रोताओं, विवेकानंद के बारे में जब बात करें तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 4028070 पर हमें आपकी हमेशा इंतजार रहती है। श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद के विचारों को जब हम पढ़ते हैं, एक सबसे बड़ी विशेषता उन विचारों को पढ़कर आपके भीतर एक हलचल मचने लगती है, क्योंकि वह व्यक्ति बड़ा ही तेजस्वी था। जैसे न कोई किसी को पकड़ कर झकझोर दे, उनकी बातें कुछ ऐसी ही थी। और जब वे बोलते थे तो मानो सभा सो नहीं सकती थी। और जवानों के लिए, युवाओं के लिए उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। वे कहते थे, वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीवित है, जो खुद के लिए जीते हैं वे मरे हुए के समान हैं। आप सोचिए, उस समय जब देश गुलाम था, जागृति नहीं थी, निरक्षरता बढ़ रही थी, ऐसे समय में वे कहते हैं कि केवल अपने लिए जीने वाला तो मरे हुए के समान है। अर्थात पूरे समाज का हित आप देखो, ये बहुत ज़रूरी है। और वे कहते थे, जब लक्ष्य आपने डालना है तो एक समय में एक काम पकड़ो, और इसको जब करो तो पूरी अपनी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो इसी को हम कहते हैं ना एकाग्रता। एक लक्ष्य को पकड़कर उसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें तो व्यक्ति को सफलता मिलती है और उसे मानसिक रूप से एक शांति भी मिलती है। तो श्रोताओं, वे हमेशा कहते थे कि

0: जो चीज आपको शारीरिक बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करती है उसे एक जहर की तरह से त्याग दो और निर्भय बनो। श्रोताओं, ये जो निर्भय शब्द है ना, ये उनका बड़ा ही प्यारा शब्द है। वे बहुत जगह पर इस निर्भयता की बात करते हैं कि डरना क्या, मृत्यु से भी नहीं डरना चाहिए यदि आप सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। उनका स्वयं का जीवन भी ऐसा ही था। वे बहुत तेजस्वी, निडर, निर्भीक और अपने लक्ष्य की ओर सदैव आगे बढ़ने वाले थे।
1: बिल्कुल। और चलिए, यहाँ पर कुछ बातें हम इस समय स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं ना, कहीं ना कहीं जैसे विचार होते हैं हमारे कर्म भी वैसे होते हैं,
0: हम चलने ही लगते हैं उस राह पर।
1: और हमारे धर्म में तो कर्मों को बड़ा ही मान दिया गया है। अच्छे कर्मों का कहते हैं ना सदैव अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का फल भी हमें ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ये भी बात, आजकल जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, आजकल जग तो एक अलग ही जो है विचारधारा में चल रहा है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचो, पर ये धारणा तो पहले से है, आज की नहीं,
0: दर्शन में तो है
1: जी।
0: आप पूरी ऊर्जा कॉस्मोस की इकट्ठी कर सकते हैं अगर आप पूरे केंद्रित होकर किसी काम को करते हैं। आज उसको डिफरेंट शैली में या एक बिजनेस के रूप में लोग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय दर्शन तो कहता ही
1: है
0: कि पांचों पिंड यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पांच तत्व ब्रह्मांड में वही आपके
1: हमारे भीतर भी है,
0: बस आपको उन ऊर्जा को पहचानना है
1: जी।
0: तो इसी ऊर्जा की बात, इसी शक्ति की बात, इसी निडरता की बात विवेकानंद बार बार करते हैं।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: सचमुच श्रोताओं, जिंदगी खूबसूरत तो है, लेकिन उसको जीने का ढंग आना चाहिए ना। इसीलिए हम महान व्यक्तित्वों को बार बार इतिहास के पन्नों से पलट पलट कर ढूंढते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इस देश को या विश्व को या मानवता को या अपने आसपास के समाज को आगे ले जाने के लिए कुछ किया होता है, वे ऐसे पदचिन्ह छोड़ जाते हैं कि बार बार उस खुशबू को लेना पड़ता है। और उनके जो परफ्यूम्स होते हैं ना, वो मिटते नहीं हैं। आप पन्ने तो पलटती है, फिर मिलने लग जाते हैं। ये कोई खुशबू की बोतल नहीं है ना कि खाली हो गई तो फेंक दी, ये तो उनके कर्मों की खुशबू होती है। तो विवेकानंद, हाँ, चरित्र की खुशबू। और विवेकानंद तो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसे देश क्या पूरा विश्व कभी नहीं भुला पाएगा।
2: बिल्कुल, और उन्होंने जहाँ पर धर्म, एकता और प्रेम को हमेशा जो है ऊंचा स्थान दिया, वहीं पर सभी धर्मों को, जैसे आपने पहले कहा, एक समान रूप से देखा।
1: हाँ, ये बहुत
2: कभी
1: बड़ी बात
2: भाव नहीं किया।
1: और जबकि वे हिंदू धर्म को या वेदांत दर्शन को बहुत अच्छी तरह जानते थे, लेकिन फिर भी सभी धर्मों का भी सम्मान करते थे।
2: तो चलिए, इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के लगभग अंत तक आ गए हैं अलका जी।
1: और श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास के झरोखों से अगली बार फिर आपके साथ मिलेंगे और फिर जुड़ेंगे। इस गीत का आनंद लीजिए और फिर समाचार।
2: जी, 3 बजे आप सुनेंगे समाचार, और उसके बाद आज की चर्चा कार्यक्रम जो सवेरे 9 बजे चलाया गया, उसे आप दोबारा सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर। और अलका जी और मैं अगले सप्ताह फिर आएंगे आप लोगों से मिलने।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार यहाँ पर आस्था के साथ। आपको नमस्कार आस्था।
1: नमस्कार, सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। प्लेटफॉर्म कुम सेंसिकल की पहल पर इस समय राजधानी की सड़कों पर एक शांतिपूर्ण रैली निकाली जा रही है। ये रैली बेसिक रिटायरमेंट पेंशन में प्रस्तावित सुधार के विरोध में आयोजित की गई है। रैली आज दोपहर करीब 1 बजे मैरीगन दे ला पे से शुरू हुई और कंपनी गार्डन में जाकर समाप्त होगी। हर उम्र के लोग श्रमिक संघों के साथ इस रैली में शामिल हुए हैं। वे वेलफेयर स्टेट की व्यवस्था को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि किसी भी सुधार को लागू करने से पहले लोगों से व्यापक स्तर पर सलाह मशवरा किया जाना चाहिए। कैबिनेट ने अक्टूबर में होने वाली प्राइमरी स्कूल अचीवमेंट सर्टिफिकेट पीसा परीक्षा के टाइम टेबल की भी जानकारी दी। परीक्षाएं 22 अक्टूबर से शुरू होंगी। पहले दिन फ्रेंच और साइंस की परीक्षा होगी। 23 अक्टूबर को इंग्लिश का पेपर होगा। इसके बाद छात्र 26 और 27 अक्टूबर को भी परीक्षा देंगे। आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है आज के भविष्य के लिए युवाओं की उम्मीदों और सपनों को साकार करना। यह विषय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक नई रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट के लिए 73 देशों में 18 से 39 वर्ष की उम्र के 1,00,000 से अधिक लोगों से ऑनलाइन सर्वे किया गया। रिपोर्ट में युवाओं के संबंधों, परिवार, बच्चों, भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदों के साथ साथ उन चुनौतियों पर भी ध्यान दिया गया जिन्हें वे अपने सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी रुकावट मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में न्यूजीलैंड

0: के ओकलैंड में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते दोस्ती, साझा मूल्यों और बेहतर भविष्य की सोच पर आधारित है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत न्यूजीलैंड में रहने वाला भारतीय समुदाय है, जो दोनों देशों के संबंधों को लगातार मजबूत बना रहा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: आज की चर्चा।
3: आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा सप्रेम नमस्कार स्वीकार कीजिए। हमारे देश में हमारे जो परदादा, हमारी परदादियाँ थी, वे जब मॉरिशस आए तो किस जगह पर वे उतरे, कहाँ पर वे ठहरे, किस तरह से उनका जीवन शुरू हुआ, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और किस संदर्भ में हम ये बातचीत आज रख रहे हैं, ऐसा है कि इस वर्ष 16 जुलाई को 2026 को हम आप्रवासी घाट का विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने की 20वीं सालगिरह मना रहे हैं। मतलब कि हमारे पूर्वज, हमने के जो परदादा परदादी लोग रहल, उन लोग के मॉरिशस आल ई बरिस जो साइट पर आरलंजा, उस साइट जब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होल तो ओकर 20 बरिस मनावल जाता। 2006 में ई साइट के लिस्टिंग हो रहल और आज ये 20 बरिस के संदर्भ में कौन कौन गतिविधि चलता आप्रवासी घाट पर, ये 20 बरिस के सफर कैसन रहल, ये सब विषय पर बातचीत करे खातिर आज हमने संगे एगो विशेष मेहमान हवन आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक ओकर डायरेक्टर श्री वेद प्रकाश बंधन, श्री विष्णु बंधन। विष्णु बंधन जी नमस्ते।
4: नमस्ते। नमस्ते किरण जी और सभी जो लोग हमको देख रहे हैं
3: और सुन रहे हैं
4: रेडियो और टीवी द्वारा, सभी को मेरा सजो नमस्कार।
3: और आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अवसर है आप्रवासी घाट, जिसके नींव पर हमारे देश का निर्माण हुआ। हमने के देश, हमने के उन्नति, हमने के जो डेवलपमेंट होल बा, तो वो हमने के पूर्वज लोग के ही बदौलत होल बा। और वो लोग के जो पहला कदम पड़ रहा, जो पहला चरण उनका पड़ा था मॉरिशस में, वो आप्रवासी घाट ही था। और आज आप इस संस्था, इस इंस्टीट्यूशन के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। इस संदर्भ में कई गतिविधियां चलाई जा रही होंगी, लेकिन सबसे पहले हमने के ये बतावा कि ये जो संस्था बा, ये आप्रवासी घाट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बा, एकर कौन लैपोताओं सा, कौन अहमियत था?
4: देखा, आप्रवासी घाट ये ऐसा कुछ संस्था है कि जैसे बोली जा सके कि रिकोनेट आता वेले मोन।
3: जी,
4: कैसे रिकोनेट आता वेले मोन, मतलब कि ये यूनेस्को द्वारा पूरा संसार में ऐसे ऐसे जो जगह है, जो जगह की महत्व जगह बा, यूनेस्को उन लोगों के लिस्टे करेला, ताकि दुनिया भर के लोगों को बताए के चाहे कि ये जगह का इम्पोर्टेंस का है। तो ऐसे जैसे कि आप देखेंगे अन्य देश में, भारत में भी ताजमहल है, फ्रांस में वो लाटू एफेल वगैरह है, ये सब लिस्टे है यूनेस्को द्वारा। तो हमारा देश मॉरिशस जो छोटा सा टापू है हिंद महासागर में, कि लेमोन ऐसे लोग खब खोज मापे तो
3: बिंदु है,
4: बिंदु है, नहीं कोई देखेगा कहाँ खोजवा, मानव माइक्रोस्कोप ले खोजवा तब जाकर मॉरिशस कहाँ है, ढेर के मालूम नहीं है। तो ऐसा एगो जगह मॉरिशस आज हो गल बा कि लेमोन ऐसे पूरा विश्व के लोग जाने चाहन से कि मॉरिशस देश जो है कैसे यहाँ पर पहले जो थवाइया गाजी जैसे बोलिया सा वो लोग यहाँ मॉरिशस में आल बा, एक ये एक ऐसा नहीं वो जगह बा कि लिमोन में पूरा विश्व में एक ही ऐसा संस्थान है जो कि जो बोलते हैं थवाइया गाजी आधार मॉरिश में उसका रिकॉग्निशन है।
3: मतलब कि अभी विष्णु बंधन जी बहुत सुंदर रूप से बतावत हवन कैसे आप्रवासी घाट आज एगो विश्व विरासत स्थल बनल बा। विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मतलब है एगो ऐसा साइट जेकर महत्व खाली आपके देश खातिर जरूरी नहीं है, ओकर जो महत्व है वो सार्वभौम यूनिवर्सल है। मतलब कि दुनिया भर के लोग सके इस साइट से जुड़े, एकर जो लैपोटॉस बा ओकर से हर एक के एगो संबंध रहेला। और अभी जब आप बोला था कि ये जो साइट बा मॉरिशस में, ऐसे तो इंडेंचर सिस्टम, शर्तबंद मजदूरी, थवा यहाँ

0: से ई जन सिस्टम रहल ई बरतानी सरकार अपन समय में उपनिवेशवाद कॉलोनी के समय में ओ मॉरिशस में ई एगो टेस्ट केस कर ले रहल एगो महाप्रयोग कर ले रहल कि मॉरिशस जैसे बोल रहा हिंद महासागर के बीचों बीच बा तसा कल जाए जितना देश बा हमनी के इर्द गिर्द हुआ से तवाया अंगाजिया ने और सबसे जस्ती कहाँ से आ रहा है।
1: अच्छा मॉरिशस में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ काम करने आए थे, मतलब बोलते थे चलो मॉरिशस पत्थर उतारने से गोल्ड सोना मिलेगा, सोना मिलेगा। तो इस तरह से हमारे जो भारतीय वासी थे उस समय का जो थे उनको यहाँ लाया गया था इस तरह के। चलो किसी को भी बोलेंगे चलो पत्थर उतारने से सोना मिलेगा, कौन व्यक्ति नहीं आना चाहेगा। तो इस तरह से चीटर कर उनको यहाँ पर लाया गया था। और उस समय मतलब 1834 से लेकर कम से कम 2 करोड़ लोग वहाँ से भारत छोड़े हुए थे। उन 2 करोड़ में से 500,000 मॉरिशस आए हुए थे
0: क्योंकि उस समय भारत की भी दूरदर्शा थी। हाँ, उसकी हालत ठीक नहीं थी,
1: बहुत ठीक नहीं था और वो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा मतलब कंट्रोल था
0: जी।
1: तो वो लोग जो कुछ चाहते थे वो करते थे भारत के वासी द्वारा। तो इसी कारण वहाँ से वो लोग भारत में वो गन्ने का खेती होता था तो वो उन लोगों को लाए थे यहाँ पर। हमारे पूर्वज जो आए थे यहाँ लेबरर्स के नाते यहाँ उसको लाया गया था ताकि वो गन्ने का खेती का मतलब सिंचाई किए, राइट, जैसे बोलते हैं
0: रोपाई
1: करने के लिए उसको लाया गया था। तो उस समय मॉरिशस से टापू ऐसा था कि वो उतना डेवलप नहीं हुआ था, चारों तरफ जंगल भी था, मतलब फॉरेस्ट चारों तरफ था, लेकिन उस तरफ ये तो जैसे बोलते हैं अभी कितना मशीन काम करते हैं, काटरपिलर वगैरह काम करते हैं, तो उस समय ये सब नहीं था। वो मजदूर जो आए थे
0: उनको ही करना पड़ता
1: था, हाथ से अपना काम करना पड़ता था और उन लोगों के पास बहुत माइनर ये जो टूल बोलते हैं जूची बोलते हैं था। तो इस अब जब आप सोचिएगा ऐसा देश में जब आए थे कितना कठिनाई से वे लोग ये काम करने आए थे यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 500,000 लोग मॉरिशस में आए हुए थे, इसी कारण आज ये मतलब ये मॉरिशस ऐसा एक देश था कि इसमें सबसे ज्यादा लोग मॉरिशस में बसे हुए थे, लोगों को लाया गया था यहाँ
0: काम करने के लिए। जो लिखा जोखा रिकॉर्ड है वो सिर्फ मॉरिशस में है।
1: मॉरिशस में मतलब कि वो जो बोलते हैं उसका आर्काइव जो है।
0: हाँ।
1: तो एक काम ब्रिटिश ने किया सही किया कि जितने लोग आए हैं उन लोगों का नाम और उनका नंबर यहाँ रजिस्टर किया गया है। जैसे कि अभी देखो मेरा पूर्वज जो आए थे, मेरा परदादा जो आए थे उसका भी नंबर है, उसका भी फोटो है, उसके द्वारा अभी हम जैसे बोलते अभी OCI कार्ड देते हैं, हम तो चौथा जेनरेशन है। तो हमारे मैं था, मेरा पिताजी, मेरा दादाजी, फिर मेरे परदादा वो आए थे भारत से, तो उसका एक नंबर है। कैसे हम बोलते हैं ना, हमको जानना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा पूर्वज कौन था, हम किस जगह से देश में, भारत से तो आई है हाँ, लेकिन किस जगह से, किस प्रांत से आए हुए थे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मतलब कि जाए खोज करेंगे तो मिलेगा, क्योंकि हर लोग जो है सबसे पहला, नहीं तो हम क्या करेंगे कि हम जैसे बोले डॉलिविड, हमको बता दें हमारा
0: अतीत क्या है, हमारा
1: अतीत क्या है, हम कहाँ, हमारा जर कहाँ से। तो ये अभी सब सुविधा है, मैं तो ये अभी आपका ये प्रोग्राम द्वारा बोलता हूँ कि जिन लोगों को अपना वो रूट्स ढूंढना है, पता करना है, ये बहुत आसान है। आप लोगों को अपना रूट्स जानना चाहिए कि आप कौन दिशा से भारत से या मॉरिशस में आए हुए थे।
0: और इसके लिए आपको सिविल स्टेटस ऑफिस जाना चाहिए, आप अपने पिताजी का, अगर दादाजी का नहीं है तो पिताजी का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको लेकर सिविल स्टेटस चाहिए और वहाँ से वो पता लगाते चलेंगे कि उनके पिताजी कौन थे। फिर जो पहले व्यक्ति यहाँ आए थे उनके बर्थ सर्टिफिकेट का एक नंबर होगा।
1: अच्छा मैं आप बोल रहे थे, मैं बता देता हूँ ताकि दर्शक लोगों को मालूम पड़े। हर एक व्यक्ति अगर आप जानना चाहते हो कि आपका परदादा कहाँ से आए थे तो ये सब सुविधाएं हैं। ऐसा है कि आपको लेटा सिविल जाना, सिविल स्टेटस ऑफिस जो बोलते हैं बीओ लेटा सिविल, वहाँ आप जाओगे। देखो मैं तो फोर्थ जेनरेशन का हूँ, तो मैं जब जाता हूँ तो मैं अगर मैं अपना जन्म पत्र निकालूंगा तो उसमें मेरा पिताजी का नाम होगा
0: जरूर।
1: तो मैं अपना पिताजी का जन्म पत्र निकालूंगा, उसका उसका मेरा दादा का नाम, उसका पिताजी का नाम होगा। जब मैं अपना दादा का जन्म पत्र निकालूंगा तो उसमें उसका पिता का नाम होगा। तो वो व्यक्ति है कि जो भारत चाहिए थे

0: काल हो गया कि उसका नाम, जैसे मेरा नाम है बंधन, तो उसका नाम है बंधन और एक नंबर है
1: जी।
0: तो ये मिलेगा अब वो जब आपका वो जन्म पर्ची मिल गया, चार पर जन्म पर्ची मिल गया, तो ये आप जन्म पर्ची लेकर आप जाएंगे आकाश जो के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का आकाश जो है वहाँ आप उसको देंगे, तो वहाँ लोग कम से कम
1: आईडी कार्ड के साथ
0: आईडी नेचुरली अपना आईडी कार्ड लेके जाएंगे, तो वो वहाँ का जो कार्य
1: ऑफिसर
0: है वो कम से कम एक हफ्ता लेंगे या 10 दिन तक लेंगे आपको पूरा से पूरा ढूंढ कर फोटो सब इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो वो आप लेकर एक सर्टिफिकेट मतलब दिया जाता है, तो उसमें लिखा जाता है कि आपका पूर्वज का नाम क्या था, उसका नंबर क्या था, किस गांव से था, किस जिला से था और किस प्रांत से था
1: और किस उम्र में वो यहाँ आए,
0: किस उम्र में वो यहाँ थे, किस जहाज में वो बैठकर आए हुए थे, या कौन तारीख को यहाँ मॉरिशस में आए हुए थे, जैसे आपने बताया उसका आयु कितना था, तो उसको यहाँ लाकर अप्रवासी घाट में उनको यहाँ उतारा गया था। इसी कारण हम बोलते हैं कि अप्रवासी घाट का वो जो महत्व, वो मतलब कि उसका लेपोतों जो है वो हमारे जड़ से जुड़ा हुआ है, और हर एक मॉरिशन, हर एक व्यक्ति जो भारतीय है, जिसके पूर्वज भारत से आए हुए हैं, ये आपका फर्ज बनता है कि आपको जानना चाहिए कि आपका पूर्वज कहाँ से आई है। ये सब सरकार द्वारा ये सब सुविधाएं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा
1: समय निकालना चाहिए, थोड़ा सा कष्ट निकालना चाहिए।
0: ओके, अगर आपको वो मिल गया सब पूरा सा इन्फॉर्मेशन, तो अब क्या करेंगे? देखो अभी भारत सरकार द्वारा हमको OCI कार्ड दिया जाता है, मतलब OCI मतलब वीजा फॉर लाइफ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो वीजा भारत सरकार द्वारा, खास करके वो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उसने कहा कि अभी 6 नई 7वां जेनरेशन जो है उनको भी अभी रिकॉग्नाइज कर दिया, क्योंकि उनको मालूम कि सिर्फ मॉरिशस में ऐसे लोग आए थे बड़े तालाब में, यहाँ पर रिकॉर्ड है, तो जो रिकॉर्ड रजिस्टर जो है उसके द्वारा ये एक काम मैं कहूँगा, कभी कभी ब्रिश बोलते हैं कि ये एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया कि हम भी, हमको अपना रुच ऐसे भी है, अन्य जो आए थे फ्रांसीसी के समय में तो कुछ इन्फॉर्मेशन
1: नहीं है,
0: उसको मालूम नहीं कहाँ से आए थे, कब आए थे, उसका पूर्वज किन देश से आए थे, लेकिन हम को ये कैसे बोलते हैं
1: सुविधा है
0: और कि हम अपना रूट्स,
1: सुविधा है और सौभाग्य है
0: कि हमको ये सब हम ढूंढ कर सकते हैं। और ये हमको, क्योंकि देखो हमको मानना चाहिए कि हम यहाँ है देश में, तो बच्चे लोग पूछेंगे भी पिताजी पापा कि हम कहाँ से हैं, हमारे दादा कहाँ से, लोग कहाँ से, हमारा प्रांत कहाँ से है। तो मैंने भी जब ये किया तो वो जब पेपर दिया तो OCI कार्ड मेरा सरकार द्वारा, तो अब कहीं भी जाते हैं, मतलब कि आप सिर्फ अपना टिकट लो, हवाई जहाज में बैठ कर चले जाओ, नहीं तो वीजा वो जो पासपोर्ट दिया गया ऐसा भारत सरकार द्वारा वो अब लेकर जाओ। अब अगर जाएंगे भारत में भी तो वहाँ भी आपका एक सेपरेट डेस्क होता है, इमिग्रेशन डेस्क होता है, और वो लिखते हो ऊपर OCI कार्ड होल्डर्स, मतलब आप जाओ तो सीधा
1: आसानी से
0: आप जाके निकल सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि आपके पास वो वीजा पासपोर्ट फॉर लाइफ भारत वाला होता है। अच्छा,
1: लेकिन ये मतलब हम रुके थे कहाँ तक आपको वो पेपर मिलता है MGI से, इसके बाद किस तरह से अब अप्लाई करना चाहिए OCI?
0: अच्छा, तो अगर आपको वो जो सर्टिफिकेट है जो मिल जाता है वो MGI के आकाश द्वारा, तो आप उसको लेकर या तो भारतीय हाई कमीशन OCI जो है मॉरिशस में, वो ऑनलाइन फॉर्म चलता है OCI एप्लीकेशन चलता है, और नहीं अगर आपका वो सुविधा नहीं है तो आप भारतीय उच्चायुक्त एबेन में जो है हाई कमीशन ऑफिस वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से भी मतलब आपको पूरा से पूरा
1: सहयोग
0: मिलेगा, तो आप वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। हाँ, वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का थोड़ा सा एक
1: वक्त लगता है
0: और एक रजिस्ट्रेशन फी भी होता है।
1: तो लगभग 12,000 होता है।
0: तो आप बहुत बहुत आसानी से ये सब इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है। अगर ये अब जब आप सोचिए, जब आपको मिल गया सब इन्फॉर्मेशन, आप एक OCI कार्ड होल्डर हो गया, तो जब आप जाएंगे उस जगह में, जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरा जो आए थे पूर्वज आए थे, मालूम है गांव कहाँ से आए, कौन सा जिला से आए, कौन सा प्रांत से आए, तो अगर वहाँ आप जाते हैं तो आपके हृदय में एक ऐसा कुछ होता है कि देखो मेरा पूर्वज उस

0: समय में किस गांव से निकल कर कैसे कैसे कितना कठिनाई से होकर
1: भावनाएं उमड़ आती हैं।
0: हाँ, तो अब देखते हैं वो सब, तो एक अलग से फीलिंग होता है। तो मैं ये कहूँगा कि जितने लोग हैं, अगर आपको कोई समस्या भी है तो आप अर्वासी घाट द्वारा आप मदद मांग सकते हैं, आपको हम

जरूर। इस वक्त आप सुन रहे हैं आज की चर्चा कार्यक्रम और हम बात कर रहे हैं विश्व विरासत सूची में आप्रवासी घाट के शामिल किए जाने की 20वीं सालगिरह। इस वर्ष 16 जुलाई को हम 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आप्रवासी घाट के अंकन की, और इस विषय पर, आप्रवासी घाट से जुड़े विषय पर हमसे बात कर रहे हैं आज आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के डायरेक्टर श्री विष्णु बंधन जी। थोड़ी ही देर में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: फजर के 9:30 हुआ था और ये वक्त आप सुनत हुआ आज की चर्चा कार्यक्रम। और आज हमने बात कर रहे थे जा आप्रवासी घाट पर, कहे कि ये बरिस हमने आप्रवासी घाट के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिस्टिंग करला 20 बरिस मनावा थे जा। तो विष्णु बंधन जी, आज हमने क्या आप बतावा कि ये बरिस जब वैचम आनी वे ऐसे 20वीं सालगिरह मनावल जाता है आप्रवासी घाट के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करला, तो इस संदर्भ में ऐसा कौन गतिविधि चलावा थी जा?
1: 20 साल से यूनेस्को द्वारा आप्रवासी घाट का रिकॉग्निशंस है, मतलब उसको लिस्टिंग इंस्क्रिप्शन किया गया था
0: जी।
1: कि जब उसको इंस्क्रिप्शन किया गया 20 साल पहले, उसका एक रीजन होता है
0: जरूर
1: क्यों ये कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक आप्रवासी घाट एक ऐसा साइट है जो पूरा विश्व भर में वो एक यूनिक है
0: जी। सिर्फ एक ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक ही इंडेंचर साइट बाकी है,
1: एक ही है। तो इसको हम यहाँ मॉरिशस में इसको मतलब हमको बताना चाहिए लोगों को इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मैंने आप पहले भी बताया। तो इस हम मना रहे 20वीं, हमारे 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 20 ans inscription de Apravasi Ghat auprès de UNESCO. तो इससे 20 साल जो है मना रहे हैं, इससे हमको वो मौका, कैसे बोलते हैं,
0: अवसर
1: जो है, प्ली इम्पोर्टेंट लोकेशन जैसे बोलते हैं कि है, कि हमने सोचा है कि मैं पहले

0: हमारे मिनिस्टर श्रीमान महेंद्र गुंजा को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जब ने हम इनसे बातचीत किया, उसको बताया कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसने हाजिर से कहो चलो हम मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं उनको हमको श्रद्धांजलि पेश करना है। तो किस ढंग से पेश करेंगे, तो मैंने सोचा कि इस बार 20 जो है वे सेंटेनियर पू वे चैमानिवेश है। अच्छा, ये तो जैसे जितना सेंटेनेरियन हमारे पास जिसका अभी 100 वर्ष हो गया है, उन लोगों तो काफ़ी नहीं ले जा सकते चारों तरफ, तो हमने कोलाबोरेशन लिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो है उसका सीनियर सिटीजन काउंसिल द्वारा, फिर उसका मेडिकल यूनिट जो है, क्योंकि वो लोग जैसे बोलते हैं कि उसको डोमिशरी विजिट करते हैं घर पर ना, तो डॉक्टर जो जाते हैं उनको मालूम है कौन कौन ऐसे लोग हैं सेंटेनेरियन जो है कि वो लोग बात कर सकते हैं, उसको हम बुला सकते हैं
1: जी, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं।
0: तो ऐसे लोग हैं और वो उसका वो अभी तक उसका मतलब कि जैसे बोलते फैकल्टी ऐसा है कि वो बोल सकते हैं, सुना सकते हैं, जितना बोलते हैं राकोटे कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ। देखो अभी हम बोलते हैं कि हमारे मिल ने वैनसैंक से लेके मिल दे मिल वैनसिस है
1: जी।
0: तो इसमें कितने से चीज़ हुआ है दुनिया भर में, लागे मोजल दुदू लागे मोजल हो गया है। तो ये लोग जो है ये हमारा चलता पुरता जो बोलते हैं आर्काइव्स है, ये जो लिविंग आर्काइव्स है। वैसे तो आर्काइव्स हम बोलते हैं तो वो कोना में कहीं भी दफ्तर में किताब द्वारा रखा गया था, तो ये चलता फूरता जो है लिविंग लेजेंड्स, तो हमको इसके पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। और इस तरह से हमके जितना लोग आए थे पूर्वज उसको श्रद्धांजलि हम पेश करना चाहते हैं। तो इस कारण हम इस साल वे चैमानी वैसे और वे सेंटेनेरियन हम कोशिश कर रहे हैं 20 सेंटेनेरियन जो है पूर्वज लोग के जुटाने के लिए आप्रवासी घाट में। इसके लिए हमारा जो सीके है क्लिनिक जो है उन लोगों ने ये जिम्मेदारी लिए है कि उन लोगों को अपने घर से लेकर सब सुविधाएं देंगे अपना वहाँ से
1: पहुँचाने के
0: पहुँचाने के लिए, और वहाँ से उनको रवाना करने के अपना घर। और वहाँ पर भी सीके द्वारा हमारा एक एम्बुलेंस स्टैंड बाय होगा, डॉक्टर भी लोग स्टैंड बाय होंगे, ताकि सब सुविधाएँ हम देंगे उन सेंटेनेरियंस को।
1: और ये कब चल रहा है?
0: ये चल रहा है 16 तारीख को 1 बजे अप्रवासी घाट में
1: जी।
0: एक फंक्शन हम कर रहे हैं जो कि मेन चीफ गेस्ट है हमारा मिनिस्टर श्रीमान महेंद्र गुंजा जी। तो जानते हो अभी हम देखते हैं ये सेंटेनेरियन, कोई लोग ऐसे बात करते हैं, मेरे एक है सेंटेनेरियन जो लाल माटी में है, मैंने जब उसको देखा तो मैंने सोचा कि ये बहुत से चीज़ हम ला सकते पा सकते उन लोगों से
1: डॉक्यूमेंट
0: कर सकती है। यूनेस्को ये बोलते हैं कि ओरल हिस्ट्री। देखो अभी ऐसी ऐसी जगह आपको मालूम होगा, दर्शकों लोगों को मालूम होगा, बहुत से ऐसे कौ सिक्रिय जो था अब नहीं है। तो उसके अभी हम जो जनरेशन अभी के लोग पीढ़ी जो है उसको कैसे मालूम हुआ कि क्या था यहाँ पे इस गांव में। तो ये लोग अभी तो जीवित है, तो वो लोग सुना सकते हैं हमको, बता सकते हैं हमको, बोल सकते हैं, हम उनको इंटरव्यू ले सकते हैं, ताकि उनको हम रखेंगे कैसे बोलते हैं एक आर्काइव्स, हिस्टोरिकल आर्काइव्स, मतलब ओरल हिस्ट्री द्वारा, ताकि वो लोग सुनाते हैं, वो लोग बोलेंगे, उसके हम सवाल पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे हमको किस तरह से उस समय मॉरिशस देश में क्या था, कैसे लोग जीते थे और कितने सी इमारत किस ढंग से वो जीते थे। कभी जो बोलते हैं हम कौशिक्रिय में तो एक कमरा में पूरा एक परिवार रहता था, और आप जब अभी अभी सोचिए आप एक परिवार एक कमरा में कैसे जी सकते थे उस समय, लेकिन वही सुविधा था उन लोगों ने किया। अभी हम ढूंढते हैं कि हमारा एक मकान हो, अपना परिवार हो, बच्चों को सब सुविधाएं दें, लेकिन उस समय ये नहीं था। तो इसी कारण हमने सोचा कि ये जो जो संस्थानों ने बताया जैसे सीनियर सिटीजन काउंसिल, ये मेडिकल यूनिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ये सीके वेलकिन जो सीके क्लिनिक द्वारा हमसे सब प्रबंध करते हैं, ताकि वो जो सेंटेनेरियन है, मैं मांग करूंगा कि जो सेंटेनेरियन है उसका परिवारों से मैं मांग करूंगा कि आप लाइए, ताकि ये एक हिस्टोरिकल रह जाएगा पूरा आते आते जनरेशन का, हम जो रखेंगे वीडियो।

0: जो उनका वो इंटरव्यू होगा, जितना कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा उनको द्वारा, हम रखेंगे और आगे चलकर ये को हम रेफरेंस कर सकते हैं।
1: विष्णुबंधन जी, जब आप कह रहे हैं कि उनका इंटरव्यू हम लेंगे और रखेंगे, तो एक बात आप नहीं बता रहे, वो ये कि MBC के साथ हमारा जो सहयोग चलता है उसके जरिए उनके इंटरव्यू को, जैसे कि विरासत प्रोग्राम में चलता आया है, हम MBC पर भी प्रस्तुत करेंगे। और MBC के डायरेक्टर जनरल के साथ आपकी बातचीत हो रही है इस सिलसिले में।
0: जैसे बोलते हैं ना, शेरी शेर गाटू, तो ये समय रखा कि MBC संस्थान को मैं रखा कि बाद में अलग से उसे बात कर। देखो, हमारा किरण जी तो आपको मालूम है, ये भी हमारे साथ काम करते हैं, अपना पाचीघाट के कर्मचारी है, इनको खुद मालूम है किस तरह के हम रिसर्च की तरह के काम वहाँ कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये अपना पाचीघाट कैसे हम उसको प्रकट करेंगे, कैसे उनको लाएंगे हमारे सोसाइटी में। तो MBC ऐसा एक संस्थान है कि उनके द्वारा हम ये पहुंचा सकते हैं। तो हमने मिला अपना ये डायरेक्टर जनरल जो है आपका सही गोदा सौची, उनसे मिले, उनको बताया इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो उन्हें देखा कि हाँ वो ठीक है। तो उन लोगों ने कहा कि चलो हम एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, और उसका लॉन्चिंग होगा 16 तारीख को अब्रवासी घाट में, कि हम हर एक सेंटेनेरियन जो होगा, मतलब उसके घर जाएंगे, उनका मकान जाएंगे, उनके परिवार के साथ में उनका इंटरव्यू लेंगे MBC द्वारा, और वो जो पिक्चर जो फिल्म होगा उसको हम रखेंगे आकाश में, ताकि आगे चलकर जो यंग जनरेशन होगा, आगे का पीढ़ी जो होगा, उन लोगों को लोग देखेंगे सुनेंगे, तो उसको मालूम पड़ेगा कि किस तरह का यहाँ मॉरिशस में लोग आए थे और काम किस कंडीशंस में वो काम कर रहे थे।
1: ज़रूर। तो अभी जिस तरह से विष्णुबंधन जी बता रहे हैं कि अगले 16 जुलाई को आप्रवासी घाट पर ठीक 1 बजे एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर ऐसे 100 साल जिन्होंने 100 साल तक जिनका जीवन जिया है सेंटेनेरियन, उनको आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि 20 वर्ष है तो 20 सेंटेनेरियंस को आमंत्रित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और फिर सेंटेनेरियंस के साथ एक ऐसा परियोजना, एक ऐसी परियोजना चलेगी जहां पर उनका इंटरव्यू होगा, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो यादगार है, मेमोरीज जिसे कहते हैं, जो कि इतिहास और रिसर्च की दुनिया में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है मेमोरीज। और हमारे पूर्वज उनकी जब हम बात कर रहे हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो एक लिविंग आर्काइव्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, पकवान कैसे बनाए जाते थे पहले, पहनावा कैसा था, उनकी जो भाषा है, जो भोजपुरी आज के हमारे दादा दादी बोलते हैं, हमारे बुज़ुर्ग बोलते हैं, हमको उनसे अभी तक सीखना है। तो इस दिशा में उनसे बातचीत करना, उनका जो ज्ञान है उसको रिकॉर्ड करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, ये आप्रवासी घाट के मैंडेट में शामिल है। इस तरह से आप्रवासी घाट कितने सारे डिसिप्लिन में रिसर्च कर रहा है, जैसे कि अभी आपने ओरल हिस्ट्री की बात की, फिर आर्काइवल रिसर्च है, फिर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च है। आप्रवासी घाट का जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है, उसका जो साइट है, उसका जब दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और आर्काइवल रिसर्च और ओरल हिस्ट्री, ये जो तीन डिसिप्लिन है, ये साथ साथ चलता है। और एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च भी आ जाता है। एंथ्रोपोलॉजी हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम जिए हैं इस जीवन को, हम जिए हैं अपने पूर्वजों के साथ।
0: देखो, जब आप बोलते हैं ये जो 100 साल के लोग हैं,
1: जी हाँ,
0: तो वो लोग ने ये जिया है, ये जीवन जी कर वो अभी तक यहाँ है। तो ये लोग क्या हमको उसका वो लेपोटांस उनको सम्मानित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए लोगों को जो है। मैं तो अभी खासकर उन परिवारों को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि वो लोग अभी तक अपने जो जो जो सेंटेनेरियन है उनको अपना सहयोग दे रहे हैं, उसको देख रहे हैं ठीक से, उसका डेली का मतलब जो रोज़ का जो है उनको भी रखे ठीक से। मैं आप सभी को बधाई दूंगा। और इसी कारण हमने सोचा कि हमारे आप्रवासी घाट जो है, आप्रवासी घाट बोर्ड जो है, हमारे चेयरमैन जो है, उसका मेंबर जो है चेयरमैन श्री रामदास जी, और जितना बोर्ड मेम्बर है सब, जब उन लोगों को हमने ये बातचीत किया कि ये करेंगे, तो बोर्ड ने बहुत खुशी से कहा कि चलो हम ये काम करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बात है कि अभी तक ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है। और ये कार्यक्रम जैसे बोलते हैं वन एंड ओनली अखाद

0: दुनिया में पूरा यूनेस्को द्वारा पहली बार ये कार्यक्रम होगा कि चलो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 20 सेंटेनियन को लाएंगे वहाँ पर, ये उसको उस दिन में इंटरव्यू नहीं होगा, उस दिन में हम लॉन्चिंग करेंगे ताकि हर हफ्ता या हर दो हफ्ता एक सेंटेनियन को इंटरव्यू लेंगे। या तो जैसे आपने कहा भगवान पर, पहनाव पर, किस तरह से वो जीते थे, मतलब वो जो सामाजिक था जब मिलते थे वहाँ, तो आपका समय में उन लोगों को वो कैसे बोलते दुआ नहीं था कि संगठन करने के लिए, मिलने के लिए, वो रात्रि में काम करने के बाद चुप चुप के वो अपना जो आज अपना संस्कृति रखे हुए हैं। तो इसी कारण हमारा ये फर्ज बनता है कि आपरावासी घाट द्वारा, कर्मचारी द्वारा, हमारे बोर्ड द्वारा, मिनिस्ट्री मंत्रालय द्वारा, कि हमको ये जब हम ये संस्थान चला रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, तो हमको चाहिए कि उन लोगों को ये रिस्पेक्ट दें, ये रिकॉग्निशंस दें, ताकि आप भी चलकर वो परिवार जो है उन लोगों को मालूम होगा कि चलो कम से कम जब मैं अभी प्रवासी घाट बोल रहा हूँ तो ये तो सरकार द्वारा ये सब कार्यक्रम चल रहा है, ताकि आगे चलकर ये रिकॉग्निशंस इसे बार रिकॉग्निशंस नहीं होगा।
1: जरूर। और आप प्रवासी घाट की जब बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टिंग में किसी भी साइट को शामिल करने के लिए एक आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू उसको निर्धारित करते हैं, और आप्रवासी घाट का जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, उसकी जो विशेषता है वह ये कि मॉरिशस में एक टेस्ट केस किया गया, एक ग्रेट एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको द ग्रेट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, कि यहाँ पर सबसे पहले एक बैच था शर्तबंद मजदूरों का, उनको यहाँ लाया गया और ये देखा गया, देखने की कोशिश की गई कि क्या ये इंडेंचर सिस्टम ये सफल होगा, ये चलेगा, इसको लागू कर सकते हैं, क्योंकि अब स्लेवरी मतलब दास प्रथा को अबोलिश किया जा रहा था, और जब दास प्रथा का उन्मूलन होता है तो फिर इनका जो काम था अब वो कौन करेगा। तो इंडेंचर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए मॉरिशस में एक टेस्ट केस, एक ग्रेट एक्सपेरिमेंट किया गया और यह बहुत ही सफल हुआ। इसके बाद सारे कॉलोनीज में, ब्रिटिश कॉलोनीज में इसको स्थापित किया गया, और यही कारण है कि आज आप्रवासी घाट एक विश्व विरासत स्थल, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस विषय पर हम अभी थोड़ी देर में और बात करेंगे। आप्रवासी घाट का एक बफर जोन होता है और 16 जुलाई के संदर्भ में एक कंसल्टेटिव कमेटी भी की जाएगी बफर जोन के जो स्टेक होल्डर्स, जो साझेदार हैं, और फिर हमारे आप्रवासी घाट के साथ कौन और ऐसे साइट जुड़े हुए हैं, इन सभी पर अभी हम थोड़े ही देर में बात करेंगे और हमारे सवालों का जवाब देंगे श्री विष्णु बंधन जी, जो कि आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के डायरेक्टर हैं।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सब कोई के एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत बा। आज की चर्चा कार्यक्रम में हमने बात कर रहे थे जहाँ प्रवासी घाट के अंकन के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ओकर 20वीं वर्षगांठ के और इस संदर्भ में कितने गतिविधि चलता, कितने परियोजना चल रहे आवता ओकर अंजाम देवल जाता। और हमने संगे हवन श्री विष्णु बंधन जी, आप प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक डायरेक्टर। तो विष्णु बंधन जी, अभी बोलत रह लीजा कि आप प्रवासी घाट जब एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गए तो ओकर एगो बफर जोन है। बफर जोन मतलब कि ओकर भीरी जितना भी इमारत बा, एक बार थोड़ा हमने के बोला कि कैसे बफर जोन के ओकर संचालन आप प्रवासी घाट करेला।
2: देखा, जब यूनेस्को हमने के आप प्रवासी घाट का लिस्टिंग का लग 20 साल पहले, तो उसका भी कुन रेगुलेशंस है
1: जी
2: कि हमको हमने के चाहिए बहुत बहुत स्ट्रिक्ट स्वीव करे के।
1: जी हाँ।
2: अभी देखा शहर के बाजार कैसे बा, आगे कैसे रहल, तो अभी के जनता नया पीढ़ी के जरूर हम सर नहीं जनजन सा
1: जरूर।
2: तो अब मान ओकरा खाजे करके एगो बड़ा इमारत बना जब सर, तो फिर आगे का पीढ़ी जो आएगा तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा। तब शायद एगो फोटो देखेंगे तो उसको मालूम है कि पोर्टिस का बाजार ऐसा था। इसी कारण वो जो बफर जोन है, जितना उसमें इमारत है कि उसका गाइडलाइंस है, वैसे बोलते हैं पॉलिसी प्लानिंग पॉलिसी गाइडलाइंस, कि उसके अलग से नहीं जा सकते हम फॉलो करते।

0: रन वो जो बफर जोन है जितना उसमें इमारत है कि उसका गाइडलाइंस है, वैसे बोलते हैं पॉलिसी प्लानिंग पॉलिसी गाइडलाइंस कि उसके अलग से नहीं जा सकते हैं। हम फॉलो करते हैं बफर जोन में बहुत से ऐसे जो बिल्डिंग्स है वो देखेंगे आप
1: पत्थर, तो
0: वो
1: का,
0: पत्थर
1: बना
0: का बनाया हुआ है, उसमें ये कंक्रीट का नहीं है, पत्थर का है। तो उस पत्थर के जब रखे हुए हैं तब ब्लॉक, जैसे अभी हम ब्लॉक चढ़ाते तो वह ब्लॉक नहीं है, उसमें लाशू इस्तेमाल किया गया था, चूना इस्तेमाल किया गया था उस समय। तो वो बोलते हैं कि इसको रखना चाहिए, वो जो जो उसका पत्थर का वो जो दीवार है उसको इसी तरह रखना चाहिए, आप चाहे तो कितनी मंजिल डाल सकते हो ताकि कोई भी जनता कोई भी नए पीढ़ी के लोग वहाँ आएंगे तो वो जब देखेंगे तो वो इमारत का वो जो फासाद बोल के उसका दिवांचे जो है तो उसको मालूम पड़ेगा हाँ मॉरिशस ऐसा था पहले, उसका जो बिल्डिंग था ऐसे थे।
1: जरूर।
0: अच्छा, अप्रवासी घाट अकेले उन्हें काम करता है
1: नहीं,
0: अप्रवासी घाट अन्य संस्थान से मिलकर साथ में काम करता है, जैसे कि मिश्वाची टॉप पोर्ट्रीस है, वो बफर जोन जो है उसका को जोन जो है,
1: नेशनल
0: हेरिटेज फंड जो है, और अन्य ऐसे जो संस्थान है उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं ताकि जो कुछ डेवलपर लाएंगे वो मतलब
1: एक नियम से
0: नियम द्वारा हो सकता है। तो इसी कारण हम बोलते हैं कि हमको वो पोर्ट्री जो है उसको रखना चाहिए जिस तरह का है,
1: जो ऐतिहासिक ऐतिहासिक
0: हाँ काशी हिस्टोरिक रखना चाहिए। तो आप किसी व्यक्ति को माना नहीं है कि आप वहाँ डेवलपर मत करो, लेकिन डेवलपर करने से मतलब होता है कि आप जो पहले का वो काशी जो पोर्ट्रीज का था वो पहले का इमारत जो था
1: उसका रूप वैसे ही
0: रूप और सही रखना चाहिए।
1: सिर्फ यही है। और फिर ये भी है कि अप्रवासी घाट जब एक विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जब वो टूरिस्ट वहाँ आते हैं तो वो ये भी देखना चाहते हैं कि ये जो शहर है वो कैसा है, और उनको लगना चाहिए कि एक ये एक ऐतिहासिक शहर है, एक हिस्टोरिकल शहर है जहाँ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और एक तालमेल होना चाहिए वहाँ की जो इमारतें हैं वहाँ की जो जगहें हैं और अप्रवासी घाट, इनको जब आप देखेंगे तो इनको अलग नज़र आना चाहिए। और इसी दिशा में अप्रवासी घाट सभी स्टेक होल्डरों सभी साझेदारों के साथ काम करता है, और हर वर्ष एक कंसल्टेटिव कमेटी भी चलती है जहां पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक लगाई जाती है, उनके जो प्रस्ताव हैं उनको सुना जाता है, और फिर किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं एक साथ मिलकर इस पर बातचीत होती है। और एक विश्व विरासत स्थल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह जनता को और सभी जो राष्ट्र हैं उनको जोड़ता है, और अप्रवासी घाट भी इसी दिशा में काम करता है। अभी श्री विष्णु बंधन जी ने बताया कि किस तरह से हम अपने बुजुर्गों को अपना सबसे प्रथम साझेदार मानते हैं, क्योंकि ये जो विश्व विरासत स्थल ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं ये उन्हीं का है, ये आप ही का है, इनका संचालन करने की जिम्मेदारी अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड को है, सरकार को है, लेकिन ये विरासत ये धरोहर ये आप लोगों का है, ये हमारे बुजुर्गों का है, और फिर हमारे स्टेक होल्डर्स उनके साथ हम काम करते हैं। और इस तरह से कई अन्य साइट हैं बंधन जी जो अप्रवासी घाट से जुड़ा हुआ है।
0: अच्छा, मैं उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 1901 में जब महात्मा गांधी मॉरिशस से होकर आए थे
1: जी,
0: से मगरनाथ डॉक्टर को भेजे थे
1: जी,
0: क्यों भेजे थे ये हमारे साथ उस हमारे पूर्वज जब आए गए थे उसका कंडीशंस ऑफ लाइफ जो था उसको बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए ताकि हर एक व्यक्ति को अपना वो जो उसका राइट्स होता है उसको मालूम हो। तो जब वो आए थे तो बोलते हैं जैसे कि हम इतिहास द्वारा कि वो जो गुजराती कुमेसों लोग था
1: ट्रेडर
0: था उस,
1: व्यापारी
0: जो व्यापारी था उस समय का, उन लोगों ने श्री गांधी को सपोर्ट किया, तो उन लोगों ने मिलकर तहर वो
1: तहर बाग
0: में उनको बुलाकर उनका उसका सम्मानित किया कि देखो आप ऐसा ही बड़ा वकील है, भारत से आ रही है, भारत सरकार द्वारा आ रही है मॉरिशस में, तो उसको सम्मानित किया गया। तो उस समय गांधी जी ने कहा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप
1: उनको शिक्षित करो, उनको पॉलिटिक्स की ओर बढ़ाओ,
0: पॉलिटिक्स में मिलाओ। तो मैं सोचा कि देखो ये संबंध जो है देखा, मैं आपको 1901 का संबंध बता रहा हूँ, इस पर भी हमको रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि उस समय क्यों उसको भेजा गया था, क्या हुआ था मॉरिशस में, और वो जो गुजराती ट्रेडर्स अभी तक है, आप देखेंगे शहर में कितना ट्रेडर, बड़े बड़े ट्रेडर लोग हैं, बहुत लोग हैं, मैं सोचता हूँ कि उन लोगों से मिल कर भी हमको काम करना चाहिए। और जब बोलते थे बफर जोन, जैसे आपने बताया,

0: बफर जोन में है जो इमारत हम रख रहे थे, एशिया हमारा और इसी साइट जो है,
1: साइट है
0: जिसे कि है फुलियार में है
1: जी।
0: ये फुलियार क्यों वो साइट रखा गया है, क्योंकि वहाँ पहले जो ग्रुप आए थे, लोग आए थे
1: 36
0: पहले जब आए थे, आए थे मिलविट खान घाट में आए थे, तो वहाँ से जब उन लोग अप्रवासी घाट में उतरे थे तो सीधा उन लोग वहाँ से फुलियार बालो ले जाया गया था, तो इसी कारण वो एक साइट है। फिर अभी देखेंगे ट्रियानो में जो ओल्ड ट्रियानो लिबरल्स क्वार्टर्स जो है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, बोरिस मॉरिसन वालों को मालूम नहीं है, तो हम सोच अभी जो 18 और 19 अप्रैल का था
1: इंटरनेशनल डे
0: ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, तो हमने खुला था उस दिन, तो अब धीरे धीरे वहाँ भी कुछ एक्टिविटीज रखेंगे ताकि मॉरिसन वालों को मालूम कि वो किया था। अब देखेंगे वहाँ भी जाकर, तो ऐसा एक चीज़ है कि बहुत लोगों को मालूम है, अब वहाँ जाएंगे तो आपका दिल गदगद हो जाता है कि किस तरह से वो उसको बताया वो इमारत अभी तक है। हम उसको
1: वो एक गांव था ढाका शुगर स्टेट,
0: तो उसमें रहते थे, तो उसका भी हम साथ में काम करते हैं। ये वेगरेंट डिपो है, जब मतलब कि पहले तो अगर आपको उस समय का जब ब्रिटिशर पुलिस वाले लोग आपको पकड़ लेता, आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह नहीं होता, तो आपको पकड़ कर वहाँ वेगरेंट डिपो में बंद किया जाता था, वो एक प्रिजन था वहाँ पर। तो ये साइट ये सब
1: हम, और फिर फ्लैट आइलैंड भी है।
0: फ्लैट आइलैंड को भी हम क्यों ये इम्पोर्टेंस देते हैं, जब हमारे पूर्वज आते थे शिप द्वारा, जहाज द्वारा, तो कहीं उस समय में स्मॉल पॉक्स या कोलेरा
1: महामारी
0: बीमारी होता था, तो ब्रिटिश लोग चाहते थे कि जो आयु है उनका स्वास्थ्य जो है ठीक लगना चाहिए, और जिसको जो बीमार था उसको नहीं उतारा जाता था, सीधा उनको फ्लैट आइलैंड में भेजा जाता
1: था
0: क्वारंटाइन, मतलब वो क्वारंटाइन था, लेकिन वो क्वारंटाइन नहीं था, कुछ सुविधाएं भी नहीं था, तो बाद में जाकर उन लोगों ने वो हॉस्पिटल ब्लॉक किया और अन्य चीज वहाँ लागू किया।
1: बस एक छोटी सी इमारत थी, खास सुविधा पानी वगैरह की तो बहुत कमी थी,
0: और ये शायद जितना दर्शक देख रहे आपको मैं ये बता देता हूँ कि उस समय भी फ्लैट आइलैंड में एक डिसैलिनेशन प्लांट रखा गया था उस समय का,
1: मतलब कि खारा पानी जो है सॉल्टी वाटर
0: उसको, क्योंकि वाटर रिजर्वायर कुछ नहीं था, तो वो सॉल्टी पानी
1: समुद्र का
0: पानी के फिल्टर करकर लोगों को वहाँ दिया जाता था
1: पीने के।
0: और जैसे मैंने बताया हमारा वो भादो में भी है साइट जो है, इस सब साइट को हमको रखना चाहिए ताकि अभी देखो भादो जाते हैं वहाँ पैदल जॉगिंग वगैरह करने, तो वो जो वातावरण है वहाँ पर जो जिस तरह का
1: एनवायरनमेंट
0: जो है, तो वहाँ पर लोग देखते हैं जलते हैं कि ये देखो ये जो है अभी उस समय का है, तो उसमें भी ज़्यादा ध्यान देते हैं और लोगों को मालूम होता है कि हमारा ये हिस्ट्री
1: जी। वहाँ पर चीनी मिल जो थी उसके रुइंस
0: अभी तक है,
1: तो इसी पर
0: हम रिसर्च करते हैं अप्रवासी घाट द्वार, हमारा जो रिसर्चर्स है जो कर्मचारी है काम करते हैं अप्रवासी घाट में, इनका ये मतलब रिसर्च करने का, और वो रिपोर्ट अपना देते हैं ताकि वो रिपोर्ट रखते हैं आर्काइव में हम रखते हैं ताकि आगे चलकर लोगों को
1: पता चले। जरूर।
0: और मैं अभी खासकर मेरे ख्याल से
1: समय हो रहा है
0: कि मैं फिर से ये जितना सेंटेनेरियन है मैं उनका परिवार को मैं ये
1: आमंत्रित
0: करता हूँ, और ये मांग करता हूँ कि ये एक दो दिन में हमारे दफ्तर के कर्मचारी के पास आएंगे, आपको कंसेंट फॉर्म देंगे, आप कंसेंट फॉर्म द्वारा आप अपने सेंटेनियन का लेकर आना अप्रवासी घाट में 16 तारीख को। ये एक पहली चीज़ ऐसा है कि पूरा दुनिया में यूनेस्को में पहली बार ये होगा, ये आपका परिवार का बदौलत होगा कि आप आए अपना सेंटेनियन को लेकर, और इस कार्यक्रम को चलो हम आगे कर उसको रखेंगे, अपने आकाश में रखेंगे, ताकि आपका वो जो नाम है आपका सेंटेनियन का नाम है
1: चलता रहे हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु बंधन जी,
0: आपको भी किरण जी बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि जो कुछ हमने बोला आज का, चलो देखते हैं कि वो मदद करेंगे लोगों को,
1: सबको पसंद आया और लाभ उठाएंगे। आप सभी सुनने और देखने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते एक अगली आज की चर्चा के अंतर्गत एक अगली विषय पर बातचीत की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: शाम के 4:04 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से। नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। प्लेटफॉर्म कुमा सांझीकाल के आह्वान पर इस समय राजधानी की सड़कों पर एक शांतिपूर्ण रैली निकाली जा रही है। ये रैली बेसिक रिटायरमेंट पेंशन में प्रस्तावित सुधार के विरोध में आयोजित की गई है। रैली आज दोपहर करीब 1 बजे सेंटर मारी रेन दे ला पी से शुरू हुई और कंपनी गार्डन यानी जार्डन दे ला कंपनी में जाकर समाप्त होगी। और उम्र के लोग श्रमिक संघों के साथ इस रैली में शामिल हुए हैं। वे वेलफेयर स्टेट की व्यवस्था को बनाए रखने की मांग कर रही है और साथ ही उनका कहना है कि किसी भी सुधार को लागू करने से पहले लोगों से व्यापक स्तर पर सलाह मशवरा किया जाना चाहिए। किसी की भी पेंशन बंद नहीं होगी। ये बात सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने कल पोर्टवी में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि स्टेट एज पेंशन हर नागरिक का अधिकार है। मंत्री ने यह भी साफ किया कि बजट 2026-2027 में प्रस्तावित मींस टेस्ट व्यवस्था को पूरी तरह वापस ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब मॉरिशस में नागरिक 60 वर्ष की उम्र से संशोधित पेंशन ले सकेंगे। विदेश में ब्रिटेन में तीसरी भीषण गर्मी के कारण कर्मचारी घर की उमस से बचने के लिए एयर कंडीशन दफ्तरों में लौट रहे हैं, जिससे दफ्तरों में उपस्थिति कोविड के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ब्रिटेन के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब पहले सेमीफाइनल का मुकाबला तय हो गया है। मंगलवार रात फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। ये मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। कल रात क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने कड़ी टक्कर के बाद बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया और मिकेल मेरिनो ने निर्णायक गोल करके लारोजा को प्रतियोगिता के अंतिम चार में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल दौर धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। फ्रांस और स्पेन के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद अंतिम चार में जगह बनाने के लिए 2 और टिकटों का फैसला शनिवार और रविवार की रात होगा। इस दौरान 2 बहुत ही रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा, जबकि अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड भी आमने सामने होंगे। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे आ दीजिए। नमस्कार।
2: You're listening to RM3.

इस समय मोशस में शाम के 4:12 हुए हैं। रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम इन गीत गाथा देश की। श्रोताओं, पिछले लगभग एक महीने से या तो उससे भी ज़्यादा 11 जून से हम वर्ल्ड कप 2026 के बुखार जी रहे हैं। ये वर्ल्ड कप जो जिसमें तीन देश मेजबान रहे, मेक्सिको, यूएसए और कनाडा, बात अलग है कि तीनों देश कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, लेकिन इन एक महीने के दिनों के दौरान हमने इन देशों के विभिन्न शहरों के नाम सुने और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम मॉरिशस के गांवों और शहरों के नाम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बात यह है कि मॉरिशस एक फ्रांसीसी कॉलोनी और एक अंग्रेज कॉलोनी रह चुकी हैं और इस तहत जितने भी गांव के नाम हैं, शहरों के नाम हैं, अधिकतर या तो फ्रेंच नाम या तो अंग्रेजी नाम रखते हैं। लेकिन सभी फ्रेंच और अंग्रेजी नामों के अलावा कुछ ऐसी जगह हैं या तो भोजपुरी या तो हिंदी या तो डच या तो पोर्चुगीज से आए हैं और एक नाम है जो अफ्रीकन ओरिजिन का है। सो आज हम अपने श्रोताओं से जानना चाहेंगे आप किस गांव के नाम हमें बताना चाहते हैं जो इन भाषाओं में है, या तो भोजपुरी या तो डच या तो पोर्चुगेज, यानी फ्रेंच और अंग्रेजी नामों को छोड़कर जो आप जानते हैं उनका जिक्र करने के लिए हमें फोन करें 402 80 70।

0: इतिगादा देश की रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आज हम अपने श्रोताओं से जानना चाहेंगे कि किन किन इलाकों में मॉरिशस में किन किन जगहों को या तो भोजपुरी नाम दिए गए हैं या तो पोर्चुगीज नाम दिए गए हैं या तो डच नाम दिए गए हैं क्योंकि अधिकतर जगहों के नाम या तो फ्रेंच में हैं या तो अंग्रेजी में हैं। चलिए हम मिलते हैं सूर्यदेव जी से। नमस्कार।
1: नमस्कार भाई संजय।
0: सूर्यदेव जी आप हमारे इस प्रोग्राम के रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं, आपका हम स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद।
0: सो आप बताएं कि आप किस गांव के बारे में बात करना चाहते हैं?
1: लाल माटी।
0: लाल माटी आप वहीं के रहने वाले हैं?
1: लाल माटी ही के रहने वाले हैं।
0: हाँ बहुत अच्छा। आप हमें बताएं कि उस जगह को लाल माटी क्यों बोलते हैं?
1: क्योंकि जब हम माटी ये कोड़ते थे ना,
0: हाँ
1: कोड़ते तब लाल माटी मिलता था।
0: अब भी है ना?
1: अब भी है, जब थोड़ा कोड़ोगे
0: हाँ
1: तो जगह जगह में है लाल माटी।
0: अच्छा
1: मिलेगा।
0: तो ये लाल मिट्टी तो मॉरिशस की अनेक जगहों में मिलती है,
1: लेकिन यहाँ जब माटी कोड़ोगे
0: कुछ ज्यादा ही लाल है।
1: मैं जहाँ रहता हूँ
0: हाँ
1: आधा माटी लाल है,
0: हाँ
1: आधा माटी काला है।
0: अच्छा तो लाल मिट्टी से लाल माची हो गया।
1: लाल मिट्टी से लाल माची हो गया।
0: So, सूर्यदेव जी आप वहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं?
1: मुझे भी तो 65 इयर्स हो गया।
0: आप वहीं पर जन्मे? आप वहीं पर जन्मे?
1: जन्म यहीं का है।
0: अच्छा सो चलते चलते लाल माची के हमारे बहुत से सुनने वाले जो हैं उनको हम सलाम करते हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं। सूर्यदेव जी
1: जी नमस्कार।
0: जय मॉरिशस।
1: जय मॉरिशस।
0: जय मॉरिशस।

सो सूर्यदेव जी ने हमें एक उदाहरण दे दिया, लाल माटी। ऐसे और नाम हैं जो भारत से आए हुए हैं, आप हमें फोन करके बताएं। ऑन कर संदेह क्या तो है सुसंजीस।

भारतीय नामों के अलावा याद रहे कि कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनका डच ओरिजिन है या तो जिनका पोर्चुगीज ओरिजिन है या तो अफ्रीकन ओरिजिन है। ऐसे नाम ढूंढ कर हमें फोन कर दीजिए 402 4070 पर।

0: 4:24 गीत गाथा देश की रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। उदाहरण के तौर पर चलिए हम आपको चंद संकेत चंद टिप्स देते हैं। एक रास्ता है जो मेट्रो के बगल पर से चलता है और जो जोड़ता है रोज हिल और बुबासा को। इस रास्ते का नाम एक डच नाम है। आप हमें फोन करके बताएं हम किस रास्ते की बात कर रहे हैं। उनका संदेह का तो वह सुसंजीस
1: RM3 Radio.

0: चले चलते चलते हम आपको ले चलते हैं रोज हिल, रोज हिल से लेकर एक रास्ता जो मेट्रो के बगल पर से गुजरता है और आपको पहुंचाता है बोबास है। उस रास्ते के साथ एक डच नाम जुड़ा हुआ है और वो डच नाम कौन सा है, चले हम इनको सुनते हैं। हेलो
1: हेलो, जय सियाराम भाई जी।
0: जय सियाराम माला जी।
1: जी
0: कैसी हैं माला जी?
1: ठीक हूँ भाई जी, आप कैसे हो?
0: हम ठीक हैं, राम जी की कृपा है। सो माला जी, आपके अनुसार हम किस रास्ते की बात कर रहे हैं? हम किस रास्ते की बात कर रहे
1: हैं?
0: वांडेमेश। आप वहाँ पर से गुजरी हैं?
1: जी हाँ गुजरी है, और जो मेट्रो जाती है तो सीधे जाती है, पर कहते हैं ना ये वांडेमेश है। इस तरह
0: एक स्टेशन है, वांडेमेश स्टेशन भी है।
1: जी हाँ
0: रोजिल स्टेशन और वांडेमेश स्टेशन है। आई एम नॉट श्योर रोजिल सेंट्रल
1: एक
0: स्टेशन है। हाँ
1: जी,
0: रोजिल सेंट्रल हम जानते हैं
1: जी, रोजिल सेंट्रल से आगे स्टेशन है।
0: यानी कि जब हम जा रहे हैं पोर्टविस की ओर तो
1: कासाबोन से जाएंगे तो बाद रोजिल के बाद आता है।
0: अच्छा ओके, आपको पता था कि ये वांडेमेश नाम डच है?
1: नहीं कभी नहीं। आपको सुना तो एहसास हुआ। हाँ
0: हाँ, वांडेमेश एक नाम है जो उस इलाके से आया है जहाँ पर डच और बेल्जियम एक रीजन है जिसको फ्लामो कहते हैं, फ्लामो। तो उस रीजन में ये नाम वहाँ पर प्रचलित है वांडेमेश, और उसी वांडेमेश को हम वहाँ से निकलकर यहाँ पर मुशस में रखा है। सो बहुत बहुत अच्छा आपने भाग लिया महाराज जी। आपको पता है कोई और नाम जो न फ्रेंच है और न अंग्रेजी है, एक और नाम जिसके बारे में आप बता सकते हैं?
1: जी हाँ, बाद में, अभी नहीं आ रही है।
0: अच्छा कोई बात नहीं
1: भाई जी, आज हमें कुछ सीखने को मिला हमारे ही देश में। धन्यवाद।
0: जय मॉरिशस।

मौ दैमेश के साथ साथ एक और नाम है, एक दूसरी जगह का नाम है जिसका ओरिजिन डच है। आप हमें फोन करके बताएं। 400 2 4 76।

0: क्योंकि हमारे श्रोता लाइन पर इंतजार कर रहे हैं, तो हम उनको इंतजार नहीं करवाते हैं, चलिए हम उनसे मिलते हैं। उमा जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: उमा जी, आप हमने सवाल किया कि वादेमेश के अलावा एक और जगह है मुशस में जो एक डच नेम रखता है, एक डच नेम रखती है, आप जानती हैं?
1: हाँ, फ्लैक।
0: फ्लैक। और आप कहाँ के रहने वाली हैं उमा जी?
1: मैं एक पायो के रहने वाली हूँ।
0: यानी कि फ्लैक के काफी नजदीक में।
1: बहुत नजदीक। हाँ।
0: उमा जी, आप बताएं कि फ्लैक नाम कैसे डच होता है, किस तरह से फ्लैक का अर्थ क्या है? अंग्रेजी में जो कहते हैं फ्लैट लैंड, वैसे ही डच में फ्लैक कहते हैं। टीके हो गया फ्लैक। और ऐसे ही एक और जगह है।

0: एक और जगह है मॉरीशस में, आपको पता है, जिसमें फ्लाक आता है,
1: जो कि
0: वेस्ट में, हाँ वेस्ट, हाँ वेस्ट में है
1: एक जगह,
0: हाँ जगह आदमियों के नजदीक में, नहीं सीसाइड रिजॉर्ट, फ्लिक ऑन फ्लैक दोनों जगहों में फ्लैक का नाम फ्लैटलैंड इसीलिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी। और एक वायु में कितने सालों से रहते हैं आप?
1: मेरी शादी पापा से यहाँ,
0: लेकिन बहुत अच्छी जगह है ना
1: जी। हाँ
0: हाँ, और वहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं,
1: जगह है हाँ।
0: वहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। सो उमा जी, आप ऐसे हमारे प्रोग्राम में भाग लेती रहें, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मॉरीशस,
1: जय मॉरीशस, नमस्कार।

4:40 आप सुन रहे हैं गीत गाथा देश की। चले हम ढूंढते हैं मॉरिशस में और जगहों के नाम जो नाम या तो रामचरितमानस में आते हैं या तो ऐसे ही भारत से संपर्क रखते हैं। आप हमें फोन करके बता सकते हैं 402-80-70।

0: में फ्रेंच ओरिजिन के हैं और कुछ जगहों के नाम अंग्रेज ओरिजिन के हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो भारतीय नामों से संपर्क रखते हैं। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो डच हैं और एक नाम जो है वो अफ्रीकन ओरिजिन का है और एक नाम जो है वो पोर्चुगीज ओरिजिन का है। अभी तक हमने इन दो नाम देख चुके हैं जो डच ओरिजिन के हैं। चलिए हम देखते हैं इंदिरा जी से। नमस्कार इंदिरा जी।
1: नमस्कार जी।
0: इंदिरा जी आप सैपोल के रहने वाली हैं?
1: जी हाँ।
0: तो आप आपके पास ऐसी कौन सी जगह का नाम है जो रामचरितमानस में आता है?
1: वो एक जगह है जो रिविया जुरांपा के पास में है, एक छोटी सी गांव है, मैंने वहाँ गई नहीं, लेकिन लगभग जब सड़क में अब जाते हैं तो लिखा हुआ है कि इस तरफ वो बहुत छोटी सी गांव है।
0: आपको यकीन है कि वो रिविया जुरांपा के पास में है या
1: लगभग उस तरफ है? मुझे पता है
0: चित्रकूट तो वाले दे प्रेत में पाया जाता है।
1: कोई बात नहीं।
0: अब हो सकता है कि आप भी सही हो कि वहाँ पर एक दूसरी जगह हो जो चित्रकूट नाम से जानी जाती हो, लेकिन जहाँ तक हमें याद है चित्रकूट तो वर्दीप्रत का एक हिस्सा है, लेकिन जिस जगह की बात कर रहे हैं आप रिवेजोंपा के नज़दीक में फुलियार जहाँ पर जो पहला कोंतेजों इंडेंचर लिबरल्स आए थे 1834 में और वहीं पर गए थे फुलियार। और अगर मेरी यादगाश ठीक है तो वहाँ पर एक दूसरी जगह है पंचवती भी। ये जगह भी आती है रामचरितमानस में और मुशिस में भी एक जगह का नाम रखा गया है पंचवती।
1: अच्छा।
0: इंदिरा जी बहुत बहुत धन्यवाद भाग लेने के लिए और लगे हाथ सैंपल से हमारे तमाम सुनने वालों को हम कहते हैं धन्यवाद और शुक्रिया रेडियो मनोरंजन सुनने के लिए। इंदिरा जी फिर से मिलेंगे।
1: ओके, जरूर।
0: जय मुशिस।

यकीनन एक ऐसा गाना जिनके शब्द जिनका भाव हमें इस मिट्टी से जोर देता है टेकन फ्रॉम द फिल्म केसरी। दिव्य सजनों, जितना खूबसूरत हमारा देश है उतना ही विस्तार इस देश का इतिहास है और उतने ही खूबसूरत इस देश के जगहों के नाम हैं। इसलिए हमारे देश के जगहों के नाम के पीछे जो इतिहास है उसके बारे में जानना बहुत ही अच्छा होगा सबों के लिए और खासकर नौजवानों के लिए। जगहों के नाम से एक तो हमारी संस्कृति के बारे में भी सीख पाएँ, हमारे इतिहास के बारे में सीख पाएंगे और साथ ही साथ उनकी जो जिज्ञासा है उसको भी सुदृढ़ कर सकते हैं। सो आज हमने बात की लाल माची के बारे में, रू डी जिलांदे के बारे में, फ्लक वेश के बारे में, चित्रकूट, पंचवती, फुलियार, इसके अलावा और भी अनेक ऐसे नाम हैं जो ना ही फ्रांसीसी हैं और ना ही अंग्रेजी हैं, जिनके बारे में हम आने वाले दिनों में आपसे ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए जितने भी लोगों ने भाग लिया आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलेंगे एक ऐसा ही प्रोग्राम लेकर अगले शनिवार की शाम को। इससे पहले गुरुवार की शाम को हम मिलेंगे प्रोग्राम राम रसधारा में। हमारी ओर से धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन, जय मॉरिशस, जय सियाराम।

0: पुराने नगमे।
1: नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे एक्टर की। जी बच 5:05 हो चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ पूनम, और ये वन आवर आज उस कलाकार के नाम हम करने जा रहे हैं जिनकी शख्सियत जितनी बड़ी थी दिल उससे भी ज़्यादा बड़ा था। एक शानदार अभिनेता, एक बेहतरीन इंसान और करोड़ों दिलों की पसंद। जी हम बात करने जा रहे हैं सुनील दत्त साहब की, और आज चलाएंगे हम उन्हीं के पसंद के गाने और उन्हीं के ऊपर फरमाए गए ये गाने जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और सभी के दिलों में आज तक राज करते हैं। तो आइए उनके सुनहरे सफ़र और सदाबहार गीतों के साथ शाम को आज यादगार बनाते हैं। इन्जॉय कीजिएगा अपने ये गाने। ये सच में बहुत ही प्यारा गाना आने वाला है हमराज मूवी से, महेंद्र कपूर की आवाज़ में नीले गगन के तले।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:09 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं आज उस एक्टर की जिसका नाम है सुनील दत्त। चाहे वो आज हमारे साथ दुनिया में नहीं है बट फिर भी हम बात तो कर रहे हैं उनकी वो कलाकारी की जो उन्होंने दिखाई। सुनील दत्त जी का जन्म हुआ था 6 जून 1929 को, यानी कि 6 जून 1929 को झेलम जिले के खुर्दी गांव में हुआ था, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान साइड में आता है। और बंटवारे के बाद उनका परिवार जो था भारत आ गया और यहीं से उनके सपनों का नया सफ़र शुरू हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले सुनील दत्त साहब रेडियो सिलोन में अनाउंसर थे, जैसे कि हम हैं। वहीं से उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंची और फिर 1955 में फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। ये था सुनील दत्त साहब का ऐसा चित्रण जो कि बहुत ही कहते हैं ना अनोखे सफ़र को दिखाता है। अब आप हमारे साथ जुड़े रहिए RM3 के साथ और आप सुनते रहेंगे ऐसे कलाकार की बातें जो कि बहुत रेयरली सुनने को मिलती हैं। एंजॉय कीजिए आपका ये गाना।
2: RM3 रेडियो।

0: पुराने नगमे।
1: 5:16 हो चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं पुराने नगमे। पुराने नगमों में हम ऐसे चुनिंदा ऐसे हीरे लेकर आते हैं जिनकी बातें बहुत ही अनोखी थी। तो इसमें इस समय हम बात करने जा रहे हैं सुनील दत्त साहब की। सुनील दत्त साहब बहुत ही शर्मीले थे, कहते हैं कि वो उनको इतना डांस नहीं आता था और शायद मुझे लगता है पुराने ज़माने में बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी झिझक और थोड़ी सी शर्म होती थी और वो इतना ज़्यादा डांस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते थे, पर जो उनकी अदाएं होती थी और जो उनकी बातें होती थी, जिस तरीके से वो रिएक्ट करते थे, बहुत ही चुनिंदा था। सुनील दत्त साहब का जो अभिनय था बहुत सादा सा था, थोड़ा सा कभी कभी गंभीर हो जाते थे और बस हमेशा जो भी करते थे दिल से करते थे। वो ज़ोर ज़ोर से नहीं, अपनी आँखों और अपने भावों से ही अपना अभिनय करते थे। तो कहते हैं कि उन्होंने जब उनको जो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली वो तो मदर इंडिया से मिली उनको, बट उनके उनकी जो मूवीज़ रही साधना, सुजाता, मिलन, पड़ोसन, वक्त, हमराज और रेशमा शेरा जैसी फिल्में जहाँ पर उन्होंने गुंडे का भी रोल किया, एक्टर का भी रोल किया, एक सादे से गाँव वाला एक जैसा लड़का छोरा होता है वैसा भी रोल किया, पर वो हर रोल में इतने अच्छे फिट होते थे कि कहते थे उस जमाने में हर कोई चाहता था कि वो

0: सिर्फ और सिर्फ सुनील दत्त साहब जैसे ही बने। तो कहते हैं ना कि साहब लगाना इतना आसान नहीं होता। हम कई एक्टर्स की बात करते हैं तो उनके साथ हम उनका सिर्फ नाम लेते हैं, बट कुछ लोगों के पीछे साहब लगाना अच्छा लगता है, तो उनमें से है सुनील दत्त साहब। चलिए ये वाला गाना जो बहुत ही प्यारा है पड़ोसन मूवी से, इंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: RM3 Radio.

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ

0: पुराने नगमे।
1: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश जी की आवाज़ में सावन का महीना। क्या गाने थे और क्या बात हो रही है आज उस एक्टर की जिसको सभी पसंद करते हैं। जी हम बात कर रहे हैं सुनील दत्त साहब की, जिन्होंने बहुत सारी को एक्ट्रेस में, जैसे कि फीमेल एक्ट्रेसेस थी उनके साथ काम किया, नरगिस, विजयंती माला, साधना, नूतन, माला सिन्हा, आशा पारेख, मीना कुमारी जी और वहीदा रहमान जैसी बेहतरीन अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। वहीं अगर मेल एक्ट्रेस की बात करें तो उन्होंने किसी को पीछे नहीं छोड़ा। वहीं उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाते हुए वो चल रहे थे जहां पर उन्होंने काम किया, राज कपूर साहब के साथ राजेंद्र कुमार, राजकुमार, अशोक कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार जैसे कई बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने यादगार फिल्में की। पर क्या करते, एक दिन तो उनको प्यार होना ही था और एक दिन बात आई किसकी, हम बात करेंगे आगे। ये गाना उसी मूवी से, मदर इंडिया से लिया गया है। सुनिए, एंजॉय कीजिए ये गाना।
2: RM3 रेडियो।

0: पुराने नगमे।
1: 5:32 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़ चुके हैं अपने ही प्रोग्राम पुराने नगमों के साथ और हम बात कर रहे हैं सुनील दत्त साहब की। और ये गाना जो आपने अभी सुना दुनिया में हम आए हैं मदर इंडिया का था और ये मूवी इतनी सुपरहिट हुई थी उस ज़माने में, कहते हैं कि हर एक इंसान का दिल ऐसा हो गया था कि शायद ऐसी ही दुनिया सबके सामने होती है और ऐसे ही जीना पड़ता है। बहुत ही प्यारा गाना था, जबकि आप ये सोचिए कि इसमें जो गाना गाया गया था वो लता मंगेशकर जी ने गाया था, उषा मंगेशकर जी ने गाया था और मीना मंगेशकर यानी कि तीनों बहनों ने गाया था और ये फरमाया गया था सुनील दत्त साहब पर भी और राजेंद्र कुमार पर भी। तो चलिए बात करते हैं उनकी, आगे बढ़ाते हैं उनकी ज़िंदगी की लाइन को कि क्या हुआ उनके साथ। तो चलिए, एक इंसिडेंट है मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा सीन चल रहा था जहाँ पे शूटिंग सेट पर आग लग गई और नरगिस जी उस आग में फंस गई। तब सुनील दत्त साहब ने अपनी जान पर बिना परवाह किए बस कहा कि मुझे नरगिस को बचाना है और वो आग से सुरक्षित बाहर निकाल लाए, किसको? नरगिस जी को। और कहते हैं कि वहीं से उन दोनों का रिश्ता शुरू हुआ। नरगिस जी को भी बहुत एहसास हुआ कि ये इंसान मुझे कितना प्यार करता है, इसने अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की परवाह नहीं करी, क्योंकि ये भी एक्टर है, ये भी जल सकते थे, इनका चेहरा ख़राब हो सकता था, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, नरगिस को बचाना है। और आप सोचिए उस समय नरगिस जी जो प्यार करती थी वो राज कपूर साहब को करती थी, पर उन्होंने डिसीजन लिया नहीं। 1958 में उन्होंने शादी की बॉलीवुड के सुपर

0: हिट जोड़ी गई बनी और ये सुपरहिट ऐसे स्टार थी, मतलब दुनिया उनके पीछे थी, हर लड़की चाहती थी कि सुनील दत्त साहब से उनकी शादी हो, पर कहा नरगिस जी ने कहा नहीं नहीं मुझे ही शादी करनी है और मैं हर चीज़ के लिए हर चीज़ मतलब अपनाना चाहती हूँ। उनके तीन बच्चे हुए, पहले हुए संजय दत्त साहब, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। कहते हैं कि नम्रता दत्त तो उनकी पत्नी है, पर उनके दो जो बच्चे हैं उनके जो जो नम्रता प्रिया दत्त हैं वो तो चली गई पॉलिटिक्स में और संजय दत्त साहब बने वो भी एक एक्टर।
1: RM3 रेडियो।

0: घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला,
1: एक चतुर नार।

0: पुराने नगमे।
1: 5:41 हो चुके हैं और ये जो गाना था, क्या गाना था, किशोर कुमार मन्ना डे और महमूद साहब ने इसे गाया और देखिए उसके साथ में कितनी मस्ती थी। तो ऐसी मस्ती के साथ में तो कहते हैं सुनील दत्त साहब चाहे किशोर दा ये अपनी करते रहते थे, पर उसके साथ साथ कभी कभी कोई ऐसे मास्टरपीस हमारे पास आ जाते हैं उसकी भी हम बात करते हैं। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं पाकिज़ा की। पाकिज़ा मूवी जो कि 1972 में रिलीज़ हुई थी। कहते हैं कि एक बार कमाल अमरोही साहब जो इस मूवी के डायरेक्टर थे यानी कि मीना कुमारी जी के पति, उन्होंने ये मूवी दिखाई और कहा 10 साल हो गए इस मूवी को बनाते हुए और ये डिब्बे में पड़ी हुई है, मतलब मैं इसको कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो जब उन्होंने कहा कि चलो हमें दिखा दिए एटलीस्ट ये मूवी है क्या, और नरगिस ने और सुनील दत्त साहब ने दोनों ने बैठ के ये मूवी को देखा और जब देखा तो कहा कि ये मूवी एक मास्टरपीस बनेगी, आपको इसे कंप्लीट करना चाहिए। उन्होंने फिर से मीना कुमारी जी से बात की और कहा प्लीज़ इस दुनिया में ये ज़रूर मूवी बना के जाइए क्योंकि ये मूवी ऐसी रहेगी कि दुनिया इसको याद करेगी। तो बस मीना कुमारी जी ने भी हामी भरी और कहा ठीक है मैं रेडी हूँ, और कमाल अमरोही साहब ने भी पैरिस से अरेंज किए और मूवी को रेडी किया और ये मूवी बनी पाकिज़ा, जो कि रिलीज़ हुई 1972 में। पर मीना कुमारी जी इस मूवी को देख नहीं पाई, पर गाने ये मूवी कहते हैं वर्ल्ड में इसको ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे कहते हैं ना आकाश में एक चांद, तो ये गाना उसी मूवी का है। इंजॉय कीजिए बिकॉज़ सुनील दत्त साहब और नरगिस की वजह से ये तो मूवी हम सबको मिली। इंजॉय कीजिए ये गाना।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:47 हो चुके हैं दोस्तों, और हम बात कर रहे हैं सुनील दत्त साहब की। सुनील दत्त साहब को कई सम्मान मिले, पूरे वर्ल्ड से उनको सम्मान मिलते थे। कहते हैं उनकी एक्टिंग को हर कोई पसंद करता था, चाहे किसी भी देश में कोई भी उस ज़माने में इंसान होता था, वो कहता था हमें सुनील दत्त साहब को देखना है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी इतनी ग्रेसफुल थी, क्या बताऊँ। तो चलिए भाई, उनको मिले, पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। चाहे सुनील दत्त साहब ने कई एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, बट जिनके साथ भी काम किया हमेशा दिल से किया, और उसके बाद वो बने एक समाज सेवी, और बाद में बने सांसद। और कई लोगों तो कहते हैं कि वो पता नहीं एक्टर बने कैसे, क्योंकि उनको डांस तो नहीं आता था, पर उनकी जो ऑरा था, जो उनकी बात करने का स्टाइल था, हर कोई कहता था कि ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं और सॉफ्ट दिल के इंसान थे। तो चलिए भाई, हम बात करें सुनील दत्त साहब की। पर 25 मई 2005 को सुनील दत्त साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके निभाए किरदार, उनकी सादगी और उनके गीत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इंजॉय कीजिए ये गाना। शायद मुझे लगता है कि जिस जिसने इंसान ने अपनी पलकें झुकाई

0: होंगी उस इंसान को ये गाना ज़रूर याद आएगा। तो देखिए ये गाना सच में इतना अच्छा लगता है कि आज की न्यू जनरेशन भी इस गाने को सच में दिल से चाहती है। सुनिए इसे।
1: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:54 हो चुके हैं और हम बात कर रहे थे सुनील दत्त साहब की, उनके सुनहरे सफर और उनके सदाबहार गीतों के साथ आज का ये खूबसूरत साथ यहीं तक। उनकी सादगी, उनका अभिनय और उनकी इंसानियत हमेशा याद रखी जाएगी। मैं थी आपके साथ पूनम, इजाजत बिल्कुल नहीं लेने वाली क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे रात के 9 बजे तक, यानी कि इसके बाद होंगे विस्तार से समाचार, उसके बाद नई सोच और लास्ट होगा हमारा दिलों की आवाज। तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा, इंजॉय कीजिए अपने गाने।
2: RM3 Radio.

0: शाम के 6 बजे है। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। कुछ बदलावों के बाद भले ही 7 साल की उम्र पर यूनिवर्सल पेंशन फिर से शुरू होने की घोषणा की गई है, इसके बावजूद श्रमिक संघों ने अपना आंदोलन जारी रखा। इस सिलसिले में आज पौड़ी में एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मिशनों ने भाग लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की। मॉरिशस में डेमोग्राफी यानी आबादी के स्तर पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। मॉरिशन लोग ज़्यादा लंबी आयु तक जीवित रहते हैं, लेकिन बर्थ रेट घट रहा है। इस बदलाव का असर श्रम मंदी, पब्लिक फाइनेंस और आर्थिक विकास पर पहले से पड़ रहा है, और विशेषज्ञों का मानना है कि सभी विकास नीतियों के लिए आबादी से जुड़े रुझानों को ध्यान में रखना आवश्यक है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार यौन दुराचार के हर 3 पीड़ितों में से लगभग 2 की उम्र 16 साल से कम की है। ये आंकड़े याद दिलाते हैं कि सबसे कम उम्र के बच्चे ही मुख्य रूप से इसका शिकार होते हैं, और इसलिए सभी का सतर्क रहना आवश्यक है। विदेश में जोरदार चक्रवाती तूफान बावी की कल तड़के सुबह दक्षिण पूर्वी चीन पर प्रहार करने का अनुमान है। वहां ऑरेंज अलर्ट और दूसरे दर्जे की चेतावनी जारी की गई है, और 9,00,000 से ज्यादा लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और अब समाचार विस्तार से। कुछ बदलावों के बाद भले ही 7 साल की उम्र पर यूनिवर्सल पेंशन फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है, इसके बावजूद श्रमिक संघों ने अपना आंदोलन जारी रखा। इस सिलसिले में आज मारीगन दे ला पे सामाजिक केंद्र से कंपनी गार्डन यानी जार्डन दे ला कंपनी तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मॉरिशनों ने भाग लिया। लोगों ने अपनी चिंताएं जाहिर की और उन सुधारों का विरोध दोहराया जिन्हें वे मौजूदा सामाजिक सुविधाओं के लिए नुकसानदेह मानते हैं। ज़रा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: आवाजें ऊंची हुई, राजधानी की सड़कों पर नारे गूंजे, हाथों में पोस्टर और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग, किसी भी रूप में पेंशन सुधार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कई श्रमिक संघों द्वारा इस शांतिपूर्ण मार्च का आयोजन किया गया।
2: Le démantèlement de pensions de la vieillesse définitivement amène à une mobilisation en général dans le pays.
3: Toujours une amende floue, une amende question qui peut poser. Beaucoup de gens ont un petit peu confusion entre pension et NPPF. Ils demandent que la pension reste universelle, que l'État, pas tous l'État-providence, et que tout le monde bien qui nous finit acquis n'est pas rassé depuis nous l'armée.

0: रैली में बड़ी संख्या में बुजुर्ग शामिल हुए अपना समर्थन देने के लिए।
1: Moi, un sentiment obligé venu aujourd'hui. Je peux pas reconnaître valeur le peuple mauricien. Et Nadjimoun actuellement, pas précis joindre les deux bouts. Nous, le peuple mauricien, nous pas mérite ça.
2: Actuellement, il a annoncé que justement, je retourne pension à 60 ans et que je peux faire un réajustement. Qui est au sentiment de
3: ça? Je ne sais pas. L'India, depuis le mot, l'île noire, je suis blanc.
4: Sa politique pension, la partie de ça d'habitude, si vous avez fait ça, elle le demande national élargi. Et là, dis-moi, tu vous comprends. Et vous pensez que le gouvernement, vous allez revoir tout ce système pour mettre sa pension là, dans le débat consensuel pour la population.
0: वहीं कई ऐसे लोग सवालों के साथ आए जो बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं।
5: मैं पुगाए 56 ans là, mon fini mettement doute, moi pas connais qui peut réserve moi. Qu'il a venu pour une an, nous pouvons zénès, nous pouvons l'autre, oui. Et nous avons des parents, nous avons tout fait travail, puis faire sacrifice pour nos enfants. Ce n'est pas le moment, quand il y a 60 ans, il y a qui va le rassurer. Vous êtes retourné, nous pensons normal.
0: Ce virod, matre ek din ka nahi, balki bhavishya ka bhi hai. Pradarshan mein shamil kai yuvaon ka manna hai ki ye sudhar aane wali peedhiyon ko bhi prabhavit karegi.
6: Je suis ici pour combattre pour notre propre droit et ainsi pour les droits des vieilles personnes aussi.
7: God, nous système de pension comme il était et même à plus loin des 55 ans et au marais contre une tâche bonne comme ça.
0: ये नागरिक अपनी असहमति जताने और अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरे। उनका संदेश साफ है, एक सामाजिक अधिकार की रक्षा करना, उन फैसलों के प्रति अपनी चिंताओं को सामने लाना जो उनके भविष्य को प्रभावित करते हैं। जब बैनर समेट दिए जाएंगे, नारे शांत हो जाएंगे, तब भी एक तस्वीर बनी रहेगी, एक साथ खड़े उन मॉरिशनों की तस्वीर जिन्होंने ये याद दिलाया कि लोकतंत्र केवल संस्थाओं से नहीं बल्कि नागरिकों की आवाज से भी बुलंद होता है।
8: समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने कल एक प्रेस सम्मेलन के दौरान नई पेंशन प्रणाली पर स्पष्टीकरण दिए। उन्होंने खासतौर पर दोहराया कि मर्शनों के पास 60 साल की उम्र से पेंशन लेने का विकल्प बना रहेगा, हालांकि मिलने वाली रकम कम होगी और उसका हिसाब एक एक्चुअरियल मेकानिज्म के आधार पर किया जाएगा।
9: समाज सुरक्षा मंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि 60 वर्ष की आयु से मिलने वाली संशोधित पेंशन सभी मॉरिशनों के लिए उपलब्ध होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मंत्रियों और जूनियर मिनिस्टर कुगन पगापेन तथा धनेश्वर दामरी की मौजूदगी में अशोक सुभो ने नई पेंशन व्यवस्था की रूपरेखा पर जानकारियां दी। कुगन पगापेन ने विस्तार से बताया कि ये सुधार कैसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और उन सभी लोगों पर लागू होगी जो 60 वर्ष की आयु से अपना पेंशन लेना चाहेंगे।
10: Ça principe de transition là, il y a encore là. Mais qu'il a ajouté maintenant dans le SAP, c'est que cette personne qui sur l'anniversaire à 60 ans le 1er janvier 2027, il pas nécessairement besoin attendre le 1er janvier 2029 pour être capable d'être éligible au SAP. Le premier jour à l'âge de 60 ans, il a le droit de décider s'il y a envie qu'il y pour touche ce SAP. Bien sûr, vu qu'il décide pour prendre deux ans en avance, ce qui était prévu, aujourd'hui de 15 555, il peut gagner un SAP de 13 688 roupies. Qu'on assume un taux d'inflation de 3,5%, une compensation de 3,5% annuelle chaque année, nous trouvons que cette personne-là, à janvier 2027, à l'âge de 60 ans, nous estimons que ce SAP qu'il y peut gagner, c'est de 14 167 roupies. L'année ensuite, parce que pour la compensation par rapport au coût de la vie, 14 167 pour passe à 14 663. Quand il pourrait en 62 ans, c'est 15 176. Quand il pourrait en 63 ans, c'est 15 707. Quand il pourrait en 64 ans, 16 257. Et quand il gagne 65 ans, il pourrait gagner à la fois la compensation par rapport au coût de la vie, mais aussi ça qui déjà prévoit dans la loi par rapport à CSG, 1 000 roupies additionnelles. Et là, il

0: pour gagner 17 826. Donc, nous avons trouvé que juste sur une période de 5 ans, il commence le 14 167, il termine le 17 826. Donc, sa personne-là, quand il gagne sa pension-là, il n'est pas pour fixer à vie, comme certains peuvent dire, il est pour rester sa chiffre-là. Et aussi, chaque année, quand il a un threshold, 65 ans, 75 ans, 90 ans, 100 ans, mais une augmentation qui est prévue, qui est prévue sur le BRP pour n'importe qui pensionné, il peut aussi bénéficier de cela.
1: साथ ही समाज सुरक्षा मंत्रालय जल्द ही आम जनता के लिए एक ऑनलाइन कैलकुलेटर भी उपलब्ध कराएगा। इसकी मदद से लोग आवश्यक जानकारी भरकर अपनी अनुमानित पेंशन की राशि आसानी से जान सकेंगी।
2: मॉरिशस में डेमोग्राफी यानी आबादी के स्तर पर बड़े बदलाव हो रही है। मॉरिशन लोग ज्यादा लंबी आयु तक जीवित रहते हैं, लेकिन बर्थ रेट यानी जन्म दर घट रही है। इस बदलाव का असर श्रम मंदी, पब्लिक फाइनेंस और आर्थिक विकास पर पहले से पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सभी विकास नीतियों के लिए आबादी से जुड़े रुझानों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जरा जानकारी आस्था गोविंद चितामन के साथ।
1: मॉरिशस की जनसंख्या धीरे धीरे बदल रही है। जन्म दर में लगातार गिरावट, लोगों की बढ़ती आयु और बदलती जीवन शैली के कारण देश की आबादी की संरचना बदल रही है। डॉक्टर क्रिस वालाइडो ने बताया, आमतौर पर किसी देश की आबादी को संतुलित बनाए रखने और उसके लगातार बने रहने के लिए हर 100 महिलाओं पर लगभग 210 बच्चों का जन्म होना चाहिए, लेकिन मॉरिशस में ये संख्या केवल करीब 140 है। हर साल हमारी आबादी लगभग 1000 से 3000 तक कम हो रही है और ये रुझान आगे भी जारी रहने की संभावना है। मेरा मानना है कि अगले 30 से 40 वर्षों में मॉरिशस की आबादी करीब 2 लाख तक कम हो सकती है। इस बदलाव का पहला असर रोजगार के सेक्टर पर पड़ेगा। कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या लगातार घटने की आशंका है। इसका मतलब ये भी है कि टैक्स देने वाले लोगों की संख्या कम होगी, जबकि पेंशन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सेक्टरों पर खर्च बढ़ता रहेगा। 15 से 64 वर्ष की उम्र वाले कामकाजी लोगों की संख्या 2022 से लगातार घट रही है और अगर इसकी भरपाई के लिए कदम नहीं उठाए गए तो ये रुझान आगे भी जारी रहेगा। जैसे जैसे काम करने वाले मॉरिशनों की संख्या कम होगी और पेंशन पाने वालों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे कामकाजी लोगों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ेगा।
3: Évidemment, vous allez avoir la chose qui va peser sur cette personne qui doit payer la taxe va augmenter.
1: विशेषज्ञों का कहना है कि अब विकास से जुड़े हर फैसले में जनसंख्या के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखना होगा। चाहे बात आवास की हो, बुनियादी ढांचे की हो या कुशल प्रशिक्षण की, हर योजना को बदलती आबादी के अनुसार तैयार करना होगा।
3: Un plan de développement doit intégrer la variable démographique. Si on l'avait fait depuis
1: जनसंख्या के रुझानों को विकास योजनाओं का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। अगर आजादी के समय से ही ऐसा किया गया होता तो आज की कई चुनौतियों का पहले से अनुमान लगाया जा सकता था। तभी हम ये भी बेहतर समझ सकते हैं कि पेंशन की उम्र को हमेशा पहले जैसा रखना क्यों संभव नहीं है और क्यों 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी आर्थिक गतिविधियों से जुड़े रहने की जरूरत होगी। इसे ही हम सिल्वर इकोनॉमी कहते हैं। जनसंख्या से जुड़े बदलावों को सिर्फ समाज सुरक्षा या पेंशन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हर सेक्टर और हर सरकारी नीति में इसे ध्यान में रखना होगा। आने वाले वर्षों में बढ़ती बुजुर्ग आबादी मॉरिशस के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। यदि आज से ही जनसंख्या के बदलते रुझानों को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाए तो भविष्य की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा।
2: विश्व आबादी दिवस के संदर्भ में ही मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने इस हफ्ते पोर्टली मिमोजन नामक प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग की। यह सुविधा किशोरों और युवाओं के लिए स्थापित की गई है, जिसके जरिए उन्हें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां और जरूरी समर्थन प्रदान किया जाएगा। और मॉरिशस में बच्चों के साथ यौन हिंसा और यौन शोषण एक चिंताजनक वास्तविकता बनी हुई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार

0: गिरफ्तार हर तीन पीड़ितों में से लगभग दो की उम्र 16 साल से कम की है। ये आंकड़े याद दिलाते हैं कि सबसे कम उम्र के बच्चे ही मुख्य रूप से इसका शिकार होती है और इसलिए सभी को सतर्क रहना जरूरी है। 2025 की चीनी की फसल के लिए सिंडिकेट प्राइस यानी खेतीहरों और कारखानों के मालिकों को चीनी के लिए दी जाने वाली कीमत 24,095 रुपये प्रति टन तय की गई है। मर्चेंट शक्कर के व्यापार के जिम्मेदार शुगर सिंडिकेट के अनुसार इस गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी का ज्यादा उत्पादन माना जा रहा है। याचना मिश्रा को सुनते हैं।
1: मॉरिशस शुगर सिंडिकेट ने शुक्रवार को 2025 के लिए चीनी के दाम पर जानकारी दी। एमएसएस प्रति टन शक्कर के लिए खेतीहरों को 24,000 रुपये प्रदान करेगा। 2023 में रिकॉर्ड 30,954 रुपये की तुलना में ये भारी गिरावट दर्शाती है।
2: Les deux, trois dernières années, malheureusement, on a eu un surplus de production qui a mis la pression sur les prix.
1: दुर्भाग्य से पिछले दो तीन साल पैदावार ज्यादा थी, दामों को लेकर दबाव रहा। 2025 में 60% स्पेशल शुगर की पैदावार हुई जिनका दाम ज्यादा है, इससे दामों में गिरावट का असर थोड़ा कम हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूदा परिस्थितियों के बावजूद सरकार प्रति टन चीनी पर 35,000 रुपए की आय की गारंटी दे रही है उनके लिए जो 60 टन तक की चीनी का उत्पादन करते हैं। इस राशि में बैगस और मोलास का दाम भी शामिल है। 2025 की फसल के लिए इन दोनों को जोड़ा जाए तो दाम 29,600 रुपए तक पहुंचता है। सरकार ने 60,000 टन से कम शक्कर की पैदावार करने वाले खेतीहरों के लिए 35,000 रुपए की गारंटी दी, यानी टॉपअप सरकार की ओर से होगा। मॉरिशस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल फेडरेशन का कहना है कि मौजूदा बाजार परिस्थितियों का सामना करने के लिए सरकार का समर्थन बहुत जरूरी है। 6,500 किसान इस संगठन से जुड़े हैं जो देश के कुल चीनी उत्पादन में लगभग 20% का योगदान देते हैं।
3: Signifier seulement le 24 000 aussi, nous pas capable couvrir le frais qui le business est à loss, hein?
1: 24,000 रुपए के साथ नुकसान ही होगा। बगस, मुलास और सरकार की मदद से खेतीहर अपनी खेती बरकरार रख पाएंगे और अच्छी कटनी भी कर पाएंगे। शुगर सिंडिकेट के अनुसार यूरोप में कुछ चीनी कारखानों के बंद होने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण अगले एक वर्ष के भीतर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है।
0: डिप्रेशन यानी तनाव, चिंता और मानसिक थकान जैसी समस्याएं आज दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। मॉरिशस में भी इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों ने एक साझा पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय रहते सहायता उपलब्ध कराना और इस विषय पर खुलकर बात करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। विदेश में जोरदार चक्रवाती तूफान बावी की कल तड़के सुबह दक्षिण पूर्वी चीन पर प्रहार करने का अनुमान है। वहां ऑरेंज अलर्ट और दूसरे दर्जे की चेतावनी जारी की गई है। 9,00,000 से ज़्यादा लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों में पहुंचाया गया है। और तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण पर भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। इस दौरे के अंतर्गत यूरेनियम के आयात को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कायम समझौता रीन्यू किया गया। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब पहले सेमीफाइनल का मुकाबला तय हो गया है। मंगलवार रात फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने की उम्मीद है। कल रात क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने कड़ी टक्कर के बाद बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। मिकेल मेरिनो ने निर्णायक गोल करके ला रोजा को प्रतियोगिता के अंतिम चार में पहुँचने में अहम भूमिका निभाई। ज़्यादा जानकारी अरविंद बिसेसर के साथ।
4: And Spain take the lead late on. Mikel Merino climbing off the bench once.
5: लगातार दूसरी बार के लिए मिकेल मेरिनो अपनी टीम को आकर जितवाता है और स्पेन पहुंचती है वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में। देखा जाए तो मैच में लाहौर का पल्ला भारी था, लेकिन सही

तालमेल नहीं बैठ रहा था। फिर फर्स्ट हाफ में ही स्पेन का खाता खोलता है फाबियन रुइज। पर फर्स्ट हाफ समाप्त होने से कुछ ही मिनट पहले स्पेन इस वर्ल्ड कप में अपना पहला गोल कंसीड करता है। रिकॉर्ड 649 मिनट तक रह जाता है गोलकीपर उनाई साइमन के लिए, मतलब स्पेन पर गोल स्कोर करने वाली

0: चिबोकू को चोट लगती है, आगे नहीं खेल पाता। उसके स्थान पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर सेन लामेंस को भेजा जाता है। आते ही गड़बड़ राइस शॉट को नहीं रोक पाता। मिकेल मेरिनो पोर्टुगल की तरह यहां पर भी मौके को हाथ से नहीं जाने देता। कठिन रही ये जीत, पर क्वालिफिकेशन जेब में। स्पेन का सामना अब फ्रांस से होगा मंगलवार 14 जुलाई को। दो चट्टान आमने सामने, एमबीसी टीवी पर इस मैच का सीधा प्रसारण होगा।
1: और वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल दौर धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। फ्रांस और स्पेन के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद अंतिम चार में जगह बनाने के लिए दो और टिकटों का फैसला आज शनिवार और रविवार को की रात होगा। इस दौरान दो बहुत ही रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा, जबकि अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड भी आमने सामने होंगे। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं। पूर्व की ओर पाए जा रहे सक्रिय बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं, खासकर आज रात से। और पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर। कल दिन के दौरान भी कुछ वर्षा हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। इसलिए दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर कल सुबह के समय। कल सूर्योदय सुबह 7:15 बजे होगा।

0: इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Avenue Belle Bamboumi, चौहत्तर साल के 74 years old के श्री बासुदेव नीला, श्री बासुदेव नीला जो रमेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल दिन के एक बजे उनके घर एवेन्यू बेल बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। मिसुनेट रोड रिविया डिस एंगिमी 73 साल की 73 years old की श्रीमती मारी क्लारिस जीनेट बेल, श्रीमती मारी क्लारिस जीनेट बेल पैदाशी नाम अमाजिस, पैदाशी नाम अमाजिस और जो मारी क्लारिस नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थ कल दिन के 11 बजे उनके घर मिसुनेट रोड रिविया डिस एंगिमी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। Royal Road Circonstance Saint-Pierre-Mi, Royal Road Circonstance Saint-Pierre-Mi, Ikiasi Sal Ke, 81 years old Ke, Shri Devindas Venkama, Shri Devindas Venkama, Jo Das Naam Se Zyada Jane Jate The, Ki Mrityu Ho Gayi, Unki Arthi, Kal Din Ke 10 Baje, Unki Beti, Shrimati Preeti, Jogana Ke Ghar, Royal Road Circonstance, श्रीमती प्रीति जुगाना के घर रॉयल रोड सर्कमस्टांस सेंट-पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिशमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। स्कूल लेन पॉइंट पीमामी 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रितु माला गोरीबा, श्रीमती रितु माला गोरीबा

पापा जो मीला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनके अर्थी पैदाश नाम सुकुना और जो मीला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनके अर्थी कल दिन के ग्यारह बजे उनके घर स्कूल इन पर तपीमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसा लिन पौतवी की शमशान भूमि ले जाएगी क्रिमिशन टुमरो एट 11 AM। सोशल वेलफेयर सेंटर रोड गुडलैंड्स में 59 साल के श्री धीरज बागीरथी जो विकास नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनके अर्थी कल दिन के दो बजे उनके बेटे श्री विवेक बागीरथी के घर सोशल वेलफेयर सेंटर रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाएगी क्रिमिशन टुमरो एट 2 PM। स्कूलेन मोसलमान सेंट एंड्रे में स्कूलेन मोसलमान सेंट एंड्रे में 93 साल की 93 years old की श्रीमती नोमावती बीना जो नानी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनके अर्थी कल दिन के ग्यारह बजे उनके बेटे श्री हमीद चंद लक्ष्मण के घर स्कूल लेन मोसलमान सेंट एंड्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोसलमान सेंट एंड्रे की शमशान भूमि ले जाएगी क्रिमिशन टुमरो एट 11 AM। एवेन्यू स्टैनली कैथोबोन में 82 साल की 82 years old की श्रीमती कौसिलिया मंदिल रामबरत श्रीमती कौसिलिया मंदिल रामबरत जो अनसुया नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी सोमवार 13 जुलाई को शाम के चार बजे उनकी बेटी श्रीमती शानीस मंदिल के घर एवेन्यू स्थानीय कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाएगी फ्यूनरल ऑन मंडे 13 जुलाई एट 4 PM। मोनसेन्योर लीन ओकुले क्यूपिप में 94 साल के 94 years old के श्री डॉक्टर हेमलाल बंजन जो डॉक्टर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके घर मोनसेन्योर लीन ओकुले क्यूपिप से उठाकर सबसे पहले प्रार्थना सभा के लिए क्यूपिप के सेंट क्लेमों गिरजाघर ले जाई जाएगी और बाद में अंतिम संस्कार के लिए थ्रोमा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमरो एट 1 PM। सीजियम मिल फोरेस्ट साइट क्यूपिप में 93 साल के 93 years old के श्री मनीला जीवता जो तोमान नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के ढाई बजे उनके घर सीजियम मिल फोरेस्ट साइट क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सीजियम मिल फोरेस्ट साइट की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमरो एट 2:30 PM। रिशमा रोड सेंट डी फ्लैग में 63 साल की 63 years old की श्रीमती तारामती बेंगी रोटी पैदाइशी नाम जावरी और जो फोनो नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के ग्यारह बजे उनकी बेटी श्रीमती मनीषा बिजमोहन के घर रिशमा रोड सेंट डी फ्लैग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंतिया की शमशान भूमि ले जाएगी क्रिमिशन टुमरो एट 11 AM। गनू रोड रिविया जुपर्स में 84 साल की 84 years old की श्रीमती सुमित्रा गनू पैदाइशी नाम भोजावन और जो मामा विनय नाम से ज़्यादा जानी जाती थी मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री विनय गनू के घर गनू रोड रिविया जुपर्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंहाबू रिविया जुपर्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमरो एट 1 PM। एवेन्यू सीटन बासन रोड कैथोबोन में 79 साल की 79 years old की श्रीमती वसंती कुमारी अनट पैदाइशी नाम बुधन की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन उनकी अर्थी वैसे आज

0: उठा ली गई है आज दिन के ढाई बजे। पोतीराम लेन विच्या मिल ट्रियोले में, पोतीराम लेन विच्या मिल ट्रियोले में 74 साल की 74 इयर्स ओल्ड की कुमारी अस्वंती नूरतन, कुमारी अस्वंती नूरतन की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके घर पोतीराम लेन विच्या मिल ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस ट्रियोले की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Yo, hello, testing, 1, 2.
3: Yeah. कभी सोचा है?
4: NBC Radio के स्टूडियो से live और direct.
3: Listeners से बात करना कैसा लगता होगा?
4: Most popular Bollywood hits play करना.
3: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को entertain करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
4: MBC Radio presents One Day RJ.
3: Open to all Mauritians. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
4: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
3: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
4: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC Radio व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
3: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
4: MBC Radio presents One Day RJ. MBC Radio पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
3: और आपका चांस,
4: डोंट मिस इट।
5: नहीं सो, नहीं सो, नहीं सो, नहीं सो, नहीं सो।

0: नमस्ते दोस्तों, 6:36 हो चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक होंगे। आप सुन रहे हैं आपका अपना ही शो नई सोच और मैं हूं आपके साथ पूनम। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूं। बताइए ज़रा, अगर हम नई सोच हम प्रोग्राम चला रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए कि उसके अंदर एक नई सोच बने। किसी की सोच कई बार ऐसी होती है कि अलग सी होती है, बट हम चाहते हैं कि आपकी वो सोच हो जैसे सब सोचते हैं, एक जैसी। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हम कभी सच बोलना चाहते हैं या कभी हम सच सुनना चाहते हैं, अगर हमें कोई सच बता देता है तो क्या हम उस बात को पॉजिटिव लेते हैं या तुरंत बुरा मान जाते हैं? सोचिए ज़रा, कई बार सच कड़वा हो सकता है लेकिन वही सच हमें बेहतर इंसान भी बनाता है। तो चलिए दोस्तों, आज इसी थोड़ी सी दिल से जुड़े वाली बातें करेंगे। और अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो कर सकते हैं 5250600 पर।
1: RM3 Radio.

0: नई सोच 6:42
1: हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं नई सोच के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। दोस्तों कभी आपने नोटिस किया है जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन वही इंसान अगर हमारी छोटी सी गलती बता दे तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत नाराज हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? शायद इसलिए क्योंकि हमने सच सुनने की आदत ही नहीं बनाई। तो क्या हमें आदत बनानी चाहिए? जी बिल्कुल बनानी चाहिए। कभी कभी हमें बहुत साल गुजर जाते हैं, हमारी एक उम्र हो जाती है, तब भी हम वो चाहते नहीं कि कोई हमारी गलती बताए। और अगर आपकी कोई गलती बताता है तो आप समझिए कि वो इंसान आपके लिए एक करिश्मा ही बन के आया होगा, क्योंकि अगर वो गलती आपको कोई बताएगा ही नहीं तो आप कैसे बदलेंगे। आप भी बताइए, हर कोई वो जो हमें अच्छी लगे तो क्या वो उस बात हमेशा सही होती है, और हर वो बात जो सुनकर हमें बुरा लगे क्या वो हमेशा गलत होती है? नहीं ना, कभी कभी वही बातें हमें छुपती हैं और वही बातें हमें बदलने का मौका देती हैं। इंजॉय कीजिए ये गाना आप सबके लिए।
2: RM3 Radio

तो दोस्तों आप जुड़े हुए हैं अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ और मैं आपके साथ हूं पूनम और बिल्कुल साथ निभा रही हूं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसे ही मस्त से ड्राइव करते रहें, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और घर पे हैं और हमें सुन रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है आपका साथ। आपके चाहे मैसेजेस आएँ चाहे आपके फ़ोन आए, हमें अच्छा लगता है। इसके बाद जब हम दिलों की आवाज़ प्रोग्राम करेंगे तो आपके मैसेजेस भी पढ़ेंगे और कॉल्स भी लेंगे। पर अभी फ़िलहाल ये नई सोच छोटा सा ही प्रोग्राम होता है 30 मिनट्स का, तो हम सोचते हैं कि चलो आपसे थोड़ी दो चार बातें ही कर लें। तो चलिए, हम बात कर रहे थे नई सोच में कि क्या सच सुनना जो है बड़ा आसान होता है किसी के लिए या बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर कोई इंसान प्यार और सम्मान से आपको आपकी कमी बता रहा है तो ज़रा सोचिए, क्या वो आपकी आलोचना कर रहा है या कि वो आपकी परवाह कर रहा है। आपको हमेशा उसके हाव भाव, उसके चेहरा देखते रहना चाहिए कि क्या वो इंसान आपकी आपको एहसास हो ही जाता है कि कोई आपकी खिल्ली उड़ा रहा है या आपको बदतमीज़ी से बात कर रहा है या आपको कैसे बात कर रहा है। पर अगर आपको लगता है कि वो आपकी किसी भी तरीके से आपकी परवाह कर रहा है और आपको समझा रहा है, जैसे कि माता पिता होते हैं वो कई बार समझाते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते। माता पिता कहते हैं इसके साथ नहीं जाना, ये गलत नहीं करना, पर बच्चे सोचते हैं नहीं नहीं ये तो हमारा हक है, हम जाएंगे, हम मस्ती करेंगे, हम इनसे मिलेंगे। बट माँ बाप को एक्सपीरियंस होता है, कई बार हो सकता है कि माँ बाप भी गलत सोच लें, उन्हें इतनी चीज़ें नहीं पता होती, थोड़ा सा डर होता है। तो बस अपने माँ बाप अगर आपको कहते हैं

थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज़ जब वो आपकी मान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को या बड़ों को, किसी ना किसी को उनका सच सुनना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। बस हम इतने ही कहना चाहते हैं कि सच को गुस्से से नहीं, समझदारी से सुनना चाहिए, और बस अपने रिएक्शन अपने तक रखें और बढ़ते रहना चाहिए। उस चीज़ को जब जिस इंसान ने आपको कहा कि ये तेरे में कमी है, वो एक पेपर पे लिखना चाहिए, उसको 10 बार देखना चाहिए, भले उससे उस समय कुछ मत बोले, पर देखते रहो कि क्या इसने जो बात बोली, हो सकता है उस पल आपको वो लगे कि उस बुरी बात है, बट हो सकता है 6 महीने बाद, साल के बाद, हो सकता है 5-10 साल के बाद आपको रियलाइज़ हो कि उस इंसान ने जो बात की थी सच में मेरी वो कमी थी, और हो सकता है कि वो कमी आप ठीक कर ले। तो क्या, जैसे कि दवाई होती है, दवाई मिलते ही इंसान ठीक हो जाता है, तो ऐसे दोस्त और हमारे परिवार वाले वो कमी निकालते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। RM3 Radio.

0: 6:55 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और ये शाम जो है बहुत ही प्यारी जा रही है। इसके बाद आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़ प्रोग्राम, और नई सोच के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ जो बातें हैं बस एक ऐसी ही छोटी हल्की फुल्की सी हम करते हैं आपके साथ। बस उम्मीद करते हैं कि आप जो हम बात कर रहे हैं आपको अच्छी लगे। अगर आपको लगे कि अच्छी है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5250600 पे, और उसके बाद दिलों की आवाज़ प्रोग्राम के लिए भी आप हमारे साथ इसी नंबर के साथ जुड़े रहेंगे 5250600 के साथ। तो चलिए हम बात कर रहे थे नई सोच की। सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम उसे सही सोच के साथ स्वीकार करें तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो अगली बार जब कोई आपको सच बताए तो ज़रा रुकिएगा और सोचिएगा। इसी सोच के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, क्योंकि ये जो नई सोच है ये सिर्फ सोच की है बात, इस पर कोई एक्शन नहीं लेना होता, उसको बहुत धीरे से एक्शन लेना होता है। क्योंकि अगर आपने इसको सिर्फ सोच लिया तो कहते हैं कि आपने वो काम कर दिया। तो इन्जॉय कीजिए आपके गाने और आपकी नाइट को। ये गाना बहुत ही प्यारा है जुबिन नौटियाल की आवाज़ में, तो सुनते हैं ये वाला गाना।
1: RM3 Radio.

0: टाइम चेक शाम के 7 बज रहे हैं।
1: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
4: की आवाज़

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, की आवाज, की आवाज।
1: नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 7:08 हो गए भैया। मौसम जो मॉरिशस का मौसम हो रखा है ना, सचमुच इतना ठंडा हो रखा है। और मैं तो कहती हूँ, चाहे गर्माहट बनाए रखने के लिए अगर आपको कॉफ़ी दिख रही हो तो बस पी लीजिए, चाय दिख रही हो तो पी लीजिए, गर्म गर्म सूप बना सकते हैं तो वो भी बना लीजिए। पर हम आपको कहते हैं कि गीतों का जो आनंद है ना, उसके साथ में बहुत बढ़िया लगता है। ये जो प्यारे से पुराने गाने होते हैं ना, जो कि कहते हैं ना, पता नहीं कितनी सदियों पहले बने, पर आज भी इन्होंने हमारे दिलों पर जो है ना राज कर रखा है। ये जो राज है ना, ये ऐसे ही नहीं बनता, इनकी आवाज़ में, इनके ढोल में, इनके नगाड़ों में, और ये जो डायलॉग्स और कह सकते हैं कि इनके जो लिरिक्स होते थे ना, बहुत ही बढ़िया होते थे। तो क्या बोलें, सिंगर्स की तो बात ही अलग होती थी, बट एक्टर्स भी अपना पूरा 100% देते थे। मैं तो कहती हूँ 100% क्या होगा, 1000% देते थे। तभी तो कहते ना, चार चार पाँच पाँच छः छः दस दस साल में एक मूवी बनती थी। तो इन्जॉय कीजिए उनके गाने, और आप आ गए हैं, हमें

0: आ गई हूँ। अगर आपके यहाँ पर भी कोई किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, तो बस हमारे को बताना बिल्कुल मत भूलिए। 5250-6200 पर इंजॉय कीजिए अपने गाने। हम लेंगे आपके सभी के फ़ोन कॉल्स भी लेंगे और मैसेजेस भी लेंगे, पर आपको ये बोलेंगे कि पहले गानों का आनंद लीजिए। अगर आपने गानों को सुन लिया, मस्त हो गए और एक बार डोल गए, तो बस फिर आपका ये जो शाम का मेरा प्रोग्राम है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो चलिए भाई इंजॉय करते हैं ये गाना, ये बहुत ही अच्छा है, किशोर कुमार की आवाज़ में मस्त सा सुनते हैं।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की
1: आवाज़। 7:25 हो चुके हैं और कई लोग इस समय खाना बना रहे होंगे, कई उन्हें खा लिया होगा और कई लोग इंतज़ार कर रहे होंगे अपनी फैमिली में कुछ ऐसे इंसान

0: इंसानों का जो कि भाई लेट नाइट तक काम करते हैं और कह रहे होंगे कि कोई बात नहीं उसके आने तक हम इंतज़ार करते हैं और एक साथ मिलकर खाएंगे। भाई ऐसे ही तो प्यार बढ़ता है और ऐसे ही तो बस कहते हैं ना प्यार बढ़ता रहना चाहिए और परिवार एक साथ जुड़ा रहना चाहिए। तो इस साथ इस समय हमारा साथ दे रही हैं सुदेवी जी और जो कि एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। उनका तो दिल करता है कि मतलब उनकी एक प्यारी सी लिस्ट होती है, वो अपने किसी भी इंसान को नहीं भूलती और कहती हैं अगला गाना थ्रियोले से दीदी ललिता एंड खुशहाल फैमिली के लिए, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा देवी नामलिंगा के लिए और ऑल राम रतन फैमिली जो कि एक प्यारा सा गीत सुनाना चाहती हैं और उन्हें कि यही कह रही हैं कि भाई ठंड बहुत है तो बस अपना ख्याल सारे जने रखें अपने अपने घर में। अगर किसी को कोई टेंशन हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं बताऊँगी कि क्या नुस्खे हैं मेरे पास। क्या बात है, थैंक यू सो मच। हमें भी नुस्खा बताओ, बहुत सारे लोगों का यही कॉल और कंप्लेंट आती है, भैया थोड़ी सी जुकाम हो गया, खांसी हो गई, कैसे ठीक करा जाए। तो चलिए भाई, हम तो आपको, हमारे पास आपका नंबर है, हम आपको ढूंढ लेंगे। तो चलिए साथ में हमारे इस समय जुड़ी हुई हैं नंदिनी जी और वो भी एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं तो हम बिल्कुल चलाएंगे आपके लिए भी। अनीता जी फ्लिक ऑफ फ्लैग से जुड़ी हुई हैं साथ और आज उनकी पोती निशितिका का बर्थडे है जो कि आज 25 साल की हो गई हैं और उन्हें कह रही हैं तुमको तो इतना नहीं एहसास होता जितना तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो। मैं तो यही कहती हूँ हमेशा तुम ऐसे खुश रहो, अच्छी उम्र हो तुम्हारी, प्यार रहे, जितना प्यार तुम सब में बांटते हो वैसे हमेशा मेरे साथ रहो। क्या बात है, ब्यूटीफुल मैसेज। शीला जी जुड़ी हुई हैं और अपनी बेटी के लिए एक गाना सुनाना चाहती हैं और कह रही हैं कि उनके हैंडसम सन इन लॉ के लिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा है तो वो दामाद पर सच बताऊँ तो वो मेरे को बेटे से भी ज़्यादा प्यारा और मेरी बेटी से भी ज़्यादा प्यारा है और उसका नाम है विमल और वो एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं आरव और निष्टि के लिए। तो चलिए भाई इंजॉय करते हैं आपका ये गाना।
1: RM3 रेडियो।

0: दिलों की आवाज
1: सैटरडे का दिन होता ही इतना प्यारा सा है। यहाँ पर आपकी पसंद के गाने भी चढ़ते हैं और थोड़े थोड़े से हमारी पसंद के गाने भी चलते हैं। भाई हम तो ये चाहते हैं कि आप सबके जितने गाने हों आप हमें भेजिए आपकी लिस्ट में।

0: जो टाइम के हिसाब से चलेंगे ना बस वही चलेंगे, बाकी तो बस थोड़े से कहते हैं ना कि नेक्स्ट वीक के लिए हम संभाल के रख देते हैं, पर चलते हैं आपकी पसंद क्या है। चलिए भाई, इस समय जो लोग पुरानी यादों में चले गए होंगे उनको एहसास हो रहा होगा कि क्या करें यार, वो टाइम वापस क्यों नहीं आता, कहाँ चले गए वो दिन। पर कोई बात नहीं, ये जो पुरानी यादें हैं इनको तो आप याद करते रहें, पर नई यादें ज़रूर बनाते रहिए, क्योंकि यादें जब बनती हैं नई तो फिर आपको एहसास होता है हाय उस टाइम ऐसा हुआ था, और वही टाइम सबसे अच्छा और प्यारा होता है। तो चलिए भाई, इस समय हमने और भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस ले लिए हैं जिन्होंने बहुत सी पुरानी यादें तो बनाई हैं बट बहुत सारे साथ भी बनाए हैं। तो इसके साथ में हमारे साथ छोटी जी जुड़ी हुई हैं और ललिता दीदी के लिए, आत्माराम भाई के लिए और पूरे परिवार के लिए गाने की फरमाइश कर रही हैं। साथ में ललिता कौशल जी भी जुड़ी हुई हैं और साथ में हरीश भैया, आत्माराम भैया, छोटी दीदी सुखलाल मौसी और बहन सुदेवी के लिए भी एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। और बहन सुदेवी जी को तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, आपकी पसंद बहुत अच्छी है जी। सुरेश शर्मा, साजदा जी भी जुड़े हुए हैं और अपने बेटे निशाल के लिए, माधवी जी के लिए और एक अपने प्यारे से मित्रों के लिए गाना सुनाना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल चलाने वाले हैं। अनीता प्रताप जी भी साथ भी दे रही हैं और वो भी कह रही हैं कि बहुत ही प्यारे गाने चल रहे हैं, तो ये आप सबकी ही पसंद है। अनीता जी, जिन्होंने सिर्फ हाय लिखा और अपने हस्बैंड और आपकी पिक्चर बहुत अच्छी है, तो मैं तो बोलूँगी आप मैसेज भी तो लिख दीजिए। साथ में सचिन जी जुड़े हुए हैं साथ में और पॉम्पलेमूस से जो कि हैं और प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं, हम एक एक करके गाने आप सबकी पसंद के चलाएंगे।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की
1: आवाज 7:56 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़ गए हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। चलिए जी, जो इस समय हमारे साथ हमारा प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मॉरिशस में नहीं है बट बाहर देशों से हमारे साथ दे रहे हैं, हम उन सबको कहेंगे वेलकम आप ही के शो में। पर आपको कहेंगे जितनी दूरी से आप हमारा साथ निभाते हैं, अपनापन देते हैं, आपका हमेशा वेलकम है। इंजॉय करते रहिए अपने गाने। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं देवयानी जी, जो कि रेस्मो फ्लाक से हैं और उनके लिए एक प्यारा सा गाना चलाने वाले हैं। संजय जी जो कि पोर्ट लुइस से हैं, उनके लिए भी एक प्यारे से गाना चलाएंगे हम अपनी पसंद का। जी जो साथ दे रहे हैं यूएसए से, उनके और वो मिस कर रहे हैं अपनी वाइफ को और कह रहे हैं प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर एक प्यारा सा गाना चलाइएगा, ज़रूर चलाएंगे जी। कमलेश रानी जी और परमजीत जी जो कि दोनों बहनें हैं और वो जुड़ी हुई हैं इस समय इंडिया से और वो कह रही हैं कि भई हमें गाने बहुत पसंद आ रहे हैं क्योंकि पुराने गाने हमारी जो है ना जान है। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वो मेरी मम्मा है तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप मेरी जान है। तो इन्जॉय कीजिए अपने गाने, बट हम इतना ही आपको कहेंगे हमेशा खुश रहें। जो भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन्जॉय करते रहिए अपने गानों को।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 8:13 हो चुके हैं और दिलों की आवाज़ तो हमेशा आपके साथ ही रहती है। और हमारे को पता है कि आप अपने कॉल का या अपने व्हाट्सएप पे मैसेजेस का वेट कर रहे होते हैं कि हाय हमारे का हमारा जो दिल दिया हुआ है किसी को उसका नाम एक बार ले लिए, तो भाई क्यों ना लें, हम तो बिल्कुल लेने वाले हैं। इस समय हमारे साथ दे रही हैं स्विनल, जो कि कह रही हैं और विश कर रही हैं सभी को, पूरे मॉरिशस को और जो भी ये प्रोग्राम सुन रहा उन सबको हैप्पी सैटरडे। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच स्विनल। और स्पेशली अपने भैया भाभी, उनके प्यारे से जो प्यारे से बच्चे हैं, उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहती है, आप सब मेरे दिल में रहते हैं। और सच में बताऊँ ना, ये दिल का जो हिस्सा है पहले शायद सिर्फ मेरे लिए था, अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक मेरे परिवार के लिए और एक रामचरण फैमिली के लिए, जहाँ से अंतिश उनकी ज़िंदगी में है। और उनको कहना चाहती हैं, जो कि इस समय स्विट्ज़रलैंड से हमें सुन रहे हैं, उन्होंने यही कहना चाहती हैं कि आप मेरे लिए बहुत खास हैं, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। रंभा जी भी जुड़ी हुई हैं स्विट्ज़रलैंड से, क्या बात है, आज हमारा प्रोग्राम स्विट्ज़रलैंड से सुना आ रहा है, इसीलिए तो इतनी ठंड भेज रहे हैं आप लोग, भेजिए हमें चाहिए। इस समय साथ दे रही हैं रिहाना जी, जो कि पोर्टलिस से हैं और एंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। उसके साथ में ही हमारे प्यारे से और भी लोग हैं इस समय, और कौन जुड़ गया भाई, एक प्यारी सी हमारी, बहुत ही प्यारी सी, यस चलो भाई कोई बात नहीं, उनको उन्होंने मैसेज देखा डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, हम फिर भी कहेंगे कि आपका जो दिन है वो तो अच्छा ही गुजरा, आप जो रात है उसे भी अच्छे से गुजारिए, एंजॉय कीजिए अपने गाने अलका याग्निक की आवाज़ में, कयामत से कयामत मूवी का ये प्यारा सा सॉन्ग है आप सबके लिए।
0: RM3 रेडियो।

0: दिलों की आवाज।
1: 8:25 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं हमारे साथ यानी कि दिलों की आवाज़ के साथ। और ये प्रोग्राम है आपका, आप सबकी फरमाइशों का, आपके मैसेजेस का। और हम यहाँ पर चलाते ही ऐसे गाने हैं जिससे आपका दिल, जो सुबह से लेके आपकी थकावट है शाम तक आप पहुँचे हैं, वो आपकी थकावट से छूमंतर हो जाए और जब आप सुबह उठें तो बिल्कुल फ्रेश उठें। तो चलिए, जो इस समय हमें सुन रहे हैं, ना मैसेज ना कॉल, पर हमारे साथ फिर भी साथ निभा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि कोई बात नहीं पूनम जी, गाने चलाओ गाने चलाओ, हम सुन रहे हैं। तो बस ऐसे सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए अपने गाने। हमारे साथ इस समय दे रही हैं उमा जी, जो कि बहुत ही, उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है मैं आपको बता नहीं सकती। और सच में जब वो हंसती हैं ना तो मुझे लगता है कि उनकी हंसी में से गुलाब के फूल झड़ते होंगे। सच में, बिलीव मी, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के लिए ऐसे नहीं कहती हूँ, उनकी आवाज़ मुझे सच में बहुत प्यारी लगती है। इस समय फूलवंती जी भी हमारा साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को। साजिद जी जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत प्यारा सा किस्सा सुनाया, कहते जब वो बहुत यंग हुआ करते थे तो अपने नाना जी के साथ में, नानी जी के साथ में, मामा जी के साथ में बहुत सारे 50-50 कहते हैं सिक्के इकट्ठे करते थे और उसके बाद मूवी देखने जाते थे। और उनको यादें याद आ गई कुछ पुराने गानों को सुन के, और कहा कि नाना जी तो अब नहीं है पर फिर भी उनकी यादें साथ है। क्या बात है, थैंक यू आपने ये जो प्यारा सा किस्सा है हमारे साथ शेयर किया। बस जुड़े रहिए, इस समय हमारे साथ गुलशन जी जुड़े हुए हैं और अपनी मम्मी प्रभा के लिए, सिस्टर दीक्षिता के लिए और उनकी जान कहते हैं ना आयशा के लिए और भोला फैमिली के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं। बट कहना चाहते हैं कुछ, कहते हैं कि जिंदगी से कभी प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती, मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती, वफा अगर सीखनी है तो मौत से सीखो, जो एक बार अपना ले वो फिर किसी और का होने नहीं देती। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू गुलशन जी। आप मुझे बताएं, आप रेस्टोरेंट में हैं, इंजॉय कीजिए अपना गाना और ये गाने आप सभी के नाम।
0: RM3 रेडियो।

0: दिलों की आवाज।
1: 8:43 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज के साथ, और इस समय मैं हूँ आपके साथ पूनम। तो क्या बात है भाई, क्या क्या गाने चल रहे हैं, आप सबकी पसंद को बताए भाई। नाज है मुझे क्योंकि इतनी प्यारी पसंद है, क्योंकि मेरे तो गाने चलते ही नहीं पसंद के, मैं तो चाहती हूँ कि सिर्फ आपकी पसंद के गाने चले। और सब ने इतने प्यार से, मतलब कहते हैं ना, टाइम भी एकदम देखा है कि चलो भाई 50s के चले, 60s के चले, 70s, 80s, 90s जंप मार गए हम 90s पे, और हम नहीं उससे आगे नहीं जाने वाले, क्योंकि मुझे पता है कि जब पुराने गाने चलते हैं तब तक 90s तक को हम बड़े जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं रात के टाइम। तो चलिए भाई इंजॉय कीजिए अपने गाने, और पर अगर आपके साथ आपका परिवार बैठा बिना मतलब के एक बार स्माइल एक दूसरे को दे दीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से दे दीजिए, क्योंकि सच में अगर आप एक दूसरे को स्माइल देते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, तो सच में बताऊं बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। इसके साथ में इसमें दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। शारदा जी जुड़ी हुई हैं और सुंदर फैमिली के लिए बाम्बू से एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं, तो बिल्कुल हम चलाने वाले हैं आपके लिए। हेमलता जी, रोशनी, दर्शनी, सीता जी, हेमलता, सुदीक्षा एंड अनीता, राम तोहल जी भी साथ दे रही हैं, और एक प्यारा सा गाना राम तोहल जी के लिए चलाएंगे हम। और एक हमारे सर हैं हरीश जी, उन्होंने बहुत ही गरम गरम कॉफ़ी के का कप भेजा है, एक फ़ोटो भेजी है और कहा पूनम जी चाय या कॉफ़ी पी लो। तो क्या बात है, मतलब आपको पता है कि इस टाइम मुझे चाहिए होगी, पर फिर भी हम ये कहेंगे आप गाने इन्जॉय कीजिए, हम थोड़ी देर में यानी कि एक घंटे के बाद पियेंगे, इन्जॉय कीजिए ये आपका गाना।
0: RM3 Radio.

0: खेलों की आवाज
1: 8:55 हो चुके हैं दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत। जो जाग रहे हैं उनकी रात अच्छी गुजरे, और जो सोने जा रहे हैं उन्हें प्यारे प्यारे से मीठे मीठे सपने आए। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, शुभ रात्रि। आखिरी गाना आपको हम पता है, हमेशा मेरी तरफ से होता है आप सबके लिए। इंजॉय कीजिएगा ये आखिरी गाना आप सबके लिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।
0: RM3 रेडियो।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी,
3: भोजपुरी तड़का,
2: तड़का।
3: भोजपुरी,
2: भोजपुरी तड़का,
3: तड़का।

0: Continuous music. Music.
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो पर कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमपीसी

सब संगतियालों के औजे प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन रात के 9 बजे तक और अभी से लेकर रात के 11 बजे रहे प्रस्तुत बातों के पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का अभी से लेकर रात के 11 बजे रहे। आज है सामदी की रात, सामदी 11 जुलाई साल 2026। आज के रात प्रताप सिंह संगे गमत ही गमत है। नंबर वा याद बना का जगह देवी जगह सैंक पर सक बजा टेलीफोने करके अपन पसंदीदा भोजपुर गीत मांगे। ठंडा ठंडा करता और ठंडा के मौसम में हमने के तुलों के साथ देवत है जा, तू भी हमने के साथ दिया जा। आज अब सा गाँव अब सा झूम अब सा कमरवा डुलाओ अब सा। और जो वीकेंड रहे रहो स्पेशल रहे रहा कहे कि रास्ते में ढेर कोई के लिए तो नहीं मिला राजू सुने के तभी सामदी दिमास बात आते सामदी के रात तो चला सामदी के रात के गमर कर हमने के संगे एमबीसी रेडियो मॉरिशस एमबीसी रेडियो मनोरंजन के साथ पहल का गाना सब एमबीसी रेडियो के सुनने वाले श्रोतालों के नाम मांग के सिंदूर वाह बीज माओ से संबंध का बोला था चले एक साथ सुने।

आज 11 जुलाई के हमने दुनिया भर में मनावत है जा विश्व, जी हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये जुन है 11 जुलाई के हर वर्ष मनाए रहा सा कहे के ये हमने की बतावेला कि पॉपुलेशन कितना बा और परिवार में कैसे परिवार नियोजन के बारे में और लैंगिक समानता शिक्षा के बारे में बतावेलन सा। और इकर शुरुआत हो रहल 1989 में एक शुरुआत हो रहा राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के पहल पर और पहली बार एक 11 जुलाई 1990 में मनावल गल रहा। और आज के हमने की थीम है डेमिलवेंसिस के हमने के जन टेम है विश्व संख्या दिवस के रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल पीपल ऑफ टुडे एंड फॉर द फ्यूचर, यानी कि युवाओं के आशा और आकांक्षा को साकार करने और आज और भविष्य के लिए क्या किया जा सकता है। और जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौती के प्रति जागरूकता बढ़ावेला, परिवार नियोजन और मातृ शिशु स्वास्थ्य के भी बढ़ावेला, शिक्षा और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करेला और प्राकृतिक संसाधन के संतुलन उपयोग पर बल देवेला। और बढ़ती जनसंख्या के प्रमुख प्रभाव है भोजन, पानी और आवास पर दबाव।

0: बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण और वनों की कटाई, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा और अधिक भार, जलवायु परिवर्तन की चुनौती में वृद्धि और समाधान है परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। आजकल देखिए जैसा कि ढेर मना देश में ढेर कोई शादी नहीं करता या लड़का नहीं करता, तो विश्व जनसंख्या दिवस बतावेला कि जो देश में इसे होला तो फिर इसमो दिला पॉपुलेशन खातिर बोल जाएगा कि आदमी लोग के चेहला शादी करे के लड़का करे के ताकि हमने के देश में आने वाला पीढ़ी आए। और जब आदमी लोग शादी नहीं करे लड़का नहीं करे रहा तब पॉपुलेशन बिजी होला। इससे क्या होला कि एगो देश में जब आदमी नहीं रही तब बड़ी दूसरा देश आदमी लोग के भुलाए के काम करके ये खातिर हर एगो देश में सरकार बोलेगा कि चाहेला शादी करे के और लड़का करे के ताकि आने वाले भविष्य में कोई ना कोई सकी है देशवा के जुन आगे बढ़ावे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बाज विश्व जैसे बोली विश्व जनसंख्या दिवस तो ये हमने के चिंतन मनन के हमने के करेला हमने के बतावेला चिंतन मनन करे के मौका देवेला कि पॉपुलेशन कोनो कोनो पेई में ढेर बा, कोनो कोनो पेई ओवर पॉपुलेटेड बा, पर कोनो कोनो देश में शादी नहीं करा तो उनसे लड़का नहीं कर सकते एगो समस्या बन जाला। काहे कि जब देश में जब कोई शादी नहीं करी लड़का नहीं करी तो देशवा कैसी चली हों कि नहीं। तो ऐसे में चला सुनब जाए गो पहला बहुत ही जोली गीत अविनाश गैले हवन। अविनाश जी गैले वन गीतवा खूब जोली बा बरिए जोली बा और है गीतवा जुन चलावती स अविनाश रामदाहिन अमृत अभिषेक सर भी गीतवा गैले वन और गीतवा हमने चलावती स सब रेडियो मर्चेंट्स और रेडियो मनोरंजन के श्रोता के नाम, खासकर सेंट ओबेस एस एस कॉलेज के इस सब संगतियालों के नाम, सजू वीरापेन अपाया रोसाई प्रतिमा केत दीना युश्री अनुव एडू और धर्म गंगू जी के नाम है गीत चाहते साइलेंट की ओर से उकर मारीता और सब सीतालू परिवार के नाम। तो चले एक साथ सुने बाबू कैसे खूबे जोरीबा बाबू बढ़िए जोरीबा।
1: बाबू के जन्म होल बाहो थारिया बजावा।

हमने के बाबू था खूबे जोरीबा और बेशक ये बखत सुनते हुआ तो लोग मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन जी हाँ ये जो न कार्यक्रम तो लोग खाती तैयार करके अनले से और ये प्रोग्राम चल रहा रोज रात के दिन जी से लेके जिमा से रात के 9 बजे से 11 बजे रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर और संगतिया लोग हर बरिस हमनी मनाए ला सा एगो पर्व जुलाई में जाने ला कौन पर्व है तो वो पर्व है मुंशी प्रेमचंद जयंती। हर बरिस 31 जुलाई के मनाए ला सा दुनिया भर में तो मुंशी प्रेमचंद को लिखा कर जन्म हो रहा 31 जुलाई 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही गांव में और उकर वास्तविक नाम है धनपत राय श्रीवास्तव और वो हिंदी और उर्दू साहित्य में सम्राट अलंजा। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महान उपन्यासकार और कहानीकार अलंजा और उकर रचना में गरीबी किसान की समस्या जातिगत भेदभाव महिला की स्थिति और सामाजिक न्याय जैसे विषय प्रमुख बा और उधे मना कृति लिखलक बा जैसे कि गोदान गबन निर्मला कर्मभूमि रंगभूमि ईदगाह कफन पंच परमेश्वर और नमक का दरोगा। और प्रेमचंद जयंती के महत्व इस दिन विद्यालय महाविद्यालय और साहित्यिक संस्था में साहित्य पर व्याख्यान होला निबंध प्रतियोगिता होला कहानी पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करल जला और इस दिन भारतीय साहित्य में उकर अमूल्य योगदान के बारे में याद करल जला नई पीढ़ी के उकर रचना के से परिचित करावल जला। तो बेशक मुंशी प्रेमचंद जुनन है वो अपन छाप छोड़ गल साहित्य की दुनिया में और जोन भी पीढ़ी आए वो एक नए दिन ओके चहला मुंशी प्रेमचंद के जुन है उकर रहे सब पुस्तक पढ़े कि काहे कि इस सब पुस्तक में ढेर माना ज्ञान बात याद रखे हई भरी 31 जुलाई के मनावब से मुंशी प्रेमचंद जयंती। लेखक लोग आवेला लिखेलन से और चल जालन से दुनिया से पर लोग की कृति रह जाला हाँ कि नहीं तो जितना कोई कुछ हिंदी साहित्य या उर्दू साहित्य पढ़े के तो यूट्यूब पर जाइए टाइप करिए मुंशी प्रेमचंद तो कर बारे में थोड़ा ढेर माना जानकारी मिली। और अभी रात के समय बा तो चला अगला गीत सुनम जा जिले जिले जिले जी हाँ बहुत ही प्यारा सन गाना है गीतवा गैले हवन उमेश डोहू और है गीत हमने चलावते ऐसा खासम खास इस सब लोगन के नाम आप हवन उदय धनी राम कवि जी पोस से सब

परिवार के नाम, अश्विन बच्चन और भाई बच्चन और सब बच्चन परिवार के नाम, किशन गुड़िया पर गीत और खातिर, प्रीतम राज जमीला है गीत खास कर त्योहार खातिर भी, प्रीतम राज जमीला के भोजपुरी गीत बड़ी पसंद कर के अच्छा लगेला तो गीत थोरो नाम। और आज टीना भैरव के जन्मदिन बात बधाई देवतन और पति कवि और सासू माँ माला, बेटा माधव, ननद रीना और सब भैरव परिवार।

0: Marcius.
1: Continuous music.
2: Testing.
3: कभी सोचा है
4: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
3: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
4: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
3: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
4: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
3: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
4: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
3: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
4: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
3: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
4: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
3: और आपका चांस,
4: डोंट मिस इट।
5: तो हाँ, तो तू खुशी रहे बजाय के प्रोग्राम पे सौते करे के एनिमेशन करे के तो वन डे आरजे में जरूर भाग लिया जा के जाना था तोरा मौका मिली आके MBC में एक दिन खातिर आरजे बने के। हमने लिखा आरजे के मतलब है रेडियो जॉके, ये कोई राज्य में बचा ला अंग्रेजी में वैसा ओके आरजे रेडियो जॉके और फ्रांसी में अनिमाते बोला सा हिंदी में वक्ता है जो आदमी बच्चा ला राज्य में जिसे हमने ऐसा हमने के टीम बार रेडियो मनोरंजन, रेडियो मस्ती, रेडियो मॉरिशस, रेडियो स्पीकर ढेर कोई बोले ला। तो कैसे बोली हमारा नाम है अजय प्रताप सिंह यानी कि हमें को रेडियो जोके आई सोके ना जोके जन घोड़ा में धोगेला घोड़ा घोड़ा जन जोके घोड़ा लेके धोगेला ऊ जोके नहीं हाई जोके है राज्यों के जोके रेडियो जोके अजय प्रताप सिंह। और हमने चलो के साथ देवा थे जो अभी रात के समय रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और संग जा लोग ढेर कोई खाली घर में रहे लंसर भाई घर में काहे खाली रहेला जइया थोड़ा सा घूमे उमे शादी में जइया पूजा पाठ में जइया कोई के लानी वैसे रही तो जइया लोगन से मिलिया एक ही बोला सोशलाइजेशन। और एगो अंग्रेजी कहावत है बेटर टू बी इन ए गुड कंपनी दैन being alone ओकर कॉन्ट्रा है बा better being alone than being in a bad company। तो जनिया कौन संगतिया कि तू भैन कराते हुआ कि कैसे कामकाज कराते हुआ अच्छा संगति कर बत अच्छा बुद्धि मिली बुरा संगति कर बत जाने ला का होला हम तो रहा नहीं बोला। और चला भी गीत सुन जा पैसा बात करेला सच्चे कि पैसा जो है बड़ी बात करेला। और है कि तो आज चली हमने चलावत ऐसा शास्त्री बनुमानी के नाम और पत्नी और बेटा विवेक बेटी दामाद और सब बनुमानी परिवार के नाम हरीश नारायण रहेरन मिडलैंड है गीत तो हर बेस्ट फ्रेंड प्रताप की ओर से। आहा प्रताप और हरीश की दोस्ती जो है राम भरत की दोस्ती लिखा है राम हनुमान की दोस्ती कृष्ण सुदामा की दोस्ती जैसन है लोग दोस्ती लोग दोस्ती जो है बहुत प्यारा दोस्ती है। आहा हरीश और प्रताप दो लोग बेस्ट फ्रेंड हवा जा और है कि सब बेस्ट फ्रेंड्सों के नाम जो हमने की सुनाता भी रात के आशा जानू को तेज से हवन अगर मामा कुमारी दीदी आरती जीजाजी चीजों फो शुभम और सब जानू परिवार के नाम। और जितना कोई अभी रात के हमने की सुनाता जितना कोई पैसा खुशी रहता टन टना टन टन है गीत हरो नाम।

ऐसे ही नचते गाते रहिए, कमरवा डुलाती रहिए रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के लहरों पे। और बोल जाता कि सकेला दिमासा लेंजी और गांधी साइक्लोन आए और ठंडा करी बाप, इतना ठंडा, ऊह कप कपी कप कपी। और अब हम तोहरा को कहानी सुना। यह है राजा और दासी की कहानी। बहुत समय की पहले की बात है, गोराज में गो न्यायप्रिय और दयालु राजा रहल, बहुत अच्छा रहल राजा, बहुत अच्छा दिल के। ओकर महल में कई सेवक रहल, खवाइये लोग और सेविका, और ओकर एगो दासी रहल, दासी के नाम रहल गौरी। गौरी बहुत ईमानदार, मेहनती और विनम्र भाव के रहल। वो हर काम लगन से करत और राजा के बड़ी खुशी रही। एक दिन राजा के बहुमूल्य हीरे के हार जो है महल में गायब हो गल, भेजी हो गल। महल में हड़कप हड़कप मचल गल कि ओकर हार भेजी हो गल। और कुछ लोगन ने बिना कोई प्रमाण के गौरी पर चोरी के इल्ज़ाम लगा दिलन। सर सबके बोलते मन सर कि राजा के हार के चोरी का लगभग ओकर दासी सब कोई अकीजे करता कि दासी जो है गौरी वो राजा के हार चोरी कर लगबा। और वो कहे कि वो दिन जो है वो दासी जो है रानी के कक्ष में रहल और सब कोई जूते होता कि गौरी चोरी कर लगबा। राजा जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेलक और वो जांच कराए के कोशे को इन्वेस्टिगेशन कर लग। और कुछ दिन के बाद पता चल कि पुराने संदूक के पीछे हरवा गिरा रहल, कोई चोरी नहीं करे रहल। पुनोइया के आदमी आकीजे कतल की गौरी चोरी कर लग बा। गौरी बेचारी से निर्दोष रहल। गौरी फूट फूट के रोई लगल। वो बोलता महाराज हम उतना दिन तोहर लगे काम कर लें, तोहर नमक खा लें, हम कहे तोहर हार चोरी करब। राजा अपन प्रजा पर बहुत गुस्सा करलक, कहे कि ओकर प्रजा धूते करलक, सौस दलन से आकीजे कलन से गौरी पर।

और गौरी की ईमानदारी और धैर्य की प्रशंसा करलक राजा, और राजा के ढेर मना पैसा और सुना दिलक। और राजा ने घोषणा करलक अपन राज दरबार में कि जौन भी व्यक्ति बिना फेब के गौरी पर अब्जस कैलक बा ओके करी से करी सजा मिली। और जौन है राजा बहुत प्यार से गौरी की ढेरी नाम दिलक। गौरी भी प्रसन्न हो कहे कि राजा को पर विश्वास कर लग। कहानी के जौन मुगाल है शिक्षा है कि बिना सबूत के कोई पर आरोप नहीं लगैया। जब गुजाफे नहीं जानते हो तो आगे आगे नहीं बचिए है सौत नहीं डाली की। और ईमानदारी और धैर्य के फल जौन है ईमानदारी और धैर्य के फल हमेशा अच्छा होला, और न्याय हमेशा निष्पक्ष और सत्य पर आधारित होला। यह कहानी के मोहाल। तो तू भी कब कोनो जाफे नहीं जन्म तो आगे आगे नहीं बचे या गुजाफे नहीं दिख लिया हुआ तेने जाके बकबक बकबक करे लग गया। ढेर कोई इसे करेला कुछ जाने लन से नहीं गुजाफे सुने लन सा जाके पकपक पकपक करे लगे लन सा। ये नाचियो है इंसान के यूमे के नाचियो की जहाँ को बात सुनलक वो बटुआ के रिसेस नहीं करलक। बटुआ रे जाके वन भन बटुआ में मिर्च मसाला लेके बचिया देवेला और लोगन में झगड़ा डाल देवेला। और जब झगड़ा डालने से बैठ के तमाशा देखेलन सर तैसन काम तू नहीं करिया ठीक बा। कहानी बहुत अच्छा रहल राजा और दासी के कहानी देखला दासी इनोसों रहल। अब चल अगला गीत सुने गांव के लाफों तेनुआ राज कमल चिंतामणि गीतवा गेले वन है गीतवा हमने चलावत खास कर अनिता जो नहेलन फिकोफला कनिता लाल जी मोदाल बे से इंदिरा लौटन माइबू से शोभा हवन बाकवा के शोभा पोंपली मुस्के और रेहाना हवन फिनिक्स के नोत्र दाम के रेहाना वो भी हमने के साथ देवतन और फिनिक्स के रेहाना गीत मंगने वन का बहिन बेन साइदा जारीला और कोरेसा और सब हासनारी परिवार के नाम। तो चल एक साथ सुने हैं गीतवा गांव के लाफों तेनुआ। और आगे के ज़माना में गांव के लाफों तेन रहा एक एक गो रोबिने रहा सब कोई जाता पानी भरे। आजकल तक घर घर में रोबिने भैया तो आज हर सुख सुविधा बा फिर भी लोगन प्लेने होते रहेला है नहीं बा हो नहीं बा तो का करते भैया कपार में पर गमी डाल के जाके पानी भरे के आजकल जिमाते तो का करते फिर प्लेने नहीं हुई भगवान जितना दिलक बा जितना फासीते बा आजकल तो का बोलब आ हा हा। चला सुना राजकमल चिंतामणि की कहानी गाँव के लाफों तेनुआ।

आगे के जमाना और आज के जमाना में ढेर अंतर बा। आगे आदमी लोग ढेर मिजेर रहल, ढेर गरीब रहन सा। आजकल तो सबके यहाँ गाड़ी बा, बंगला बा, मोटर बा, पैसा बा। संख्या लोग बोलिया सा कि जब गलती करबा तो यह परी पड़ा भरे के है ये धरती पर। यह परी स्वर्ग है, यह परी नर्क है। अब मान ला तू कोई के दिल दुखा दिला, तू कहते हम कितना दुनाशों का दान करत हो, पूजा पाठ करत हो, पर तू एगो इनोसों के दिल दुखा दिला है। एगो व्यक्ति जो थोड़ा कुछ नहीं कर लगबा, अन भन होकर पर बग दिला, तो वो व्यक्ति रो दिलक, तो भगवान बड़ी क्रोधित होला। यह पर चाह भरे के हम बोले है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं सब कि आऊँ के सामने होल बा कि जो आदमी ढेर मूवी करेला ओके परेला है ये धरतिया पर भोगे के। कोई के शराब नहीं देवत थे, पर जो आदमी करेला दूसर के दुख देवेला वो कबो खुश नहीं सका। कोनो कोनो आदमी रहेला ऐसे उ नहीं सकला कोई के सुखी देखे, तो वो गलती पे गलती कर ले जला और हर बार माफ़ी मांगेला। एक बार गलती करलक माफ़ी कर देला, दो बार गलती करलक माफ़ी कर देलक, बार बार व्यक्ति गलती करे और माफ़ी मांगी तो ऐसा व्यक्ति के सब माफ़ करे थोड़ा डिफिसिल बा। तई खातिर बोले ऐसा कोनो भी काम करे से पहले सोच समझ या कहे कि जे गलत काम करत हुआ, कोई के दिल दुखावत हुआ, कोई के निंदा करत हुआ, चुगली करत हुआ, तो यह परी भरे के। और हमने खासकर मांग करी ऐसा हमने के जो बड़ा जन हमने देर देखे से हमने चाची नानी लोग के कबो कबो एगो वो दूसर कहते मान्य हो गलबा कि इधर के बात उधर करे रहन सा और झगड़ा हो जाला। तो मांग करब से तो लोग बड़ा आदमी हो सा काहे इसे करे रह सा, कहे एगो पतो के बात लेके दूसर पतो के बोले रह सा। देख रहे से देर घर में ऐसे झगड़ा हो जाला, महाभारत इतना कांड हो जाला कि घर परिवार टूट जाला, बिखर जाला। तो यह परी परेला भरे के वो चाहे कई भी रही, लड़का रही, आदमी रही, बड़ा आदमी रही, अगर तू बुरा काम करत हुआ तो माफ़ करिए आइए धरती पर परेला भरे के। ऐसे में चलो सुन अब जो अगला गाना अतीश भगीरथी के गावल छोर के मोरिसवा। और जे कोई मॉरिशस से बाहर बा इस समय या घूमे गलवन सा या पढ़ाई करे गलवन सा या काम करे गलवन सा, तो गीत तो लोग के नाम चलावत है सा। आज तीना बुधना के पति के जन्मदिन बा, तो तीना बुधना अपन पति की बहुत प्यार करेला और बोला तो अपन पति के आई लव यू बेबी। तो तीना बुधना गीत तोहर खातिर और तोहर घरोला खातिर, तोहर दुगो बेटी और सब बुधना परिवार के नाम आप हेलन वेल। और है ये गीत तो हमने चलावत है सर खासम खास चित्रा और ज्ञान विश्राम खातिर, आप रहेलन मौदाल बे कमला जीनू रहेलन मौताबा ओका छोटा लड़का आरोही खातिर और कमला महादेव ये हमने के औसे और जी है हमने के रेडियो पर काम करते लन। आप रहेलन फिनिक्स तो कमला महादेव है गीत खासम खास तोहरो नाम। और जितना कोई भी रात के सुनता रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर है गीत तो लोग के नाम भी चोर के मोरिसवा।

और अब हो जाए थोड़ा सुन बॉलीवुड न्यूज। हमने में से ढेर कोई कुछ बॉलीवुड के फिल्म देखे के तो ताज़ा खबर यह है कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान ओकर तीसरा शादी होल बा। तीसरी बार के शादी के बंधन में बंधल बा। ओकर शादी हो रहा 5 जुलाई 2026 में और ओकर शादी होल बा गौरी स्प्रिंट के साथ। गौरी बेंगलुरु से है और एगो एंटरप्रेन्योर है। तो आमिर खान के तीन गो शादी हो बा। पहलका पत्नी के नाम है रीना दत्ता। ओकर से शादी कर रहा है 1988 में और तलाक होल 2002 में। इस शादी से दुगो लड़का हो जुनेद खान और आयरा खान। दूसरा शादी कर ला किरण राव के साथ। ओकर शादी हो रहा 2005 में और एरो के तलाक होल 2009 में। इस शादी से एक वो लड़का पैदा हो जिकर नाम है आज़ाद राव खान। और अब आमिर खान के शादी हो बा गौरी स्प्रिंट के साथ। तो का शादी हो बा 5 जुलाई के और जैसे बोली कि गौरी जो है बेंगलुरु से है और एगो एंटरप्रेन्योर है। और शादी के बाद आमिर खान और गौरी स्प्रिंट गैलेंजा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हनीमून मनाए। ओए होए क्या बात है क्या बात है। सो हमने की ओर से ढेर मना आशीर्वाद आमिर खान के और ओकर नई पत्नी के। और है ओकर तीसर का शादी है। और बॉलीवुड में अक्सर ऐसे होला हाँ तो एक कुछ शादी कर लग तलाक हो गल माने कि कपल अच्छी तरह से नहीं चलता है। दूसर का शादी कर लग वो भी तलाक हो गल तो अब तीसर का शादी कर लग बात तो प्रार्थना कैसे कि शादी अच्छी तरह से जाए। हैप्पी मैरिड लाइफ आमिर खान साहब और तुहर पत्नी के। और ऐसे में सुनब जाए अगला गाना है चमकेला झुमका। तो तू को नकार दे अपन पत्नी के ते वो चमके वाला झुमका दे दिया जरूर। और है कि तो हमने चलावब सा खासम खास कुणाल हिरीलाल के नाम ओकर सब परिवार खातिर। पूर्णिमा फकीरा गीत हर खातिर। सुमन जलसा ग्रुप है गीत हरो नाम। संजय हरिचंद है गीत हर पत्नी संध्या बेटी हुविष्का और सब हरिचंद परिवार के नाम। और है गीत चली साइलेंट की ओर से ओकर भतीजा माधव के नाम। और माधव जैसे चाचा के दिखेला चाचा जान हल्ला करेरा और अपन चाचा के अपन नगे बुला के खूब दुलाल करेरा। तो चाचा साइलेंट की ओर से बेटा माधव के नाम है गीत चलाओ से मनीष अचामी सिंह की ओर से ओकर पत्नी ओकर दुगो बेटी ओकर माँ और ओकर सब परिवार के नाम। तनुजा पदारत आप लेक्चर हव MGI में है गीत तोहर खातिर तोहर सब परिवार के नाम चमकेला झुमका। और अभी रात के समय बात हो रहा नींद नहीं लगता तो फिक्र नहीं करिए अभी रात के 12 बजे हम तो हर संगे हैं। और जी प्रताप सिंह ऑन द मिक्स भोजपुरी तड़का प्रोग्राम रात के 11 बजे ले।

बोला तो संगतिया लोग ही प्रोग्राम कैसे लगता अच्छा बुझाता ना। हाँ सब कोई नाचता गावता झुमता बोला देखो संगतिया बता प्रताप तू ऐसा गीत चलावता ठंडा सा भागल हम तो ऐसा जो नाचता ये हवन केविन केविन नातू हवन रोजबेल से बड़ा जो नाचता बोला तो एक दू को मार ले रही भैया रहता था हम यो संग एक दू को मरते ना नहीं हो हम नहीं मारते हम तो अभी प्रोग्राम करते हैं रात के 11 बजे ले हा हा हम पिए भी गर्मा गर्म कॉफी आ हा क्या बात है और बोली जा सकी सब्जी में ढे मना सब्जी बा जुन में पौष्टिक तत्व है एगो सब्जी है जिसके बोल जा सक कुतुमिरी मॉरिशन लैंग्वेज में अंग्रेजी में बोल जा सक कोरियंडर लीव्स और हिंदी भोजपुर में हरी धनिया के पत्ता और ये जिन हरी धनिया है स्वास्थ्य बढ़ावेला स्वाद बढ़ावेला माफ करिए तकारी में एकर में विटामिन आ बा विटामिन सी बा का बा फोलेट बा पोटाशियम बा कैल्शियम बा आयरन बा और एंटीऑक्सीडेंट बा और कोतुमिली के प्रयोग कर बा खाई में त गैस जो आदमी के गैस खोला वो लोग के चेहला है कोतुमिली खाई के और एकर में पाचन डाइजेशन में मदद करे रखो खाए की खेबा कुतुमिली खेबा तो खेबा जीजेरे हो फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावेला तो लोग के इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग करेला और कुतुमिली में विटामिन सी बा तो जो विटामिन सी है हमने के इम्यून सिस्टम के और स्ट्रॉन्ग बनावेला और जो कि हृदय स्वास्थ्य प्रॉब्लम है हार्ट डिजीज सब रहेला हार्ट प्रॉब्लम तो कुतुमिली खेबा तो ऊ तो हार्ट प्रॉब्लम के सकेला दूर करे रक्त संचार के मदद करेगा हमने के ब्लड प्रेशर के ओके नियमन से ओकर प्रवाह करेगा और हड्डी में हड्डी खातिर लाभदायक है कुतुमिली कुतुमिली जो है आँख के लिए भी अच्छा बा आँख के ज्योति बढ़ावेला तो अच्छा हमने के जो लापू है कुतुमिली खेबा तो लापू एकदम जरूरी रही और ये वजन घटावेला जो आदमी लोग ओबेज बा मोटा होवन सा तो मोटापा के कम करेला और शरीर में पानी के पूर्ति करेला तो अब कुतुमिली के सेवन कैसे होला ये सब पुलडावन के सलाद में कुतुमिली डाल के जोड़ी से मामा डाल के सकबा सलाद करे दाल और सब्जी में भी प्रयोग होला हरी धनिया के चटनी बनेला कुतुमिली के चटनी हाँ जाने जैसे ना मोरिस में जैसा कुतुमिली के चटनी तो कुतुमिली ले बा पुलडावन को लहसुन ले ला डाल पीमा डाल दिया पीस दिया सिल में नमक डाल के का बुलत हुआ और सैंडविच में भी एक प्रयोग होला कुतुमिली के और जैसे बोली बहुत ही लाभदायक सब्जी है कुतुमिली और कुतुमिली ऐसे ने कोलिग्निम है जो 365 दिन मॉरिशस में मिलेला कहूँ भी जेबा बुटीक में

मौसम में जनवरी से लेकर दे सामने कुतुबमीनार मिलेगा। आजकल तक कुतुबमीनार बड़ी बमौसम हो गलबा इतना जुरी जुरी कुतुबमीनार हम खुशी हम जाना कैसे कुतुबमीनार खाला कुतुबमीनार की चटनी कुतुबमीनार पोल दामुन ने हरी धनिया के पत्ता गोलहसुन पीमा डाल के खूब सिर में खाजे करा तीता तीता है खूब तीता पीमा डाला तब कुतुबमीनार की चटनी रही दाल रही भात रही तो हमारे तो भोजन हो गल। तो चला ऐसा में सुनम जा अगला गाना गमट करे गमट करीला बिस्वानी दीपवा गमट करे तो वह बिस्वानी दीपवा हम तो ऐसा गमत करप हो और है गीत हमने चलावत है इस संजय की ओर से सुरेखा के नाम निश्चल शिवरतन विजय रागु विजय सोमरा संदेश रंजीत सिंह मौसी संगीता गोकुल नवीन भैरव और नवीन अजोदा के नाम डॉक्टर राकेश रामचंद्र गीत तोहर पत्नी आशा तोहर डुगो बेटा और सब रामचंद्र परिवार के राम जोन रहरन प्लेन मायो और है ये गीत हमने चलावत है जा खासम खास संगीता मीरन की ओर से आप रहन लाहौजा उकर भाई दान आजी है गीत तोहर खतीर तोहर माँ और आप रहन कास्तेल तोहर बहिन हे माँ शांति वंशिका रक्षिता और सब अमीरन और मोहन परिवार के नाम है गीत जाता खासकर एक्स एम जी आई बॉयज के नाम गोविंद किशोर राव रामा राव बुसानुकालू बाला के नाम भी। तो चलो एक साथ सुने हैं गीत वहाँ बहुत प्यारा संगीत है गमत करीला हम तो खुशियाँ गमत करे कि भैया हम जब आएला रेडियो पर तो गमत ही करीला तो लोग भी हमें संगे संगे गमत करे और नाच गाव झूम नाचे में कंजूसी नहीं हाई देखा हाई देखा हाई देखा मामा हाई देखा गम्मत करीला गम्मत करीला गम्मत करीला सच्चे के आहा हाई देखा हाई देखा गम्मत करावा हो एहे आहा गम्मत करीला गमत कराइला आई देखा हाय देखा सामने की रात के कैसे गमत हुआ था एमबीसी स्टूडियो में ए हे रेडियो मनोरंजन रेडियो वर्सेस पर

0: या
1: कभी सोचा है
0: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।
2: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच, जलसा, हंगामा।
3: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
4: यू लिसनिंग आरएम फ्री रेडियो। रेडियो रेडियो
5: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमट, धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
6: रात के 11 बज गल बा और एक घंटा बाद लोग साथ देखते रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। और जी प्रताप सिंह ऑन द मिक्स भोजपुरी तड़का प्रोग्राम। मन करता को भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा जाने रहा का जो दे विद जो विद सैंक पर। और एक बात बोला था टेलीफोनिक कर बा तो अपन रेडियो सेट की बोली माँ कमती कर दिया। अब आज डाली सर टेलीफोन हो और हमने के कान निकलाती वाला। और जब गीत बजता गीतवा के बजे दिया गीतवा बज जाए तब टेलीफोनिक कर गया। जब रही समाप्त हुई कि तब टेलीफोनिंग करिए कहे कि अब गीतवा काट के तो हर गीत नहीं सब से चलाए ना। बारी बारी से देखा दो घंटा के प्रोग्राम है मैक्सिमम वैन काट सौ थे 24 गीत सकब से एक एक घंटा में 12 गो गीत सकेला चले 10-12 गीत दो घंटा यानी कि वैन काट सौ थे एक अस्सी जस्सी नहीं सकब से करी कोशिश करते इसे मैक्सिमम तई खातिर बोला सर कि थोड़ा सा धीरे छा धरे के सब कोई खातिर है रेडियो एमबीसी रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन सब कोई खातिर है तो सब कोई की मौका दे रहा सर ठीक बा। और जब बच्चे बता गीत मांगे के प्रोग्राम है गीत मांगिए नहीं काकोटी करिए कि फलना का कर लग चिरना का कर लग इस सब से हमने कौशनी नहीं है सर। ये प्रोग्राम में गीत मांगे के ठीक बा। और हमने प्रोग्राम में ढेर कुछ आने रहा सर मनोरंजन शिक्षा लेटेस्ट न्यूज़ कौन सी होता दुनिया में ये सब यहाँ जाने के कहे कि खाली मनोरंजन ही तो नहीं अच्छा रही ना अच्छा ना कुछ सीखे के भी ऐसे तो दिन भर मनोरंजन होते रहेला। हाँ मनोरंजन ज़रूरी है पर मनोरंजन के साथ शिक्षाप्रद बात भी होला तो ये अच्छा ये मोगाल पर कोई के मोगाल पर लिफियों का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो जिससे हम बोली कि भोजपुरी का प्रोग्राम चला था अगला गीत

0: चार दिन की जिंदगी है कि तो चराय से पहले बस हमने बात कर अब से आजकल ढेर कोई दिख रहा सा लामेलू लामेलू यानी कि भारी लोग के हाथ रहेरा और लोग थोड़ा से पैसा मांगे लन सा तू पैसा और के सागर के पैसा दे दे बस जब पैसा गए तू ने करे के रही तब प्रत्येक सिखाए लन सा कि पैसा नहीं बात है खातिर आज जैसे दुनिया जाता कोई की नहीं चहला दे के पैसा वैसा हाँ सकबर दे जगह पर भरोसा कर तौर पर कोई के पैसा दे बा तो तुम्हारे पैसा नहीं लौटाए भैया और जब क्रेजी बेचाता हुआ तो ध्यान दिया कि क्रेजी सब कोई संगे सर नहीं सकबर बीचे आजकल दिखी रहा सर कोई क्रेजी बेचे लन सर जब पैसा लाफ में जिमा होला जान सर पैसा मांगे तब पैसा नहीं देवे लन सर तो तुम लोग को जमीर नहीं बात तो लोग को कॉन्शियंस नहीं बाकी आदमी से लॉजिक ले लिया हो सर चाहे लोग पैसा दे के हम तो नहीं जानना भैया फिर कोई जिस मिल कैंस मिल सैकौत मिल लॉजिक ले ले वेलन सर पे करे के बजे जब पैसा मांगे तो पैसा नहीं दे वेलन सर ये खातिर ढेर कोई खजी बोलन सर खजी नहीं छाना बेचे के या कोई के पैसा उधार नहीं दे के पैसा जहाँ बा भैया कोई के उधार देला तू कौन व्यक्ति के समस्या होल बा को प्रॉब्लम हो बा तू सागर के पैसा दे देला पर वो व्यक्ति तुरा सागर नहीं करी जब पैसा अगर तू नहीं करे के रही तो भारी हाथ भारी जाए तो हर सकता बोल दे हमार लगे पैसा नहीं बा कितना व्यक्ति ऐसा हो बा जे पैसा दे लग बा और तू व्यक्तियों के पैसा नहीं घूमे लग बा तो लामेलू से थोड़ा बच के रहिए खजी जो इतना नहीं दिया मन बा कौन चीज बेचे के तक काश बेचा जा चलो अगला गीत सुने चार दिन की जिंदगी और है गीत हम नहीं चलावते इस सब संगतियालों के नाम जो हमने की सुना था रविराज बिचुकलाल माची से और सब परिवार के नाम और बेटा खातिर भी अमृता डुंगुर वंश हवन संगीता संगीता जी संगीता फ्रांस ऑलराइट है दूसरा संगीता है निशान सिंह चुबा है गीत तुहर बेटी अश्विना तुहर पत्नी तुहर बेटा सब चुबा परिवार के नाम थोबुदिक से लिस्कारी से उमा जगह नायक लूकर प्यार सन बेटी और बेटा जो इंग्लैंड में बा और सब बहादुर परिवार के नाम रानी के ओसे गीत चले कर बेटी परी परी के ओसे कर मौसी चिकू मुनू करुणा और है गीत ज़्यादा सब मोहित परिवार के नाम जो बहुत प्यार से उनकी सुनता सब मोहित परिवार होन जा अनमोल और शिव परिवार तो चलो एक साथ सुने गीत तो चार दिन की जिंदगी सच के चार दिन की जिंदगी भैया काल के आने से काल के जाप से काल के रही के नहीं रही जो न अभी हैं सा तो लोग के सामने बचाते ही सा तो लोग हमने से हमने की सुना था वह बहुत बहुत धन्यवाद काल का जिन के रही के नहीं चोला के कोनो ठेका नहीं बा लताब से सबको नामे डाल दा चला हमने के संगे नाचे गिरीश रूपचंद के साथ
1: खुशी के दिन बिता
0: हाँ भाई सच्चे बोला था वह चला झूमा नाचकावा खुशी

0: ओहो आहा हाय देखा हाय देखा नच नच नच नच गावा गावा
1: मैं हमेशा तू
0: खुशी से जिया
1: जाए बात मुस्कुराते रहिया
0: मुस्कुराते रहिया
1: जिंदगी में हमेशा
0: कदे मुंह में दांत में नहीं बा मुस्कुराते रहिया
1: बात मुस्कुराते रही
0: ते दो तीन ते फुजों सकब डाली ना
1: जुमा ना जगाव खुशी के दिन बिताव हंसी मौज कर ल फिर अंधेरी रात
0: बा फिर अंधेरी रात बा खुशी के दिन मनावा नाच गावा झूमा सब कोई रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के संगे संगे एमबीसी रेडियो तेलो के रेडियो हम सब के रेडियो हमर लिखा
1: दुख दर्द भूला के तू आगे बढ़िया
0: हमेशा आगे बढ़िया
1: हमेशा तू हसिया और हंसाते रहिया
0: हम तो हंसाते रहिला सबके।

हाँ सच के अंधेरी रात बा रात बरी अंधार बाज कौन कौन ऊंची बरता कौन कौन सीमा में चिप नहीं बरता बाप रे बाप चाहे देखे के यहाँ चिप उप नहीं बरता टपन फुल फौज डाल दिया कौन तू तू मैं डुबले नहीं कर गया है अब नाइट राइडर नहीं बन गया मक गाइवर नहीं बन गया तेरे कोई सीमा में गाड़ी चलावे गाड़ी उड़ावे नहीं सा उड़त हो नहीं नहीं रात के समय बा अगर गाड़ी में हुआ तो परिवार साथ में बा तो गाड़ी धीरे धीरे चलाइए और जब पानी बरसता था अपन स्पीड अपन विचेस कमती कर दिया आगते नहीं बनिए सीमा में रात के आगते नहीं करेंगे है दिन के आगते करिए रात के नहीं और बेशक हम ही तो लोग के साथ हैं सर और रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर संगचारों एगो कहावत बा हिंदी में दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाली का नाम तो मतलब अगर आज तोहर लगे दाल पकल बा भात पकल बा चिंगड़ी की चटनी बनल बा तो ई तोहर भाग है और दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम ही भगवान जब हमने की विदा करेला तो हमने के भोजन सब साथ में विदा करेला कैसे के जब एगो लड़का दुनिया में आवेला तो एगो माँ अपन लड़का के अपन दूध पियावेला तो लड़का कबू भी दुनिया नहीं दिखल बा पर आवेला दुनिया में तो जब अपन एगो माँ अपन लड़का के सीने से लगावेला तो अपन लड़का के अपन स्तन देवेला अपन दूध देवेला वो जाने ला कौन सी है ये एक्स्ट्रा उजनी है मैजिकल है ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब लिखेला कि एगो माँ अपन लड़का के सीना से लगा बंदूत पिया हुआ था तो लोग प्यार और आशीर्वाद बरसावेलन सर कहे कि माँ और बेटा के रिश्ता तो जैसे हम बोली दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम तो नाक नहीं करिए अगर तुहर पत्नी या पति को खाना बनेलक बा और खासकर लड़का लोग के बोलते हैं सर दूसर पेई में देखबा कैसे लड़का लोग पुबेल में से खाए के निकाल के खाते हैं ढेर पेई इतना गरीब बा लड़का लोग के खाए के नहीं मिलेगा वो पुबेल में से जो बचल कुचल बा वो खाना लेके खा लन सर पर हमने के देश में ऐसा स्थिति नहीं बा भगवान के हमने शुक्रिया करेला सर हमने के सरकार के शुक्रिया करेला सर कि हमने के देश में भरपूर खाना बा हर घर में सब कोई के तीन वक्त के खाना मिलेला फजर के 12 बजे सांझ के और आते शाम भी बा ढेर कोई बढ़िया बढ़िया पकवान पकाई रख बा आहा क्या बात है और ढेर कोई रात के देर से भोजन करे रख इस समय भोजन करते हुआ तब बोना पीछी हाँ ढेर कोई रात के 10 बजे या 11 बजे ले वो लोग जो है वो लोग अपन भोजन करे लन सर हाँ कि नहीं और हमने है सर तो लोग के संगे संगे भी रात के 11 बजे ले हाँ और अगला गीत है छोकरा के छोकरी नहीं मिलत बा बहुत ही प्यारा सन गाना है और है कि तो हमने चावत ईसा ये सब संगतियालों के नाम आप हवन विकास नारायण ईश्वर सुबन सब सुबन परिवार के नाम और बेटा पत्तु बेटी दामाद दूसर पे ही में बा जुलीस से उदारी है गीत और खातिर तो सब परिवार के नाम गणेश वरुण कैसे बा गमटवा हुआ था कि नहीं हाँ गणेश वरुण बड़ा जोर नाचा था

और ये मुर्गी बिछरन मुर्गी के स्पाइस में तैयार कर रहे हैं, क्या बात है। एक दिन एक बार मोहताबाद या रोजबेल्ट वन गणेश वरुण के हाथ से बना चिकन जरूर खाइए जा, सुपेर। वरुण की तो हर तीन को लेकर तो हर पत्नी और तो हर सब गणेश परिवार के नाम। चलो एक साथ सुने है गीत, वाह छोकरा के छोकरी नहीं मिलत बा।

छोकरा के छोकरी नहीं मिलत बाप, काहे छोकरा के छोकरी नहीं मिलत बा। आजकल ढेर कोई परेशान होन सर के पर निकालो की खोजन शादी करे की पर निमन छोकरा या निमन छोकरी नहीं मिलता। चला खोजे के भैया का करबा, आज के जमाना ही ऐसा बा। शादी जो न गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है, जो न चहला जान समझ अच्छी तरह से देखे के कि हाउ लड़का जी के दिखते हो तो हर बेटी या तो बेटा जगह संग जाता शादी करे कर लाइक बा कि नहीं, ये पहला। और साथ में चाहे देखे कि दोनों में आपकी इंची बा कि नहीं, ये नहीं कि जैसे कोई छोकरा छोकरी देख ला खुशी और शादी कर दिलन सर। खुशी तो चेहरा रहे के पर छोकरा छोकरी के चेहरा सेम लेवल पर रहे के छोकरा के छोकरी के कौन पहुँच के छोकरी या छोकरा के कौन पहुँच के शादी से पहले सब कुछ अच्छा रहेगा। लिपुक फैगौती टॉप ऑफ द टॉप। शादी के बाद तू जनबा कि और छोकरा के मानिए कैसे बा, छोकरी के मानिए कैसे बा, कहे कि अगर संगे फजीत के उठत हुआ और अगर संगे रात दिन रहत हुआ तब अगर मानिए जनबा तो शादी को लोतरी है। जिसके मिलल तो निमन से शादी हो गए पर जिसके नहीं मिलल तो नहीं मिलल। कहे कि आजकल शादी ढेर जगह में नहीं टिकेला, कबू शादी तू चला और तला के नौबत चला मिला। अगर देखा तो तू नहीं सकबा कोई संगे रहे जीवन भर तो पितो शादी नहीं करिया। और अगर देखा तो सकत हुआ कोई संगे रहे तो हर का आते में बा तो सकबा तो शादी करिया, पर सोच समझ के अच्छी तरह से शादी करिया। कहे कि शादी जिंदगी भर के साथ निभाई के है। और जब शादी कर लेबा तो पति पत्नी के चहला एक दूसरे के मदद करेगी। ये नहीं कि खाली पत्नी घर के सब काम करी, पति महोदय खाली वो घूमी फिरी है सब, ऐसे नहीं होला। तो हमेशा याद रखिए कि जोन शादी है एगो लुटो के चार गुलारू है, पति पत्नी है दो गुलारू मिशे के दो गुलाहू मैडम के, तो संगे संगे चहला चले के ठीक बा। हाँ तो चल अब सुनब जा अगला गाना जिंदगी तू जमाल कुदू है। गीत हम नहीं चलावते भाई विनोद के नाम हमने के साथ देवत हुआ और कनाडा से वन दीपा तिवारी दुखी तो कर घरोला के बिन और कर बेटा और सब दुखी थे परिवार के नाम। ऑस्ट्रेलिया से हवन अजय और पूनम चिंताराम बाल गोपाल के दुगो बेटा और मॉरिशस में कर माँ बाइंदिरा भाई चंदन बहू भाभी प्रिया सैलोनी के बहन है और सब चिंताराम परिवार के नाम अगला गीत। और जे कोई के नींद नहीं लगता तो गीत तो लोग नाम जमाल कुदू जिंदगी तू जमाल कुदू। ढेर कोई भी काम करे जाता बो को आज नाइट शिफ्ट कराता, ढेर कोई नाइट शिफ्ट करके घर लौटता था। जितना सुफेर लोग बस सीमा में पास आजे लोग हमने की सुना था कहूँ जात हो या कहूँ आवत हो रेडियो सेट के बोलियो में थोड़ा जोर डाल दे हो। ढेर कोई बनवे में नाचता नाच गाव जमाल कुदू।

गीता में अच्छा बोला पर्यावरण के साफ रखिया हो, कहा कि पर्यावरण के साफ नहीं रख बत दुष्प्रभाव होएला हमने पर आजकल दिखते से कैसे इन्नो आवता ना हाँ लीतो सब सौंसे हुआ था और पर्यावरण के जब प्रदूषित कर पोल्यूट कर एनवायरनमेंट के तो कर असर मौसम पर पड़ेगा कहूँ कहूँ पर बरका तूफान कहूँ कहूँ पर भारी सूखा कहूँ पर थोमलो में देती है सुनामी सब तो सब ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज है पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेन कोज ऑफ क्लाइमेट चेंज है जब ढेर पोल्यूए कर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होला और एक असर पड़ेगा अरे हमने की जायदा हमने की तो चल गल हमने की जो लड़का लोग आवा था जो नवा पीढ़ी बा वो लोग कैसे फास्ट करिए अभी तो एक गो सुना एलनीनो ये दुनिया के प्रभावित करता साइंटिस्ट लोग वॉर्न कर दी लगभग नासा लोग बोला था वहाँ के साइंटिस्ट लोग कि इका जो प्रभाव है बहुत गहरा और खतरनाक रही कहूँ कहूँ पर मोटका पानी बरसी 10 महीना ले कहूँ कहूँ पर मोटा सूखा रही 10 महीना ले एक गुट पानी नहीं बरसी हमने इन दिनों में हेल गलें से जुएत के महीना से अभी हेल गलें से अभी हाउ बरिस जुएतले जो हमने एनिनो पे रहब सब तो भगवान ही जाने के कर प्रभाव कैसे है एनिनो हमने के मौसम पर कौन का प्रभाव करी ये तो समय ही बताए पर भगवान से प्रार्थना कर सब अच्छी तरह से बीती तो पर्यावरण के गीत अभी चल बहुत ही प्यारा सन गाना और संगत यार वही रह सकी सबसे बड़ा चीज़ है मन के शांति मतलब तू गेला काम करे काम करके अला तो अपन घर में हवा होम स्वीट होम तो थोड़ा मन के शांति अब घर में अला पत्नी झगड़ा करता या पति झगड़ा करता लड़का लोग डिजुत करता तो कहाँ है मन के शांति ये खातिर बोला सर कि घर के चाहे स्वर्ग रेखा बनाएगी एगो परिवार में सबको के चाहला साके नहीं बचे कौनसो काम आगाद हों कि नहीं जब पति थक के आलबा तब पत्नी के चाहे कौन सी दे के खा के या पत्नी जब थक के आलबा तब पति के भी जीव पत्नी के स्वागत करेगी और लड़का लोग जब बिल्कुल से आवेल तब सबसे पहले वो लोग जाके कराही उघार के दिखेगा कि माँ का पकई लगबा हों कि नहीं एक लाभ चीज है तो कहाँ लिकुल से अल यूनिवर्सिटी से काम कर जेपो में जाफे लाखुजी में हिल मामा का पकाइए हवा ऐ मोगी क्यों कोई और जब कराही खोल के देख ला कराही की झपनी कुछ नहीं बात है बाप तो पेट में तो चूहा दौगा था अब तो भूख लगल बा यही कहते बोल ऐसा कि फजीज के काम करे जाए से पहले अगर 1 घंटा 8 उचेब तो कौन सी पका दिया जमी लेकर लोग सांझ के आए 3 बजे या लीसों के बाद घर ही तो कुछ न कुछ तो मिली खाए कि ना तो चल अब सुन अब जाए अगला गीत इंद्रा सनसेट होल

शैली। और ढोलक मंगा के हम तो नाचे थे इंद्रासन से, और जी भाई इब्राहिम खातिर पोट्री से, राफिक मोहित आयाक से, भाई आबू कैसे बस समाचार, ढेर दिन से बात नहीं होल बा। तो भाई आबू है गी तोहर खातिर, तोहर घरोरी और तोहर सब परिवार का। भाई आबू हमने की फिजर जीते है जो MBC रेडियो सुनते रहेला, और राफिक मोहित भी इब्राहिम साहबोन पोट्री से हता है गीत तो लोग खातिर खासम खास इंद्रासन से ढोलक मंगाई रही।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
3: ओरल फ्री रेडियो रेडियो रेडियो।
4: आजकल में दिखाते हैं सर कि परिवार सब टूटल जाता। आगे के जमाना में परिवार में सब कोई संगी रहता, माँ बाप, बेटा बेटी, बेटा बहू, नाती पोता, दादा दादी, सब कोई। तो वो रहल एक्सटेंडेड फैमिली। आजकल ये सब लुप्त हो ही जाता और आजकल खाली न्यूक्लियर फैमिली। शादी के बाद छोकरा छोकरी और लड़का लोग, ये सब नया ट्रेंड है। आगे सब नहीं रहल और सब कोई अपनी बेटी खोजेला। अब सास बहू के झगड़ा विजय करे खातिर छोकरा जना शादी करके वन कुत्ते चल जाला, अपन पत्नी अपन एक लोग संगे रहेला और माँ बाप लोग छूट जाला। तो का कर, दुनिया है इसी चला था। पर माँ बाप के नहीं भूलैया है, काहे शादी करते हैं, शादी कर ले रहे तो हर पत्नी लड़का बा, अपन माँ बाप के नहीं भूलैया। थोड़ा बहुत जैया लोग के देखे, थोड़ा सेवा वा करे। हमने जानी रह सक कि छोकरा है, थोड़ा सैंडविच दिखा ऊपर जला। अब माँ के बात सुनी तो पत्नी नाराज़ हो जाए, पत्नी की बात सुनी तो माँ नाराज़ हो जाए। अब बेटा सैंडविच देखा घर में खासे हो जाला। तो हाँ, मेरे को बात बोला सुनिया, पत्नी की बात लेके माँ की नहीं बोलिया और माँ की बात लेके पत्नी की नहीं बोलिया, प्रॉब्लम सॉल्व। देख रहा ना, अब पति के सामने माँ की प्रशंसा नहीं करिए, माँ के सामने पत्नी की प्रशंसा नहीं करिए, वरना जालू हो यंसर। तो बोल दे पत्नी के कि हमार माँ जो कहती पकावे लग और हाथ के खाए के खाइब, बाप बोल दे रहा था पत्नी बोलते जा अपन माँ लगे वहीं जाके वहीं खाइए, हम नहीं पका कौन चीज आला ला का कर बा। ये सब होला है। तो जैसे परिवार की बात बोलते, आज के लड़का लोग नहीं जाने ला कि हाई चाचा है, हाई मामू है, हाई दादा है। तो परिवार लोग फौजी परिवार के जेबत अपने लड़का लोग के जान पहचान हुई। अब परिवार के लड़का लोग खाली घर में रखब, शादी दी में नहीं जेब, पूजा पाठ में नहीं जेब, फैमिली के नहीं जेब, तो लड़का लोग नहीं जानी। आले आले से जब इसे चलते जाए तो कोई कोई के नहीं गदानी, कोई कोई के नहीं पहचानी। कब भेटालन सर परिवार लोग? एगो शादी में, एगो मरनी में, तब भेटालन सर, हाँ कि नहीं? तो समय में जब अपन लड़का लेके अपन फैमिली के थोड़ा सुन जाइए, घूमे में लड़का लोग के बोलिए कि हाई तोहर चाचा है, तोहर चाची है, तोहर मामू है, मामी है, ऐसे लड़का लोग जानी। रास्ता में कोई बैठा जाए तो बोलिए सर नमस्ते चाचा, नमस्ते चाची। अब लड़का के कब अपन चाचा चाची के नहीं लिखलक बा, तो के जाना था कि चाचा है कि चाची है, बोला था। और चल ऐसा में सुनब जा अगला गाना, सुंदर देश और है गीत हमने चाहते खासम खास। ये सब संगतिया लोग के नाम चिबुक लोंग, राजा स्टीव माना, प्रवीण भैरव, नानो सावन, जिमी दुखिया, राजमन्ना, सुदेश जसवा, कर्मा राजकुमारी और रवि जिनू है गीत। तुहर पत्नी, तुहर पिताजी, माताजी, तुहर लड़का लोग के नाम प्रशांत, शिवालक की रसोई, कर्मा राधा, कर बहन शिल्पा, जीजाजी।

0: हाथ में हाथ डाल के चला देशवा के आगे बढ़ाप स प्यार से सब कोई रब स मोरिशस को बहु जातीय देश हर प्रकार के रिलीजन के लोग यहाँ रहेला और प्यार से सब कोई यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हमने रहेला सब प्यार से हर फेट में जाएला स चाहे ईद के त्यौहार हो कावेरी हो दिवाली हो क्रिसमस हो या कोनो भी त्यौहार हो तो हमने सब फेट में जाएला सर। और अब हम बात करब सब पुरनिया खाना के बारे में। हमने के दादी जब रह नानी लोग ये सब खा के छोटा में हमने खात रही सर दाल भात दूध पीठी मार छोंका छोंकल भात मुरुंग के भुंजरी भाजी के भुंजरी पोमदामू घिये दाल पीठा बुई मकई और खिचड़ी ते सब आगे के भोजन रहल। अब पोमदामू गई हमके याद बा जब हमार नाना लगे जाते रही तो हमार नानी जो है रात के बखत पोमदामू के अंगोरा में घी कराता हल पोमदामू के घी कर दे अंगोरा में तब ओके छिल के लापुआ निकाल के पोमदामू के मिस के पीमा नीमक प्याज डाल के तब चटनी पोमदामू घी जो फोये बोला तरी सा। और दूध पीठी ये एगो मीठा भोजन है इसे पीठी पीठी आटा इसे लंबा लंबा करके दूध में डाल के खाते इसे दाल भात सबको जाना था तुम भात पका दे दाल पका दे दलवा भात में डाल के खाई बा। और खिचड़ी तो एगो बहुत ही पौष्टिक खाना है खिचड़ी में आलू रहेला कदुआ रहेला काहोत और खिचड़ी जो है हरदी भात थोड़ा पका दे जोरी से तवकर में एगो चटनी या भाजी भुंजल त आ हा हा क्या बात बा। बुई मकई तो मकई के बुई करके खा ली बा जोरी से। अब मार छोंका मार में पकड़ तकारी छोंकल भात तो कब कब आगे के आदमी लोग कारों से काम करके आवे तो खा के नहीं रहे तो पोलामून प्याज को तो मई मिला था काट के जोरी से डाल दे तेल में तराई के अब ओकर में भात डाल दिया थोड़ा सुना के जो कैसों से डाल दिया तो हो गल छोंकल भात। अभी के लड़का लोग ये सब खाए नहीं खाए भैया। चल अभी एक गीत सुनब जा मार तारी मार एक गीत चंपा और देवी काराम गतिया के नाम और संजय हवन रोजबेल से और इंदिरा लावतन हवन मेबर्ग से।
1: मार ताली मार ताली मार ताली मार हमार संगे मार ताली मार ताली
0: हाय गीत के संगे हम इन लोग से इजाजत चाहते ही जा रात के 11 बजे लबा 11 बजे से मजा सुन रहे पर रात के 9 बजे से अभी हमने के साथ दिला जा तो लोग ऐसे में सर फोन कॉल खातिर शुक्रिया। आशा करते हैं तो लोग के मनोरंजन जरूर होल होई हमारे मनोरंजन खूब होल तो लोग से बात करके और आशा करते हैं प्रोग्राम में मनोरंजन भी हो शिक्षा के भी बात हो ढेर कुछ सीख ली सर आदान प्रदान हुई प्रोग्राम में। हमने के चलो के मुलाकात हुई कल दिमास के दूसरे 12 जुलाई के सांझ के 3 से 4 बजे रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही ऐसा भी होता है। तो कल तक हमने की इजाजत और जय प्रताप सिंह सीतालू की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि बाय बाय नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: प्रणाम श्रोताओं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। इस समय आप जी हाँ रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं और एक बार फिर सुनहरे पल कार्यक्रम में आप सबका अभिवादन, सबका स्वागत है, वो भी रात्रि के 12 बजे तक। तो आइए आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उन महान कलाकारों से मुलाकात कराएंगे। सब तो महान ही हैं। हम हमेशा बात करते हैं गायकों की, एक्टर्स की या फिर संगीतकारों की। हम कैसे भूल सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो मास्टर्स हुआ करते थे, यानी कि कोरियोग्राफर्स, उनकी भी बड़ी अहमियत होती थी। कौन थे वो, चलिए एक साथ जानते हैं।

0: 1960s का दौर बॉलीवुड के लिए संगीत और नृत्य का एक सुनहरा युग माना जाता है। इस दौर में सिर्फ मधुर गीत ही नहीं बने, बल्कि उन गीतों को अपनी कल्पना, रचनात्मकता और बेहतरीन डांस कंपोजिशन से यादगार बनाने का काम किया उस समय के महान कोरियोग्राफर्स। आज जब हम पिया तो से नैना लागे रे, या फिर आज फिर जीने की तमन्ना है झुमका गिरा रे, ये जो गाने हम देखते हैं ना, तो हमें उनके पीछे छुपे कोरियोग्राफर्स की मेहनत और कला का एहसास भी होता है।
1: पिया

0: पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा।

0: ओ गुजरिया,
1: ओ सवरिया,
0: ओ गुजरिया,
1: ओ सवरिया।
2: 1960s में हीरालाल मास्टर, बी सोहनलाल, सुरेश भट्ट, लच्छू महाराज और कृष्ण कुमार जैसे कोरियोग्राफर्स ने बॉलीवुड डांस को एक नई पहचान दी। हीरालाल मास्टर अपनी ग्रेसफुल और एक्सप्रेसिव कोरियोग्राफी के लिए मशहूर थे। उन्होंने क्लासिकल डांस के साथ फिल्मी स्टाइल का एक ऐसा संगम किया कि हर डांस सीक्वेंस आंखों को सुकून देने वाला बन गया। उनकी कोरियोग्राफी में एक्सप्रेशंस, नजाकत और मूवमेंट्स का अद्भुत मेल नजर आता था।

सोहनलाल को एनर्जेटिक और स्टाइलिश डांस कंपोजिशंस के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कई बड़े सितारों के साथ काम किया और डांस को सिर्फ स्टेप्स तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उससे कहानी का एक हिस्सा भी बना दिया। उनके डांस नंबर्स में रिदम और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन का बेहतरीन मेल देखने को मिलता था।

जब बात क्लासिकल डांस की आती है तो लच्छू महाराज का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। कथक के महान गुरु होने के नाते उन्होंने बॉलीवुड में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर भी उतारा। उनके कोरियोग्राफ किए गए डांस सीक्वेंसेस आज भी कला के अद्भुत नमूने माने जाते हैं।

वैसे श्रोताओं 1960s के कोरियोग्राफर्स की एक खास बात ये थी कि उस समय डांस में आज की तरह हैवी एडिटिंग या स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होते थे। कलाकारों को हर स्टेप परफेक्शन के साथ खुद परफॉर्म करना था, इसीलिए कोरियोग्राफी में डिसिप्लिन, एक्सप्रेशंस और ताल का बहुत महत्व होता था। विजयंती माला, वहीदा रहमान, आशा पारेख, हेलेन और महमूद जैसे कलाकारों ने भी कोरियोग्राफर्स के साथ मिलकर डांस को एक नए शिखर तक पहुंचाया।

हटूंगा वही इलाकों हट डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह मैं कुर्ती को छोड़ू।

कोरियोग्राफर्स सिर्फ डांस डायरेक्टर्स नहीं थे बल्कि वो गीतों के विजुअल स्टोरी टेलर्स भी थे। हर मुद्रा, हर अदा और हर मूवमेंट के जरिए वो गीत की भावना को और गहरा बना देते थे। इसी वजह से 60s के डांस नंबर्स आज भी नए लगते हैं और हर जनरेशन उन्हें बड़े शौक से देखते और पसंद करती है।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: 60s की बात चल पड़ी है ना श्रोताओ, तो कैसे भूल सकते हैं। वो अपने आप में एक्टर तो जबरदस्त थे ही, लेकिन अपने आप कोरियोग्राफर थे। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, द लेट शम्मी कपूर साहब। उनके लिए कोई कोरियोग्राफी जरूरत ही नहीं थी। उनके एक्सप्रेशन, उनके हाथ के स्वभाव, जैसे वो डांस करना चाहते थे वैसे ही डांस तैयार। वो खुद अपने आप में कोरियोग्राफर थे। तो बॉलीवुड के 60s के कोरियोग्राफर्स ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार की। आज के कई मशहूर कोरियोग्राफर्स उनके नाम से प्रेरणा लेते हैं। उनकी कला, उनकी सोच और उनका योगदान हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भी बॉलीवुड के गोल्डन एरा की बात होगी, उस दौर के इन महान कोरियोग्राफर्स का नाम बड़े गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। प्रणाम, शुभ रात्रि।
2: चाहे कोई मुझे जंगल

एबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।

0: MBC Radio, your music companion.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।